हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 जून सन 2026। समय सवेरे के 5:58 और 36 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 6 बजने को है। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी

0: श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश 4थे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सवेरे के 6:05 और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। सुप्रभात, अभिनंदन सभी श्रोताओं का भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना में। श्रोताओं, प्रातः मंगल बेला और दिन है गुरुवार का, साथ ही आज दिन है निर्जला एकादशी का और आज का ये पवित्र दिन समर्पित होता है भगवान विष्णु और उन्हीं के स्वरूप श्री गिरधारी को, क्योंकि श्रोताओं भक्ति में वो शक्ति है

जो निराशा को आशा में और चिंता को विश्वास में बदल देती है। जब जीवन की राह कठिन लगे, तब श्री गिरधारी का स्मरण मन को शांति, विश्वास और भक्ति से भर देता है। और आइए प्रभु के प्रति इसी समर्पण और श्रद्धा के साथ, इस भावपूर्ण भजन के साथ शुभारंभ करें भक्ति संगीत वंदना का और डूब जाएं भक्ति रस के इस सागर में।

संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, लेकिन गुरु का दिया गया ज्ञान और प्रभु का नाम अमर है। गुरु केवल शिक्षा नहीं देते, वो जीवन को दिशा भी देते हैं। गुरु का सानिध्य अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। गुरु कृपा से ही ज्ञान, भक्ति और आत्मिक शांति का मार्ग प्रशस्त होता है, और इसी भाव को अभिव्यक्त करता ये सुंदर भजन प्रस्तुत है भाई लाल सिंह के स्वर में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें मनुष्य प्रभु से केवल अपनी इच्छाएं नहीं बल्कि सद्बुद्धि, भक्ति और जीवन को सही दिशा देने वाली कृपा मांगे। धन, वैभव और भौतिक सुख क्षणिक हैं, जबकि प्रभु कृपा और राम का नाम शाश्वत है। जो भक्त, जो व्यक्ति राम का आश्रय लेता है, उनके जीवन में विश्वास, धैर्य और संतोष का संचार होता है। प्रभु का नाम और उनका स्मरण ही जीवन का सबसे बड़ा धन है।

हकीकत से झुका हुआ सर और मोहब्बत से भरा हुआ दिल जब अपने नात की बारगाह में हाजिर होता है तो अल्फाज नात बन जाते हैं। और इसी खुलूस और अल्तजा के जज्बे से सजी पेश है ये नात, जिसमें आवाज़ है जाकिर खान की।

श्रद्धा और साबुरी का संदेश देने वाले शिरडी के साईं बाबा आज भी करोड़ों भक्तों की आस्था के केंद्र हैं। उनकी कृपा और करुणा को नमन करता एक मधुर भजन कार्यक्रम वंदना के अंत में मुकेश और साथियों की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। समय सवेरे के 6:30 और लीजिए प्रस्तुत है संगीत में प्रस्तुति श्री रामचरित मानस कान से आज का प्रसंग। कलाकार हैं ए हरिहरन और संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकई की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर

ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाए। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थीं। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते, दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते। दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायुवेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगे।

0: अभी आप सुन रहे थे भव्य प्रस्तुति श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सवेरे के 6:40 और लीजिए सुनिएगा आज का चिंतन।
1: मनुष्य का जीवन उसके स्वयं के चिंतन, मनन और विचारों से प्रभावित होता है। सकारात्मक सोच होने से व्यक्ति का चिंतन उत्कृष्ट होता है और उत्कृष्ट चिंतन का धनी व्यक्ति सहज रूप से उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है व्यक्ति का पूर्ण विकास। यदि शिक्षा प्राप्त करने से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास नहीं होता है तो इसका अर्थ ये होगा शिक्षा की पद्धति में या उस व्यक्ति की सोच में कोई कमी रह गई। प्रेम और सहानुभूति जैसे सद्गुणों के विकास के लिए ये आवश्यक है कि घृणा को हृदय

0: में कोई स्थान न मिले। विचारों की शुभता जीवन में कैसे प्रवेश पाए, साथ ही विचार कैसे तेजस्वी हो, विचारों में सकारात्मक का प्रवेश कैसे हो, इसके लिए आवश्यक है नकारात्मक चिंतन पर विराम लगाना और सकारात्मक चिंतन को स्थान देना, उत्कृष्ट और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, नियमित दिनचर्या, घर में पवित्र वातावरण का सृजन, गुरु के चरणों में आपकी श्रद्धा और प्रतिदिन उस शक्ति से प्रार्थना कि हमारा हृदय शुभ विचारों से युक्त हो। विचारों की श्रेणी भी जीवन में विभिन्नताओं से युक्त होती है। आप स्वयं के विचारों का परीक्षण कर सकते हैं, मंद विचार, मध्यम विचार, उग्र, प्रचंड या तीव्र विचार। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के प्रति जैसे चित्र की कल्पना करता है, जैसे विचार बनाता है, वो वैसे ही जिंदगी प्राप्त करता है। आप जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने मन मस्तिष्क में उन्हीं विचारों को प्रवेश दे और उसी पर चले। जीवन में चाहे विपरीत आंधियां चल रही हो, चाहे आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, दुख के कारण आपकी आंखों के सामने घोर अंधेरा छा रहा हो और कोई मार्ग न सूझ रहा हो, तब भी अपने सपनों को और अपने विचारों को कभी न टूटने दीजिए और विचारों पर दुख की धूल भी कभी न जमने दीजिए। भारतीय परंपरा में अनादि काल से सत्य, अहिंसा और त्याग बलिदान का पाठ पढ़ाया जाता रहा है। भगवान बुद्ध और महावीर ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग सिखाया, किंतु महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को ईश्वर का दर्जा प्रदान कर व्यवहारिक जीवन में उन सिद्धांतों को स्वयं जीकर दिखलाया। इस प्रकार परंपराओं से प्राप्त विद्या तथा आसपास के वातावरण और पुस्तकों से प्राप्त शिक्षा का प्रतिपल व्यवहारिक उपयोग करते हुए नकारात्मक तत्वों को छोड़कर सकारात्मक चिंतन करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है और उसकी कीर्ति चिरकाल तक अमर रहती है।
1: अभी आप चिंतन सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सवेरे के 6:45 और काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं विजय कुमार शर्मा से ये काव्य पाठ।
2: चंद अल्फाज आपके समक्ष रख रहा हूँ। मेरी पहली कविता है, अजीब है ख्वाबों ख्यालों की दुनिया, जिसका जवाब नहीं वो सवाल है दुनिया। गीता रामायण और कुरान है दुनिया, फिर क्यों कर बनी सस्ता उपन्यास ये दुनिया। मिलते हैं बिछड़ते हैं शायद सराय है दुनिया, अब बिकता है प्यार शायद बाजार है दुनिया। बहुत अलग थी मेरे ख्वाबों ख्यालों की दुनिया, जिसका जवाब नहीं वो सवाल थी दुनिया। कभी सीता मीरा और मरियम की तस्वीर थी दुनिया, फिर क्यों कर बनी घुंघरू की झनकार यह दुनिया। दिलों का सुकून घरों की लाज थी यह दुनिया, जिसका कोई छोर अशकों का सैलाब है दुनिया। बड़ी अजीब है नए दौर की यह दुनिया, जिसका नहीं जवाब वो सवाल है दुनिया। मेरी दूसरी कविता है, मैंने कुछ गीत लिखे हैं तुम्हारे लिए, जब हम ना होंगे तब याद दिलाएंगे भूली बिसरी कुछ याद लिए। तुम्हें गीतों में उतारा है फूलों की खुशबू की तरह, तुम हमेशा से रही हो दिल में धड़कन की तरह। सोचा था लौट आएंगे फिर एक बार, पुराने दिन तब याद दिलाएंगे भूली बिसरी कुछ याद लिए। तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ टूटती सांस धुंधली सी आस, तूफानों की बस्ती में एक दीप जलाए जा रहा हूँ। चाह कर भी तुमसे कुछ कह ना सके, पानी बरसा और धुल गए वो तमाम खत जो थे तुम्हारे नाम लिखे, और कुछ गीत जो थे तुम्हारे नाम लिखे। सोचा था जब हम ना होंगे तब याद दिलाएंगे भूली बिसरी कुछ याद लिए। बहुत बार इकट्ठा किया मैंने ओस के असंख्य मोतियों को, सहेज कर रखता रहा हूँ हथेलियों में लकीरों की तरह। बिखेर दूंगा धरा के आंचल में फिर एक बार, प्यासा होगा सावन जब

बेबसी में देखेगा बादलों की ओर, झूम उठेगा सावन, खिलेगा तब धरा का तन मन उपवन। चुपके से लौट आएंगे फिर एक बार असंख्य मोती ओस के, करा जाएंगे अपनी उपस्थिति का कोमल एहसास। कुछ टूटे कुछ अधूरे ख्वाब हैं जिंदगी में, गैरों से नहीं अपनों से परेशान हूँ जिंदगी में। जो कुछ था मेरे पास बांट दिया सब दोस्तों में, ढूंढता फिरा मैं उन्हीं दोस्तों को मुफलिसी में। साया भी पूछता है पता मुझसे मेरा अब तो, दुश्मनों पर दोस्तों से ज्यादा एतबार है अब तो। वो बेवफा न कहे सोचकर वादे सब निभाता चला गया, और वो राह में मेरी कांटे ही कांटे बिछाता चला गया। जिसे बच्चा समझ उंगली पकड़ चलना सिखाया, वो ही हमें जिंदगी के पाठ पढ़ाता चला गया। कुछ टूटे कुछ अधूरे ख्वाब हैं जिंदगी में, गैरों से नहीं अपनों से परेशान हूं जिंदगी में। जीवन एक यात्रा, मेरी अगली कविता है। जीवन एक यात्रा और हम सब मुसाफिर, अनवरत चलता रहेगा ये कारवां। लोग जुड़ते रहेंगे जुदा होते रहेंगे, और एक दिन मैं भी जुदा हो जाऊंगा आप सबसे। छोड़कर खट्टी मीठी और कुछ कड़वी सी यादें, पर किसी के आने जाने से नहीं रुकता जीवन। सूरज और चांद का रोज उदय होना, फूलों का खिलते रहना, हवा नदी सबका यूं ही बहते रहना, सागर यूं ही लहराता रहेगा और जारी रहेगी ये यात्रा अनवरत। क्योंकि चलने का नाम ही जीवन है, चलने का नाम ही जीवन है। मेरी अगली रचना का शीर्षक है गांव का घर। बड़ा बनने की चाह में, डिग्रियां दीवारों पर सजाने की चाह में, कितना कुछ हाथों से छूट गया। शहरों में बेशक शोहरत कमाई, पर मलाल ये रहा पुरखों का घर पुराना रूठ गया। जिसको सहेजने की खातिर छोड़ा था घर कभी, उसी से नाता अब टूट सा गया। लौट कर एक दिन हम जरूर आएंगे, सब त्योहार अपने घर में फिर मनाएंगे। सपना ये पूरा होके रहेगा, सपना ये पूरा होके रहेगा। मेरी अगली रचना है परिवर्तन। हौसला था जुनून उल्लास था, ताकत थी महफिलें थी शोहरत और सुर्खियां, दोस्तों की वाहवाही और बेशुमार तालियां। तो जमाने को बदलने चला था मैं, अब न वो हौसला न बाकी रहा जुनून। कमजोर तन्हा और गुमनाम, लोगों की बेरुखी तोहमते ताने उल्हाने और टूटते सपने। तेजी से बदलते इस दौर में खुद को बदल रहा हूँ जमाने के हिसाब से, खुद को बदल रहा हूँ जमाने के हिसाब से। मेरी अगली कविता है भटके हुए राही। भटके हुए राही को राह दिखाता रहा रातों में, अपनी राह भूल गया मैं सवेरा होते ही। राह गुजर मालूम थी मुझे यूं तो साहिल, करीबी भंवर ना होता तो तुम मिल गए होते। कभी पलकें बिछाई थी हमने जिनकी राहों में, तूफा बनकर गुजर गए वो जीवन में आते ही। पूछा जो किसी ने क्यों बहा ये आँख से पानी, कहा ये तो अंदाज है अपना खुशी जताने का। पत्थरों के नगर में किस किस से करें शिकायत, शीशे का मकान भी तो हम ही ने बनाया था। सुर्ख आँखों को इस तरह देखते क्या हो अब, जागती आँखों को ख्वाब देखना तुम ही ने सिखाया था। दिल के जख्मों को यूं ना देख ऐ मुसाफिर, तुझे मंजिल बताने को इस दिल को जलाया है। दिल के आंगन में तुम्हारी यादों का चांद, जैसे तपते मरुस्थल में शीतल हवा के झोंके का ख्याल। मेरी तन्हा शामों को तुम्हारा ख्याल, जैसे पतझड़ में सावन का आना।

0: महकती यादों का अविराम सिलसिला, जैसे टूटे रिश्तों का अचानक जुड़ जाना। दिल के आंगन में तुम्हारी यादों का चांद, जैसे तपते मरुस्थल में शीतल हवा के पर। बड़ा बनने की चाह में, डिग्रियां दीवारों पर सजाने की चाह में, कितना कुछ हाथों से छूट गया। शहरों में बेशक शोहरत कमाई, पर मलाल ये रहा, पुरखों का घर पुराना रूठ गया। जिसको सहेजने की खातिर छोड़ा था घर कभी, उसी से नाता अब टूट सा गया। लौट कर एक दिन हम जरूर आएंगे, सब त्योहार अपने घर में फिर मनाएंगे। सपना ये पूरा होके रहेगा, सपना ये पूरा होके रहेगा। मेरी अगली रचना है परिवर्तन। हौसला था, जुनून उल्लास था, ताकत थी, महफिलें थी, शोहरत और सुर्खियां, दोस्तों की वाहवाही और बेशुमार तालियां। तो जमाने को बदलने चला था मैं, अब न वो हौसला न बाकी रहा जुनून। कमजोर, तन्हा और गुमनाम, लोगों की बेरुखी, तोहमते, ताने, उल्हाने और टूटते सपने। तेजी से बदलते इस दौर में, खुद को बदल रहा हूँ जमाने के हिसाब से, खुद को बदल रहा हूँ जमाने के हिसाब से। मेरी अगली कविता है भटके हुए राही। भटके हुए राही को राह दिखाता रहा रातों में, अपनी राह भूल गया मैं सवेरा होते ही। राह गुजर मालूम थी मुझे यूं तो साहिल, करीबी भंवर ना होता तो तुम मिल गए होते। कभी पलकें बिछाई थी हमने जिनकी राहों में, तूफा बनकर गुजर गए वो जीवन में आते ही। पूछा जो किसी ने क्यों बहा ये आँख से पानी, कहा ये तो अंदाज है अपना खुशी जताने का। पत्थरों के नगर में किस किस से करें शिकायत, शीशे का मकान भी तो हम ही ने बनाया था। सुर्ख आँखों को इस तरह देखते क्या हो अब, जागती आँखों को ख्वाब देखना तुम ही ने सिखाया था। दिल के जख्मों को यूं ना देख ऐ मुसाफिर, तुझे मंजिल बताने को इस दिल को जलाया है। दिल के
1: काव्यधारा के अंतर्गत आप सुन रहे थे विजय कुमार शर्मा से ये काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। समय सवेरे के 6:55 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में उसके बाद हिंदी में।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदेहल्याः सेवातीर्थस्थले प्रगति इति सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित मञ्चस्य द्विपञ्चाशत्तमोपवेशनस्य अध्यक्षतां विहितवान्। अस्यां गोष्ठ्यां श्रीमोदी चतुर्षु राज्येषु विस्तृतान् मार्गविद्युतौद्योगिकी वीथि तथा मेट्रो रेलवे क्षेत्राणां चतुर्प्रमुखान् आधारभूत संरचना प्रकल्पान् समीक्षितवान्। एतेषां प्रकल्पानाम् आहत्य व्ययः प्रायः 30,000 कोटि रूप्यकाणि अस्ति। आर्थिक विकासं, क्षेत्रीय सम्पर्कं, औद्योगिक विकासं तथा जनकल्याणं वर्धयितुं संधारिताः एते प्रकल्पाः, समयसीमा, विभिन्न संस्थानां समन्वयः तथा प्रलम्बित विषयानां शीघ्र निवारणाय विशेष ध्यानेन सह सन्ति समीक्षिताः। अद्य तावत् संविधान हत्या दिवसो वर्तते। दिवसोऽयं तस्याः घटनायाः स्मरणं कारयति यदा 75th जून मासस्य 25th दिनांके भारतीय संविधानस्य अवमानना कृता। अनेन सहैव अयम् दिवसः आपत्काले अत्याचारैः प्रताडितेभ्यः प्रत्येकं जनेभ्यः श्रद्धांजलिम् अर्पयितुं दिवसो वर्तते। अस्मिन्नेव दिने

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल

0: तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सवेरे के 7:05 और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज जानकारी का विषय है, बच्चे नाखून क्यों खाते हैं।
2: नाखून प्राणियों की पशुता के प्रतीक हैं। मानव नाखून काटकर अपनी पशुता पर अंकुश लगाता रहता है, जबकि पशु अपने नाखून नहीं काट पाते, इसलिए वे पशु के पशु ही बने रहते हैं। नाखूनों को बढ़ने न देकर उन्हें काटते रहना बुराई को हटाना है, यह अच्छा काम है। इसलिए विश्व की सभी सभ्य जातियां अपने नाखून काटती हैं। लेकिन अपने नाखून काटने की यह क्रिया यदि अनजाने और अनुचित ढंग से होने लगे तो फिर यह रोग की निशानी मानी जाती है। ऐसा प्राय होता है कि विशेषतः 5 से 10 वर्ष की उम्र तक के बच्चे अपने नाखून अपने दांतों से काटते हैं। वैसे यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। बच्चों में दांतों से नाखून काटने की आदत के पीछे उनका चिंता और तनाव में रहना है। जो बच्चे माता पिता से अलग रहते हैं उनमें भी नाखून काटने की आदत प्राय पाई जाती है। टूटते परिवार, माता पिता की आपस में कलह, माँ बाप का बच्चों के प्रति कठोर व्यवहार, माँ बाप का शराबी होना आदि कारणों से बच्चे का संवेदनशील मन तनाव में आ जाता है और नाखून काटने की आदत का कारण बनता है। यह भी देखा गया है कि यह समस्या लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक पाई जाती है। हमारे अंदर हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। इनके कारण हमें किसी न किसी तनाव में रहते हैं।

0: ये मानसिक तनाव कभी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा। हम समझदार लोग तमाम तरीकों से इन तनावों से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं और इस कार्य में सफल भी हो जाते हैं। जिस तरह वयस्क लोग अनेक कारणों से तनावग्रस्त होते हैं, उसी प्रकार बच्चे भी होते हैं। वयस्क लोग तो कह सुनकर दवाओं, योग पद्धतियों या मन चिकित्सकों के पास जाकर उनकी सलाह से अपने तनाव पर काबू पा लेते हैं, लेकिन बच्चे तो आखिर बच्चे हैं। पहले तो वे अमूमन तनाव के कारणों को समझ ही नहीं पाते, और यदि जान भी जाएं तो किसी से कुछ कहना सुनना या चिकित्सकों, योगियों आदि से परामर्श लेना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। लिहाजा अपने मन के तनावों की अभिव्यक्ति वे अपने दांतों से नाखून काट काट कर करते हैं। एक तरह से यह प्राकृतिक क्रिया होती है। दूसरे शब्दों में अपने अंदर उठने वाले विद्रोहों पर वे दांतों से नाखून काट काट कर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। अनजाने में ही वे अपने अंदर उमड़ने घुमड़ने वाले विद्रोहों को दबाने की कोशिश करते हैं। प्रायः देखा गया है कि अभिभावक बच्चों को नाखून काटने की आदत छुड़ाने के लिए उन्हें डांटते डपटते हैं, लेकिन डांटने डपटने से यह समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक विकार है और इसके कारण प्राय रोगी के अपने घर परिवार और परिवेश में ही होते हैं। इसलिए इस रोग की प्रमुख औषधि भी घर परिवार और परिवेश से ही मिल सकती है। सबसे पहले पता लगाना चाहिए कि आखिर बच्चा क्यों और कब से नाखून चबा रहा है। प्राय आप पाएंगे कि किसी खास समय पर घर परिवार में कुछ विशेष समस्याएं आई हैं, उनसे परिवार में तनाव उत्पन्न हुआ है, बच्चे के अपने परिवेश और साथियों द्वारा भी उसमें तनाव के बीज बोए गए हैं। जब आप यह पता लगाकर रोग का असली कारण पता कर लें, फिर उसके उपचार की बात सोचनी चाहिए। बच्चे के तनाव के कारण को दूर करने के लिए उसे परिवार में ऐसा स्नेह भरा माहौल दीजिए जो उसके अंदर के अनजाने अज्ञात विद्रोह को शांत करने में सहायक हो। बच्चे को स्नेह भरा माहौल देना, उसके मन से भय और आशंका की भावना दूर करना, उसमें आत्मविश्वास और सहयोग की भावना विकसित करना तथा अपने बड़ों के प्रति सम्मान तथा छोटों के प्रति स्नेह पैदा करने की निरंतर कोशिश करना, यह घरेलू मन चिकित्सा होगी।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय था बच्चे नाखून क्यों खाते हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। समय सुबह के 7:10 और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें जानकारी है आज सिंचाई की आधुनिक पद्धतियां विषय पर।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है सिंचाई की आधुनिक पद्धतियां या सिंचाई की उन्नत विधियां। तो किसान भाइयों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यदि जल है तो कल है, यानी कि हमें जल की बचत करना कितना आवश्यक है। और जो हमारा यह खेतीबाड़ी का धंधा है, इसमें जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो किसान भाई, यदि आधुनिक विधि से अपने खेतों में जल की पद्धति को अपनाएंगे, यानी कि सिंचाई की आधुनिक विधियां अपनाएंगे, तो कम मात्रा में जल का इस्तेमाल होगा और अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई होगी। तो भैया, सिंचाई की आधुनिक विधि वैसे तो आजकल काफ़ी प्रचलित हैं, लेकिन मुख्य विधि दो तीन हैं। एक तो भैया हमारे किसान भाई जान लें कि ड्रिप ट्रिकल या टपकाव विधि जो होती है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसमें हमारे किसान भाई अपने खेतों में सिंचाई का जो साधन होता है वहाँ से लेकर और अपने खेतों तक जहाँ सिंचाई करनी होती है वो पाइप बिछे होते हैं और उनमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि जल टपकाव या रिस रिस कर हमारी फसलों की जड़ों में पहुँचता रहता है और इससे थोड़े से पानी में बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रफल की सिंचाई हो जाती है। और यदि हम सब्जियों की फसल की बात करें और ऐसी जगह की बात करें जहाँ पर रेतीली मिट्टी है, जहाँ पर पानी जो क्यारी के रूप में यदि हम क्यारी विधि से पानी दें तो आगे बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि रेत में पानी नीचे चला जाता है, निक्षालन हो जाता है। तो ऐसी जगह हमारे किसान भाई बौछारी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें नोजल लगे होते हैं जगह जगह और उसी हिसाब से पूरे खेत में आप एक नोजल को चला देते हैं।

0: दूसरा बंद कर देते हैं और दूसरे को चला देते हैं, तीसरा बंद कर देते हैं। यानी कि जहां भी हमें सिंचाई जल की आवश्यकता होती है वहीं हम नोजल खोल देते हैं, और घूमने वाले नोजल भी होते हैं जो चारों तरफ घूम घूम कर हमारे खेतों की सिंचाई करते हैं। तो इससे भी बहुत ही कम मात्रा में पानी लगता है और अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई होती है। और तीसरी बात आती है भैया, जब हम बागों में पानी देते हैं तो बाग के लिए हमें थाला विधि अपनानी चाहिए। यानी कि जो हमारे आम अमरूद के बाग हैं या लीची का बाग है, तो वहाँ जो पौधे का एक थाला होता है जिसके गांव की भाषा में बोलते हैं थामला, तो एक थामले से दूसरे थामले में हमारे किसान भाई छोटा छोटा जो है नाली बनाते हैं और केवल थामलों में पानी जाकर हमारे जो बाग को प्राप्त हो जाता है, पौधों को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बागों में थाला विधि अपनाकर किसान भाई कम पानी में अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई कर सकते हैं। अब बात आती है भैया क्यारी विधि की। कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि भैया शाम को या रात को या सुबह को अपने खेत में आपलावन तोड़ या पुरानी विधि से नाका मारा और पानी खोल के चले आते हैं, चाहे वो पानी भाई हमारे खेत में अनावश्यक रूप से भरा रहे या पड़ोसी के खेत में भर जाए। तो इस प्रकार से जल की बहुत ज़्यादा हानि होती है और हमारा जो बिजली का बिल वगैरह है या डीजल से जो हम लिस्टर इंजन से जो किसान भाई पानी देते हैं तो उनका भी खर्च बढ़ जाता है। तो ऐसे किसान भाई यदि छोटी छोटी क्यारी बनाकर अपने खेत में पानी दें तो भैया वो उचित रहता है और हमारे कम पानी से अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई होती है। और इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमारे किसान भाई जो खेत ऊंचा है वहां से सिंचाई करनी शुरू करें, और छोटी क्यारी बनाकर जब आप पानी दे रहे हैं तो ऊंची वाली क्यारी का पानी तोड़कर नीचे वाली क्यारी में आप शुरू कर दीजिए और उधर नाली से शुरू कर दीजिए। तो कम समय में हमारा पूरा क्षेत्रफल आराम से भर जाता है और हमारी पैसों की बचत होती है। और अब एक बात हम बताएं सिंचाई से संबंधित, ये है कि जो सोलर पंप है उसके लिए हमारे किसान भाई ये ध्यान रखें कि सरकार बहुत ज्यादा इस ओर ध्यान दे रही है और सरकार इसमें 60-70% से भी अधिक की सब्सिडी हमारे किसान भाइयों को दे रही है। तो सोलर पंप अपने खेतों में लगाएं और उससे सिंचाई करें तो बेहद लाभदायक ये एक तरीका है सिंचाई की पद्धतियों का। और जो हम बात कर रहे थे बौछारी विधि या टपकाव विधि की, तो उसमें भी हमारे किसान भाइयों को सरकार 50% से अधिक अनुदान दे रही है यदि हमारे किसान भाई इन आधुनिक पद्धतियों से अपने खेतों की सिंचाई करें। तो भैया सिंचाई की आधुनिक पद्धति अपनाएं और अच्छा लाभ कमाएं।
1: खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सिंचाई की आधुनिक पद्धतियां विषय पर ये जानकारी। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सवेरे के 7:15 और आइए श्रोताओं अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से आज सुबह 9:15 पर, आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगा प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आज शाम 4 बजे। आकाशवाणी दिल्ली से ही सुनिएगा कार्यक्रम कंट्री वाइड इनसाइड आज रात्रि 9:30 पर, और आज रात्रि 10 बजे सुनना ना भूलें सुधा शर्मा का लिखा नाटक परहेज। निर्देशक शोभित शर्मा, प्रस्तुति सहायक यशोधर डबराल, प्रतिभागी कलाकार होंगे अनुराधा माथुर, आलोक त्यागी, वर्षा अग्रवाल, मोहम्मद तौहीद, यशोधर डबराल, श्रेया विश्वास और अक्षय त्यागी। समय याद रखिएगा आज रात्रि 10 बजे। सरफराज साबरी और साथियों की गई कव्वालियां पेश की जाएंगी सुगम संगीत कार्यक्रम में आज संध्या 7:32 पर। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आज शाम 6:45 पर श्रोता सुनेंगे विवेक गुप्ता की वार्ता जिसका विषय होगा आपातकाल के दौरान हिंदी साहित्यकारों की भूमिका। कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:05 पर किसान भाई सुनेंगे मासिक नाटक श्रृंखला के अंतर्गत नाटक काला साया जिसमें आलेख सुवेंद्र सिंह का, वाचन स्वर आलोक कुमार, निर्देशक अंकित सैनी, प्रस्तुतकर्ता शोभित शर्मा, और प्रतिभागी कलाकार होंगे आलोक कुमार, प्रमोद सिंह, सुवेंद्र सिंह, नरेश पाल सिंह, जितेंद्र कुमार, अंकित कुमार, हिमांशु रंजन और निधि भारद्वाज। साथ ही होगी चर्चा गन्ना फसल में मिट्टी चढ़ाने का लाभ विषय पर। युवाणी रोज की ही तरह आज शाम 5:15 पर, और आज का क्रम रहेगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज,

0: देश गिरी के गाय रोहिलखंडी लोकगीतों का आनंद लीजिए का आज सुबह 9:25 पर कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे पूर्वाहन 11:30 पर और आज दिन में 1:15 पर बहने सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत आधी आबादी क्रम में सुनेगा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम किलेर की वार्ता से जानकारी और साथ ही स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य समाज के अंतर्गत सुनेगा भेंट वार्ता महिलाओं में एनीमिया की समस्या कारण लक्षण और निदान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निकिता सिंह से बीना कोटनाला की बातचीत लोक संगीत कार्यक्रम लोकधारा में आज दोपहर 1:45 पर सुनिएगा भजन दास के गाए जौनसारी लोकगीत। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 यानी 954 kHz पर। प्रातः के 7:18 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से।
1: पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। कहा, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में राज्यों को करना चाहिए काम। लखनऊ अग्निकांड में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और प्रदेश भर में कल से मौसम के शुष्क रहने की संभावना। पूर्वी जिलों में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में आयोजित प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित यह बहुमाध्यम मंच केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को निर्बाध रूप से एकीकृत कर सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रभावी योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने नागरिकों को ठगने के लिए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की

0: न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संसुस्ती की गई है।
1: तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए शासन भेज दिया है। और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए।
0: अग्निकांड में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU से डिस्चार्ज कर दिया गया है। KGMU के प्रवक्ता के सिंह ने बताया कि एक गंभीर रूप से घायल युवक की हालत भी अब स्थिर है। इस बीच प्रदेश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम द्वारा कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान लगातार जारी है। गौतम बुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि वहां जांच के दौरान 2 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया। अयोध्या में CFO महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए 2 टीमें बनाई हैं, जो फायर सेफ्टी की जांच के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।
2: जो दुखद घटना हुई है लखनऊ में, इसी क्रम में हमारे जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ फायर सर्विस में। उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई है, एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं, अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाए।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी आदि की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है।
3: भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।
0: भारत में ताजिकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालोन ज्यादा ने कल रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और ताजिकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। रजा लाइब्रेरी के निदेशक पुष्कर ने बताया कि ताजिकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्दी ही एक समझौता ज्ञापन MOU भी किया जाएगा।
4: भारत के बीच में सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग किस प्रकार का हो सकता है, उस दिशा में हमने बातचीत भी की और आने वाले समय में हम वहां के संस्थानों और रामपुर रजा पुस्तकालय के बीच में समझौता ज्ञापन करेंगे। एक विशेष बात यह आई कि कुछ ग्रंथ यहाँ पर कजाकिस्तान से सीधा संबंध रहा और वो उस स्क्रिप्ट को और उस भाषा के अध्ययन के लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब ने कहा है कि वो वहां से स्कॉलर्स हमारे यहाँ भेजेंगे जो उसका अध्ययन कर सकें। और
0: राज्य सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया, मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा
5: और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि RRTS को मुजफ्फर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। उस DPR के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान की होती है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। मंडलायुक्त मेयर को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो DPR की तैयार होनी है जितना हिस्सा मेयर के अंदर आएगा उसका पैसा मेरठ का प्राधिकरण और जितना हिस्सा मुजफ्फरनगर जनपद में आएगा उसका पैसा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण।

0: खर्च करेगा।
1: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
2: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने कल से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। कहा, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में राज्यों को करना चाहिए काम। लखनऊ अग्निकांड में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और प्रदेश भर में कल से मौसम के शुष्क रहने की संभावना। पूर्वी जिलों में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
3: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
5: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सवेरे के 7:31 और आइए अब सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।
6: सूरज के साथ साथ

जो तूफानों में भी मुस्कुराकर सफर तय करते हैं, वही दुनिया को आगे बढ़ाने का हुनर रखते हैं। सलाम उन वीर नाविकों को जो समंदर की राह चुनते हैं और अपने साहस से मानवता की नई मिसाल गढ़ते हैं। सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन हमारे सभी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और आज का कार्यक्रम लेकर आपके साथ हूँ मैं, श्वेता भट्ट। जी हाँ श्रोताओं, साहस की कोई सीमा नहीं होती और कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और श्रोताओं, ये बात डेडिकेटेड है उन अनदेखे नायकों को जो महीनों सालों तक अपने परिवार से दूर रहकर समुद्र की विशाल लहरों के बीच दुनिया की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। जी हाँ श्रोताओं, आज यानी हर वर्ष 25 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेयरर, यानी अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। आज का ये दिन समर्पित है उन लाखों नाविकों और समुद्री कर्मियों को जो समुद्री जहाजों के माध्यम से देशों के बीच व्यापार और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। साल 2010 में आईएमओ यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई और इसका पहला आयोजन 25 जून साल 2011 को किया गया, जिसका उद्देश्य समुद्री कर्मियों के योगदान को सम्मान देना और उनके कार्यों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। श्रोताओं, कठिन परिस्थिति में कार्य करने वाले नाविक वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनका सम्मान और सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। और आपको बताएं श्रोताओं, विश्व व्यापार का लगभग 90% हिस्सा समुद्री मार्गों से होता है। खाद्यान्न, दवाइयां, ईंधन, मशीनें और दैनिक उपयोग की अनेक वस्तुएं समुद्री जहाजों द्वारा एक देश से दूसरे देश तक पहुंचती हैं। और नाविक कठिन मौसम, समुद्री तूफान और लंबी यात्राओं के बावजूद अपने दायित्व निभाते हैं। और श्रोताओं, जब हम अपने घरों में आराम से बैठकर आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तब हमें जरा भी एहसास नहीं होता कि इन वस्तुओं को हम तक पहुंचाने में न जाने कितने वीर नाविकों का अथक प्रयास, अथक परिश्रम शामिल होता है। और श्रोताओं, कहीं ना कहीं हमारे देश के वीर नाविक हमें एक कड़ी और एक बहुत अच्छी सीख भी देते हैं। लक्ष्य कितना भी कठिन और दूर हो, हिम्मत और हौसला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कर्तव्य सर्वोपरि होना चाहिए। धैर्य, अनुशासन और समर्पण को हमेशा अपने व्यक्तित्व में शामिल रखना चाहिए, क्योंकि समुद्र की गहराई और जीवन की कठिनाई दोनों से वही जीतता है जो साहस नहीं छोड़ता। और मंजिल भी श्रोताओं उन्हीं को मिलती है जो लहरों से लड़कर आगे बढ़ते हैं।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
5: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
4: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
5: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
4: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
5: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
7: तो इंतजार किस बात का,
6: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
7: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
6: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
7: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
6: और हमारा ईमेल आईडी है
7: akashwaninajibabad@gmail.com।
6: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
8: एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र और कार्यक्रम है सूरज के साथ साथ। श्रोताओं, सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं चरित्र में होती है, और सच्ची पहचान रंग में नहीं विचारों में होती है, और सच्ची इंसानियत भेदभाव में नहीं बल्कि दूसरों को अपनाने में होती है। जी हाँ श्रोताओं, हमारे समाज में आज भी कहीं ना कहीं कई भ्रांतियां और गलत धारणाएं मौजूद हैं। अब जैसे कि सफ़ेद दाग छुआछूत की बीमारी है, हाथ मिलाने से, साथ बैठने में, साथ में खाना खाने से, यहाँ तक कि एक साथ रहने से भी फैलता है, वगैरह वगैरह। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी व्यक्ति की त्वचा का रंग बदल जाने से उसकी प्रतिभा, उसकी बुद्धिमता और उसका सम्मान कभी कम नहीं हो जाता, बल्कि हमें व्यक्ति को उसके गुणों और व्यवहार से पहचानना चाहिए, ना कि उसके बाहरी स्वरूप से। और इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 25 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड विटिलिगो डे, जिसे सामान्य भाषा में सफेद दाग जागरूकता दिवस भी कहते हैं। विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में हुई। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि सफेद दाग अर्थात विटिलिगो कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, और ना ही ये किसी व्यक्ति की योग्यता या व्यक्ति को प्रभावित करती है, बल्कि ये एक त्वचा संबंधी स्थिति है जिसमें शरीर के कुछ हिस्सों की त्वचा का रंग सफेद हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि त्वचा को रंग देने वाली कोशिकाएं, जिन्हें मेलानोसाइट्स कहा जाता है, वो काम करना बंद कर देती हैं या तो फिर नष्ट हो जाती हैं, जिसका मुख्य कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का असामान्य रूप से सक्रिय होना, अनुवांशिकी, मानसिक तनाव, हार्मोनल डिसबैलेंस या फिर ऑटो इम्यून विकार हो सकता है। और श्रोताओं, आज के इस वर्ल्ड विटिलिगो डे मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली गलत धारणाओं को दूर करना है, भेदभाव और सामाजिक उपेक्षा को समाप्त करना, लोगों को चिकित्सीय जानकारी देना, विटिलिगो से प्रभावित लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाना, साथ ही सम्मान और समानता का संदेश फैलाना है। और श्रोताओं, आधुनिक चिकित्सा में इसके उपचार और नियंत्रण के कई विकल्प उपलब्ध हैं। समय रहते चिकित्सीय सलाह लेना सबसे महत्वपूर्ण है। और श्रोताओं, आपको बताएं, 25 जून की तिथि इसलिए चुनी गई इस विटिलिको डे के लिए, क्योंकि इस दिन प्रसिद्ध पॉप गायक माइकल जैक्सन का निधन हुआ था। उन्हें विटिलिको की समस्या थी और तब से ये दिन दुनिया भर में जागरूकता और सम्मान के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और साल 2011 में इसे प्रभावी रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोगियों, चिकित्सकों और सामाजिक संगठनों ने मिलकर आगे बढ़ाया। तो श्रोताओं, सफेद दाग नहीं है, सोच का दाग मिटाइए और एक जागरूक समाज बनाइए।

श्रोताओं, आज एक और खास दिन है। जैसे कि लोकतंत्र की लौ कभी बुझने ना पाए, संविधान का मान सदा बढ़ता जाए, अधिकारों की रक्षा का जो संदेश देता है वही राष्ट्र को प्रगति का परिवेश देता है। यूं तो सच की राह पर चलना आसान नहीं होता, संघर्ष बिना कोई महान नहीं होता। इतिहास से सीखना ही समझदारी है, जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र की पहरेदारी है। जी हाँ श्रोताओं, आप समझ ही गए होंगे, संविधान केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि देश की आत्मा और लोकतंत्र की शक्ति है। और कार्यक्रम में आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज यानी 25 जून को मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस। ये दिन वर्ष 1975 में लगाए गए इमरजेंसी यानी आपातकाल की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आंतरिक आपातकाल घोषित किया। आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला। इस दौरान कई मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए, प्रेस की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाया गया, अनेक विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। और यही घटनाएं हमें भविष्य के लिए सावधान और जागरूक भी बनाती हैं, है ना श्रोताओं? और श्रोताओं, इस दिवस का उद्देश्य उस दौर को याद करना है और लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व को समझना है कि नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा का संदेश हमें ही देना है, युवाओं को इतिहास से सीखने के लिए प्रेरित करना है। और आज का एक खास दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि लोकतंत्र तभी मजबूत रहता है जब देश के नागरिक जागरूक हों, संविधान का सम्मान करें और अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी समझें, क्योंकि श्रोताओं, जागरूकता ही राष्ट्र की असली पहचान है, संविधान का सम्मान ही भारत की शान है। संविधान को पढ़िए, समझिए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लीजिए, सत्य, न्याय और समानता के मूल्यों को अपनाइए और एक जिम्मेदार नागरिक बनिए।

आप सुन रहे हैं श्रोताओं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। संकल्प मजबूत हो तो हर बुराई हार जाती है, इच्छा शक्ति जाग जाए तो हर लत छूट जाती है। जी हाँ श्रोताओं, नशा किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि अनेक समस्याओं की जड़ और शुरुआत है। और श्रोताओं, इसी के मद्देनजर 17 जून से 26 जून देश भर में चलाया जा रहा है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान पखवाड़ा। इस जन जागरूकता अभियान का उद्देश्य है युवाओं और समाज को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों से बचाना और स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त भारत का निर्माण करना। श्रोताओं, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उनसे जुड़ी कई जिंदगियों, परिवार, समाज और भविष्य को भी प्रभावित करता है। इसीलिए नशा मुक्त पखवाड़ा अभियान का संदेश है, नशे को ना, जीवन को हाँ। श्रोताओं, हम सभी मिलकर अपने अपने आसपास, परिवार, मित्रों और समाज में नशे से होने वाले नुकसानों के प्रति लोगों को सचेत कर सकते हैं। युवाओं को खेल, योग, संगीत, सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ सकते हैं, इस अभियान को सफल बना सकते हैं, क्योंकि नशा मुक्त भारत या फिर नशा मुक्त युवा ही सशक्त भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्रोताओं, नशा मुक्ति मित्र यानी NMM अभियान में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नशा मुक्ति मित्र पहल और एक पर्सनल डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है। नशे की लत से पीड़ित लोगों या मदद चाहने वालों के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB द्वारा मनस राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 जारी की गई है, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान गुप्त रखकर इस सहायता को प्राप्त कर सकता है। और आइए श्रोताओं, अब जानते हैं देश और दुनिया के इतिहास में क्या कुछ खास है आज तिथि विशेष में। 25 जून 1983 भारतीय खेल इतिहास का एक स्वर्णिम दिन था। इस दिन भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता। कप्तान कपिल देव का नेतृत्व प्रेरणादायक रहा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन बनाए। उस समय लगा दो बार विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज आसानी से मैच जीत जाएगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को 140 रन पर ऑल आउट कर दिया और भारत 43 रन से जीत गया। और साल 2008 में 25 जून के दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मकान, फ्लैट और प्लॉट की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को 8% से घटाकर 5% कर दिया था। महिलाओं को अतिरिक्त रियायत भी दी गई थी। इस फैसले का उद्देश्य संपत्ति की खरीद बिक्री को आसान और सस्ता बनाना था। वहीं 1947 25 जून को एन फ्रैंक की डायरी यानी डायरी ऑफ अ यंग गर्ल प्रकाशित हुई। इसकी 3 करोड़ प्रतियां बिकी और इसका 67 भाषाओं में अनुवाद किया गया। एन फ्रैंक एक यहूदी किशोरी थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी उत्पीड़न से बचने के लिए अपने परिवार के साथ छिप कर रह रही थी। उन्होंने 1942 से 1944 के बीच अपने अनुभवों, डर, सपनों, भावनाओं और युद्ध की भयावह परिस्थितियों को इस डायरी में उकेर दिया। वहीं श्रोताओं, 25 जून 2009 को इस दुनिया को अलविदा कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के लोकप्रिय राजनेता तथा राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहे शिवचरण माथुर का। वे राजस्थान की राजनीति में प्रशासनिक क्षमता, संगठन कौशल और विकासोन्मुख दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। मृत्यु के समय वे असम के राज्यपाल थे। सार्वजनिक जीवन में उनका योगदान आज भी स्मरणीय है। वहीं भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गोवा मुक्ति आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक मनोहर आप्टे यानी मोहन रनाडे का निधन भी श्रोताओं आज ही के दिन यानी 25 जून साल 2019 को हुआ था। पुर्तगाली जेल में 14 वर्ष कठिन कैद सहने वाले इस वीर सेनानी को भारत सरकार ने साल 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। उनका संघर्ष, साहस और राष्ट्रभक्ति आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आइए अब बात करें आज के दिन जन्मे व्यक्तियों की।
भारत की स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेविका और प्रख्यात राजनेता सुचेता कृपलानी का जन्म श्रोताओं 25 जून 1908 को हुआ था। उन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1940 में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की स्थापना भी की। वहीं 25 जून 1986 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जन्म हुआ भारत के प्रसिद्ध एथलीट सुधा सिंह का, जिन्होंने विशेष रूप से 3000 मीटर स्टीपल चेंज प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में केवल दौड़ना नहीं बल्कि रास्ते में रखी गई बाधाओं और वाटर जंप को भी पार करना होता है। सुधा सिंह ने भारत की अग्रणीय एथलीटों में से एक, एशियाई खेलों में की स्वर्ण पदक विजेता, ओलंपियन, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान से अलंकृत हैं। अपनी मेहनत, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारतीय एथलेटिक्स को नई ऊंचाइयां प्रदान की। और श्रोताओं, 25 जून 1924 को जन्मे गजलों के शहंशाह, भारतीय फिल्म संगीत के नायाब संगीतकार मदन मोहन कोहली, 1950 से 1975 के बीच आपने हिंदी सिनेमा को अनेक अमर धुनें दी। 1970 में फिल्म दस्तक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन प्राप्त किया। साल 2004 की फिल्म वीरजारा का संगीत उनकी अप्रकाशित धुनों पर आधारित था, जिसने नई पीढ़ी को भी अपने संगीत से परिचित कराया। अश्रोताओं, 25 जून 1974 को जन्मी हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित कपूर परिवार की सफल अभिनय कर नई परंपरा स्थापित करने वाली खूबसूरत अदाकारा करिश्मा कपूर 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, फिजा, जुबैदा, बीवी नंबर वन, हम साथ साथ हैं और जीत जैसी अनेक सफल फिल्मों में करिश्मा कपूर ने अभिनय किया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और अनेक फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित करिश्मा भारतीय सिनेमा की शानदार अभिनेत्री हैं। वर्तमान में कई वेब सीरीज में भी वे दमदार भूमिकाओं में नजर आ रही हैं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आकाशवाणी परिवार उनके उज्जवल स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना करता है।

और श्रोताओं, अब एक नज़र आज के अखबारों की सुर्खियों पर। अमर उजाला में प्रकाशित खबर है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस। भारत अमेरिका के बीच 2 दिवसीय व्यापार वार्ता में नहीं निकला ठोस नतीजा। भारत अपने निर्यातकों के लिए प्रतिस्पर्धी लाभ और अन्य देशों की तुलना में कम टैरिफ की गारंटी चाहता है। वहीं नेहरू स्टेडियम बिजनौर के मैदान में जिला स्तरीय अंडर 14 ट्रायल मैच में कल यानी बुधवार को बिजनौर की बी और डी टीम आमने सामने रही। शानदार प्रदर्शन करते हुए बिजनौर बी टीम ने डी टीम को 41 रनों से हराया। और अमर उजाला, सफलता का नया अंक लॉन्च। प्रतियोगी परीक्षाओं को समर्पित मासिक पत्रिका अमर उजाला सफलता का जुलाई का अंक लॉन्च कर दिया गया है। ये महाविशेषांक है जिसमें आपको महीने भर की करंट अफेयर्स के अलावा रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्राओं के लिए सफलता का ये अंक काफी उपयोगी साबित हो सकता है। वहीं हवाई सफर होगा महंगा, 25% तक बढ़ सकते हैं टिकटों के दाम। भू राजनीतिक उथल पुथल और रिफाइनरी की बाधाओं के चलते विमान ईंधन की आपूर्ति में भारी कमी से होने वाले समय में हवाई किराया लगभग 20-25% तक महंगा होने के आसार। वहीं दैनिक जागरण लिखता है, अगले सप्ताह भारत को भिगो सकता है मानसून। मौसम विभाग के अनुसार करीब 2 हफ्ते देरी से चल रहा है मानसून और एनसीआर को अभी करना पड़ेगा इंतजार। तो श्रोताओं, ये थी आज के अखबारों की सुर्खियां और अब इसी के साथ ही कार्यक्रम सूरज के साथ साथ संपन्न करने की श्वेता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और दो श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
4: राजूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभिडांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
5: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
4: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
6: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
7: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
8: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमेरिकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffer during emergency. India-China border trade via Lippu Lake Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed 4 major infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Prime Minister Modi also assessed progress under the TB Mukt Bharat Abhiyan. More from our correspondent.
11: During the meeting, Prime Minister Narendra Modi reviewed 4 major infrastructure aimed at enhancing connectivity, industrial development and public welfare. He directed ministries and state governments to resolve pending issues on a mission mode and ensure timely completion. He also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for better planning and monitoring of projects. Mr. Modi also reviewed the progress of TB Mukt Bharat Abhiyan and suggested leveraging artificial intelligence and involving NCC cadets and My Bharat volunteers in awareness and community mobilization efforts. Reviewing grievances related to cybercrime and digital arrest frauds, the Prime Minister called for stronger coordination among law enforcement agencies, banks and digital platforms. With Rohan and Saklin, Ishani Yadav, Akashvani News, Delhi.
10: The first batch of 26 Indian traders is expected to enter the Chinese territory of Tibet through Lippu Lake Pass in Pithoragarh district.

कार्यक्रम का ये पहला गीत हमारे श्रोताओं ने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम था तेरे घर के सामने। शब्द रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीत था SD बर्मन का। और श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म बरखा से। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत है चित्रगुप्त का।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: QR कोड स्कैन कर 5000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं सदाबहार नगमों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स, और कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म महबूब से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत लिखा है शकील बदायूं यन्नी ने और संगीत है नौशाद का।

0: चंदन का एहसास।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
1: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म एक कली मुस्काई का ये गीत। शब्द रचना थी राजेंद्र कृष्ण की और संगीत था मदन मोहन का। कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सभी श्रोताओं के लिए फिल्म नीला आकाश से। गीत लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत है एक बार फिर से मदन मोहन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम गोल्डन हिट्स के अंत में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लव इन टोक्यो का एक गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। शंकर जयकिशन का संगीत और शब्द रचना है हसरत जयपुरी की।

0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार नगमों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। समय सुबह के 9:15 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से
1: यही समाप्त होता है।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बस्ती और बदायूं जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित सिंह का।
1: प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूर्ण होने पर बस्ती विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बस्ती में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सर्किट हाउस में सुपोषित कार्यक्रम के अंतर्गत पहुंची महिलाओं को किट वितरण किया। साथ ही साथ जिले में चल रहे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष से पूर्ण होने पर उनके द्वारा दिए गए अनेक योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 12 वर्षों का स्वर्णिम काल पूरा किया है। उनके नेतृत्व में भारत देश की तस्वीर बदली है और तकदीर भी बदली है और एक नई सोच के साथ भारत ने एक नई दिशा की ओर बढ़ने का संकल्प लिया है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी और उन्होंने अपनी सरकार का लक्ष्य गरीब कल्याण योजनाओं के साथ शुरू किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि
2: 4,128 करोड़ रुपए की हमारी 383 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी और इन परियोजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम चलाए गए हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद उनको रिवाइवल के प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किए जिसमें जो पहले दो शुगर मिल रिवाइव किए गए।
1: बस्ती जिले में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में प्राकृतिक खेती विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश एवं देश के विभिन्न किसान कृषि वैज्ञानिक अधिकारियों तथा बड़ी संख्या में किसानों ने सहभाग कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने किसानों से आह्वान किया कि वे कृषि विज्ञान के तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त कर प्राकृतिक खेती को अपनाएं तथा कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग को न्यूनतम प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है बल्कि किसानों की उत्पादन लागत को कम कर उनकी आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बस्ती जिले में मुहर्रम के दौरान निगरानी के लिए 1400 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इस दौरान निकलने वाले जुलूस और मजलिसों के मद्देनजर पर्याप्त पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस क्रम में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मुहर्रम को लेकर अधिकारियों ने पीस कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में मुहर्रम को लेकर थाना क्षेत्र वासियों से सुझाव मांगा गया। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से मानक के अनुरूप संपन्न कराने की अपील किया। जिलाधिकारी कृतिका जोशा ने बताया कि
3: जनपद में लगभग 1952 ताजिए रखे जाएंगे जिनकी निगरानी के लिए

0: की जा रही है। जिले में भी पुलिस विभाग के साथ फायर टीम और डीआईओ लगातार चेकिंग कर रहे हैं। टीम ने सबसे पहले कटरा क्षेत्र के लक्ष्य एकेडमी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लगे फायर सेफ्टी एक्सपायर मिले, तत्काल ही संस्थान को फायर सेफ्टी को लेकर चेतावनी जारी की गई। मानक विहीन कोचिंग संस्थान चलाने पर अधिकारियों ने कड़ी आपत्ति जताई, साथ ही मानकों को पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए। क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने एक कोचिंग संस्थान के चालक को निर्देश दिया कि वहीं इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी ने बताया कि शासन और उच्चाधिकारियों के निर्देश पर संयुक्त टीम द्वारा कोचिंग और लाइब्रेरी सेंटरों की चेकिंग कराई जा रही है।
1: बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का।
2: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर आधारित बदायूं के डायट परिसर में आयोजित 4 दिवसीय प्रदर्शन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। जन प्रतिनिधियों, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों आदि ने सेल्फी प्वाइंट पर तस्वीरें लेकर पलों को यादगार बनाया। बदायूं जनपद के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन एवं पर्यावरण डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बीते दिनों प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में पहले दिन से ही आगंतुकों में सरकार की योजनाएं जानने के लिए भारी उत्साह देखा गया। आगंतुकों ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव से पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं में स्टार्टअप, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और निःशुल्क खाद्यान्न वितरण जैसी योजनाएं शामिल रहीं। प्रदर्शनी का आयोजन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। बदायूं स्थित कृष्णलाल में बदायूं से लखनऊ के लिए नई ट्रेन संचालित होने के संबंध में बीते दिनों आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि ये बदायूं जनपद की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि बदायूं से लखनऊ के लिए रेल सेवा संचालित किए जाने की मांग को लेकर वो लंबे समय से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष लगातार प्रयासरत थे। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बताया,
3: आज मुझे खुशी है कि बदायूं से सीधी ट्रेन लखनऊ के लिए जनता की बहुत पुरानी डिमांड थी चलने जा रही है, इसकी स्वीकृति मिल गई और बहुत जल्दी तिथि तय करके बदायूं से हरी झंडी दिखाई जाएगी। यहां से सुबह 5:25 पर ट्रेन यहां से चलेगी और शाम को वापस भी आ जाएगी।
2: बदायूं की जिलाधिकारी अवनीश राय ने बीते दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन की सुगमता से सुलभ कराने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से माइक्रो प्लान बनाकर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने 28 जून से प्रारंभ हो रहे पल्स पोलियो अभियान के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान अंतर्गत ब्लॉक स्तर नोडल अध्यापकों का संवेदीकरण, स्थानीय निकायों पर संवेदीकरण, ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी की संवेदीकरण आदि कार्य समय पर पूर्ण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि संबंधित सभी बैठकर समय से पूर्ण कराकर अभियान को सफल बनाया जाए। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई से 31 जुलाई तक तक अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने 28 जून 2026 से पल्स पोलियो दिवस पर सभी प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को पल्स पोलियो दिवस के दिन बूथ का उद्घाटन संबंधित ग्राम प्रधान से करवाने को निर्देशित किया। बदायूं बीते दिनों राष्ट्रीय नीति 2020 के अंतर्गत सतत शिक्षण पद्धति एवं कार्य प्रणाली विषय पर एक फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य संसाधन व्यक्तियों के रूप में प्रोफेसर साजिद जमाल और डॉक्टर अहमद मुस्तफा सिद्दीकी, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अध्यापन कार्य से जुड़े हैं, ने शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों, छात्र केंद्रित शिक्षा, नवाचार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर आधारित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि व जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि योग हमें फिट रखता है और जो फिट है वही हिट है। इस अवसर पर सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, MLC प्रतिनिधि शारदेन्दु पाठक, नोडल अधिकारी व राज्य आयुक्त GST नितिन बंसल, जिलाधिकारी अवनीश राय सहित अन्य अधिकारी व आमजन आदि मौजूद रहे। योग दिवस पर योग प्रशिक्षकों ने सभी को योग करवाया। जनपद के प्रभारी मंत्री व प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन एवं पर्यावरण डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में कोरोना वैक्सीन से देश के लोगों की हिफाजत की।
4: हम आज इस योग दिवस पर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के दीर्घायु की कामना करते हैं। ये योगा को इतना ज्यादा पॉपुलर हिंदुस्तान में करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया को योग का लाभ बताया।

0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सुबह के 9:25 और लीजिए अब प्रस्तुत है लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं भुवनेश गिरी के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं भुवनेश गिरी के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं भुवनेश्वर गिरी के गाए रोहिलखंडी लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे थे भुवनेश गिरी के गाए रोहिलखंडी लोकगीत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। समय सुबह के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। खतों की खुशबू, संदेशों का प्यार, लेकर आए हैं हम मधुर गीतों का उपहार।
1: दिल से निकली हर एक पुकार, बन गई है सुरीले नगमों का संसार।
0: किसी की यादों का मीठा सा पैगाम, किसी की चाहत का प्यारा सलाम।
1: सुरों की महफिल, गीतों की धारा, आपकी पसंद आपका सहारा।
0: तो आइए भावनाओं के इस मधुर सहारे शुरू करते हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे, और स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम में, जहां आज आपके साथ है आपकी रेडियो साथी श्वेता भट्ट, और हमारे साथ हैं,
1: और मैं हूं आपकी साथी पारुल गोयल।
0: तो हम दोनों मिलकर करते हैं अपने श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। और पारुल जी, अब आप,
1: जी?
0: मैं और हमारे श्रोता मिलकर करते हैं कार्यक्रम का आगाज, लेकिन
1: बिल्कुल श्रोता जी,
0: लेकिन उससे पहले सभी श्रोताओं को बता देते हैं लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए उन्हें क्या करना होगा। उन्हें करना होगा हमें व्हाट्सएप मैसेज, अपना नाम, पता और पसंद का गीत, और उस मैसेज को भेज दीजिएगा हमारे आकाशवाणी व्हाट्सएप पर, जिसके लिए हमारा आकाशवाणी व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।
1: और एक बार और सुन लीजिए, 9457078288।
0: और कार्यक्रम का ये पहला गीत हमारे सभी श्रोताओं के नाम।

0: तो श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने एंजॉय किया। फिल्म थी हीरो नंबर वन, और इस गीत में आवाज़ें थीं साधना सरगम, उदित नारायण की, गीत लिखा था समीर ने और संगीत था आनंद मिलिंद का। और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी थी।
1: हमारे पास फरमाइश आई है चंदा रेडियो श्रोता संघ मधुबनी बिहार से। शोभिकांत झा, मुखिया जी, हेमलता सज्जन, मनोज सज्जन, लकी सज्जन, मोहित सज्जन, परी सज्जन, सरोज सज्जन, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी सज्जन, अर्चना, विवेक और मास्टर एस के सज्जन। साथ ही हमारे पास फरमाइश आई है सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से, विनय मोहन, मीनाक्षी, प्लोमा वो और डॉक्टर ईरानी। इसके साथ में हमारे पास फरमाइश भेजने वालों में नाम है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, इन्होंने भेजा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें संदेश भेजा है। और साथ में हमारे पास छत्रपति संभाजी नगर से ये संदेश आया है आपका, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश।
0: और इसी के साथ कुछ मैसेज भी शामिल कर लेते हैं पारुल जी।
1: जी बिल्कुल।
0: ये मैसेज हमें भेजे हैं टागोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। इसके अलावा हमें फरमाइश की है मैसेज के माध्यम से मोहल्ला हलवाईन शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने परी महल काजगंज से फरमाइश कर रहे हैं। नबील खान, आदाब खान, आरफा एम, असलम सैफी, इल्मा खान, मास्टर जाहिद अली, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और नमित आहूजा। और इसी गीत के लिए हमें फरमाइश की थी करूला मुरादाबाद से अयूब खान, ईरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान, सिंधौली मीरगंज से जिशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख। कार्यक्रम के पहले गीत के लिए फरमाइश मिली थी वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंघड़कर, दिशांत कुमार सिंघड़कर और अर्पिता का। और ये एक फरमाइश है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार की। आप हैं मुकेश पत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश पत्ता। गांधी बाका कोला से रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर, कीर्ति, सरोज चौक अमरावती से कमरूला ठेकेदार और नसीम बेगम। सहारनपुर से राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव और अर्पणा नामदेव की। और श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है चंदाना दीक्षित और अभिजीत की आवाज़ में, फिल्म है कुली नंबर वन, शब्द रचना है समीर की और संगीत है आनंद मिलिंद का। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश की है गांधी चौक रोपण पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जेतेक बिरक, मीका बिरक, नैनीताल माल रोड से पास्टर प्रेम, प्रिमरोज, हैरी, इमैनुअल, ट्रेसा, शैली, प्रीतम, जॉन, शेफाली, सना, जैसी और एनी।
1: साथ में हमारे पास संदेश आया है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे का। और साथ ही हमारे पास आया है ये सोनू रविराज, गुलशन लकी, जालंधर सिटी पंजाब से बोल रहे हैं, अपनी फरमाइश का गीत हमें बताया है।
0: और ये मैसेज हमें मिला है मिसबा शमशी का नगीना से। और इसी गीत के लिए हमें फरमाइश की है करमवीर हाउस बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर जोड़ा, दीपिंदर, वीरिंदर, सिमरन, एकम, दमन और अभिजीत का। पट्टी महल बड़ौद यूपी से फरमाइश कर रहे हैं इसी गीत के लिए रामानंद कश्यप, विमलेश कश्यप, आर्यन कश्यप, पालीराम भगत, आयुष, आदित्य, राजेश और इनके मम्मी पापा। और फिल्म कुली नंबर वन के गीत के लिए एक और फरमाइश हमें मिली है वंदा नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विकी रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, उनके परिवार के सभी सदस्य। तो श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म कुली नंबर वन का ये गीत, आवाजें हैं चंदाना दीक्षित और अभिजीत की।

0: देसाई की आवाजों में फिल्म है बीवी नंबर वन। शब्द रचना है समीर की और संगीत है अनु मलिक का। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश की है,
1: हमें फरमाइश भेजिए महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने। साथ में हमारे पास फरमाइश आई है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता अमृता जोशी, लोकेश जोशी की। और साथ में हमारे पास खत आया है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से, राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे का। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वेद, रानी वेद, महिमा वेद और नीतू वेद का। और श्रोता जी,
0: जी
1: कौन से मैसेजेस आए हैं हमारे पास?
0: ये मैसेज हमें भेजा है बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन, शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण, फुंदी बाई बागरी और इनके परिवार के सभी सदस्य और इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता। बिहार से मोहम्मद याकूब, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद सलीम और कलीम। और ये फरमाइश है सहारनपुर से सोनाली, आशा और सुरेश नारंग की। और इसी गीत के लिए हमें फरमाइश की है मैसेज के माध्यम से दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा की। और ये फरमाइश है जिला मुरादाबाद ग्राम खेश महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और इनके परिवार के सभी सदस्य। कोटद्वार रोड बाधापुर बिजनौर से हैं ये एम ताहिर और इनके परिवार के सभी सदस्य। दीवाना रेडियो लिसनर क्लब जमनिया जिला गाजीपुर से फरमाइश कर रहे हैं इस गीत के लिए सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक, स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से हैं विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। और ये फरमाइश है मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमीला गंज आलोर जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा की।
1: और साथ में फरमाइश हमारे पास आई है गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विकी रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे की। साथ ही आपने हमें संदेश भेजा है प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू ने बोडू सरा नैला से। और साथ में हमारे पास फरमाइश आई है इस गीत के लिए पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया की। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की।
0: और ये मैसेज हमें मिला है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा दिल खुश, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुश दिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू, पप्पू दिल खुश, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल, शक्ति खुश दिल, संजीव बंटी जिंदल और इनका पूरा परिवार। और इसी गीत के लिए हमें मैसेज किया है मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी और एहसान अली बागपत यूपी से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही महराज जहां मैसेज कर रहे हैं आज़ाद नगर लक्सर से, नई दिल्ली से हैं आप जॉनसीना, बी आर टेलर, सुमन और सरिता, डीएलएफ कॉलोनी रोहतक से फरमाइश कर रहे हैं महेंद्र शाह, जितेंद्र शाह और मानसी शाह। और इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश की है कस्बा उगेती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज बजाज, प्रशांत कुमार और कार्तिक गुप्ता ने। और ये एक और फरमाइश है पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और उनके परिवार के सभी सदस्यों की। करोला मुरादाबाद से अयूब खान, नीरम गुड़िया, शुएब खान, किरतपुर नजीब अब्बास से सलमान और जावेद, शास्त्री नगर मेरठ से मैसेज किया है दिलीप शर्मा, अंजू शर्मा, सुगंधा शर्मा, धैर्य और वत्स शर्मा ने।

0: मोदी और कुलदीप कंवल। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गव्या और सुचा पाठक। राहुल नगर अमरावती से फरमाइश की है सिद्धार्थ गुराने, अर्चना गुराने, हिमभूषण, प्रणय प्रसिद्धि और महेश गुराने ने।
1: साथ ही हमारे पास फरमाइश आई है नगर निगम वार्ड 28 से नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, बहुरुबीना वसीम, बाबू आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, नवासा अरहान बाबू, नवासा हमजा बाबू, नवासा मुजम्मिल बाबू, हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख और कोकिलवाड़ा से औराई जिला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद फैसल शेख, नुजहत जहां नाज और शेख टोली समस्तीपुर से शहनवाज परवेज और मुसरत जहां नाज का। साथ ही हमारे पास फरमाइश आई है आशा रेडियो छोटा संघ मेहरनगर उमर खेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत राही, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन टुकटुक, आहार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश, सुमित कुमारी ध्वनि परी। और साथ ही हमारे पास फरमाइश भेजने वालों का नाम है अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद, बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव, शाइना और निवान ने भेजा है। और बताइए श्वेता जी, हमारे पास फरमाइश और किन किन लोगों की आई है?
0: अगली फरमाइश हमें भेजी है इसी गीत के लिए गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य ने। मलियान सरधना मेरठ से मैसेज किया है इसी गीत के लिए अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन और मुस्कान जैन के साथ मास्टर जीवियम ने। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी सिंह डागला, जे एस नायर, शोभा नायर और इनका समस्त परिवार। उज्जैन एमपी से फरमाइश की है विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन और दिलीप सिंह पवार ने। आगरा से फरमाइश की है मैसेज के माध्यम से सरिता चौरसिया, सुमित अबीर और सुजाता ने।
1: जी, कभी कभी श्रोताओं, दोस्तों, कभी कभी कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और ये वाला गाना जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये गीत भी एक ऐसा ही एहसास है। दोस्तों, जब किसी की बातें आदत बनने लगती हैं और दिल चुपके से पूछ बैठता है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है, तो आइए दोस्तों सुनते हैं फिल्म सच्चा झूठा से लिया गया ये सुंदर सा नगमा।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कृष्णा से। आवाज़ है अलका याग्निक की, गीत लिखा है आनंद राज आनंद ने और संगीत है अनु मलिक का। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारी सभी श्रोता। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। फजिलिका पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशु, लाडी, विशाल, शालिनी और टिवांशी खेड़ा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार, साथ ही जितेंद्र मालाकार। श्री गंगानगर से बजरंग लाल शर्मा, जसपाल सिंह सिद्धू, जगमोहन सिंह अरनेजा और नरेश कुमार शर्मा।
1: सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनित शर्मा। कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने भेजा है हमें, और साथ में हमें मैसेज आया है अनोखे लाल मौर्य का, कटरा चांद खाम मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, श्रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य का। साथ में हमारे पास इस गीत की फरमाइश आई है लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदि बगौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर का। बुलंदशहर से हमारे पास फरमाइश आई है बदरू वली अंसारी की, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी की। गंगानगर से हमारे पास फरमाइश करता है बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार और रमेश कुमार शर्मा। महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश बगारिया, पराग बगारिया, प्रदीप बगारिया और कैशव पटेल, साथ में निवास राम निवास अग्रवाल जी। और कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया ने बादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल। शेरपुर कलाम गाजीपुर से अवधेश, श्रीमती प्रीति और नवनीत।
0: और ये मैसेज हमें मिला है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का। और इस गीत के लिए हमें ये मैसेज मिला है ग्राम करेली बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी, शमीम अंसारी और माहिनूर अंसारी का। और ये गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी श्रोता उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। और ये फरमाइश
1: करेली बरेली से,
0: और ये फरमाइश हमें भेजी है रतलाम एमपी से जगदीश धाकर, रंजूबाई धाकर, युवराज सिंह धाकर और शिवांगी धाकर की। चंद्रनगर सहारनपुर से ये मैसेज हमें मिला है सुरेश नारंग, आशु, सोनाली, प्रथिव और कृषिव का। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। विलेज एंड पोस्ट राहुल नगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान और कशिश चौहान। इसी गीत के लिए फरमाइश की है अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, कव्या मल्होत्रा, उनके परिवार के सभी सदस्य। महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पगारिया के साथ आप हैं राम निवास अग्रवाल। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म कृष्णा से। आवाज़ है अलका याग्निक की, गीत लिखा है आनंद राज आनंद ने और संगीत है अनु मलिक का।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है आन मिलो सजना फिल्म से, जिसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और इसको संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें की है दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी ने, और बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से फरमाइश की है मैसेज के माध्यम से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य, मेघा मस्कीन ने, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित, कीशु और रेहान खुराना ने, ताज मोहम्मद अंसारी, लल्लू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार और बाबा मस्तान ने फरमाइश की है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से, ग्राम जहानाबाद नजीबाबाद से फरमाइश कर रहे हैं मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जैद, अक्षर रानी, इंशा, अरीबा, अनाबिया और आयरा।
1: साथ में हमारे पास फरमाइश भेजिए परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा और असलम सैफी ने, गजडून बारा से शमशुल कमर और एजी खान ने, मेन रोड तेलहारा से है प्रकाश पोहरकार, नर्मदा, अनिल, महेंद्र, सुनील, साहिल और सुजाता पोहरकार, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश कृष्णा और पीहू और उनका समस्त परिवार, राजमाता नगर सुंदरखेड़ बुलढाणा महाराष्ट्र से हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति, आकांक्षा और आकाश कुमार ने हमारे पास फरमाइश भेजी है, दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा।
0: और ये और एक और श्रोता हमारे मैसेज के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं और फरमाइश कर रहे हैं इसी गीत के लिए, नाला सोपारा मुंबई से मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा, माहिरा शेख, नुमान शेख, सुलेमान शेख, शेख मोहम्मद कलीम, और ये मैसेज हमें मिला है नेहरू चौक पैठर से सुरेश जाधव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल जाधव, सिया जाधव, भवानी नगर पैठर से ये फरमाइश है आरती, अरुण ढोंगड़े और हाउस साहब ढोंगड़े की। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश की है जिला मुरादाबाद दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून ने।
1: दोस्तों, कभी ज़िंदगी हमें इतने खूबसूरत रंग दिखाती है कि हर मौसम, हर नज़ारा और हर पल एक गीत सा लगने लगता है। प्यार जब दिल में हो तो फूल सिर्फ बागों में नहीं, इंसान की मुस्कान में भी खिलने लगते हैं, और इसी रंगीन एहसास के साथ हम आपको सुनवा रहे हैं ये सुंदर सा नगमा, रंग रंग के फूल खिले हैं, आइए सुनते हैं।

0: और श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म खुद्दार का ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। शब्द रचना है राहत इंदौरी की और संगीत है अनु मलिक का। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे ये सभी श्रोता रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से, विजय महोबिया, संजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सपना, शिवी, सलोनी, राजू चराटे और पेंटर बाबू। लदावली मुरादाबाद से फरमाइश कर रहे हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना। बागपत से संजय ढींगिया, नमन, आपार ढींगिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। तुलाजा भवानी मातावाड़, खांडवा से अनिल विंचुंकर और मंगला शोभित विंचुंकर। उदयनगर से मोहित रतन पारखी, स्वीटी स्वाति मिस्टी और मनस्वी रतन पारखी। जत्तुका किशनपुर से फरमाइश की है आलम दिलकर, शवान अनाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, आलम शेख और चांदनी नाशनी। और इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश की है पाकुड़ झारखंड से श्वेता भगत, कीशु, ताशु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, मुन्ना भगत और कुटी भगत ने। उदयपुर राजस्थान से फरमाइश की है रमेश नचानी, विनीत नचानी, मिथिला नचानी और भारती नचानी ने।
1: जसपुर उत्तराखंड से हमारे पर फरमाइश कीजिए रियासत हुसैन सिद्दीकी ने, नाजमा बेगम, रियाज, शमरीन, मोहम्मद रिहान और माहिर नूरा ने। साथ ही में हमारे धर्मदास नजीबाबाद से हमारे पास ख्वाहिश आई है रूपा वर्मा, मंजू, तनु, प्रभा, स्वाति, विशाल और वैष्णवी की। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये।

0: और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का गीत तुम्हारे कार्यक्रम संपन्न करने की श्वेता को दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहें हमारे साथी पारुल जी के साथ और सुनते रहें कार्यक्रम आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र।
1: तो दोस्तों हमारे सारे कार्यक्रम इसी प्रकार प्यार के साथ सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम कहेंगे खटखटाते रहिए दरवाज़ा एक दूसरे के दिलों का, खटखटाते रहिए दरवाज़ा एक दूसरे के दिलों का, मुलाकातें ना हो ना सही, आहटें तो आती ही रहनी चाहिए। तो हम आपसे विदा लेते हैं इस कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: जब ये खिला रूप सुनहरा, सौ चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा।
1: अभी आप सुन रहे थे पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, आप सबका हार्दिक स्वागत है मनोरंजन से भरपूर इस कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म दिल से लिया गया ये गीत। युगल आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की। संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने और गीत लिखा था समीर ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म चांदनी से। युगल आवाजें हैं लता मंगेशकर और बाबला मेहता की। संगीत दिया है शिव हरि ने और गीत को बोल दिए हैं आनंद बख्शी ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म ये दिल, आशिकाना से लिया गया ये सुंदर सा नगमा। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और अलका याग्निक। संगीत बद्ध किया है नदीम श्रवण ने और गीत को बोल दिए हैं समीर ने।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं गीत संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये पेशकश फिल्म तेरे नाम से। युगल गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने और गीत को बोल दिए हैं समीर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम पेशकश हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण की शानदार आवाज में फिल्म डर से। संगीतबद्ध किया है शिव हरि ने और गीत लिखा है आनंद पक्षी ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रूबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIETNCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधेका जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
2: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
3: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
2: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुईं, जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
3: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।
2: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
3: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
2: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। गिजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
2: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
1: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ सामने।
2: जी
1: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
3: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
4: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
5: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा, समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
3: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
4: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
3: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
4: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
3: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
4: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
0: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
4: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
3: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
6: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
4: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी नमस्कार।
7: नमस्कार।
4: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
7: जी,
4: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
7: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
4: जी,
7: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
4: जी,
7: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
4: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
7: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
4: युगल और सहभागिता पद्धति
7: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
4: जी,
7: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
4: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
7: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
4: हाँ हाँ, बताइए।
7: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
4: प्रश्नोत्तरी पद्धति
7: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
4: अच्छा।
7: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
4: जी,
7: वो बहुत ही शानदार है।
4: अच्छा
7: जी।
4: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
3: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
4: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
3: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
4: गिजू भाई के अनुसार
6: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
4: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
3: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
9: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की।

पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे आज रात्रि 10:30 पर। श्री शोभित शर्मा द्वारा निर्देशित नाटक परहेज आप सुनेंगे आज रात्रि 10:00। इस नाटक की लेखिका हैं श्रीमती सुधा शर्मा। कंट्री वाइड इनसाइट्स कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात्रि 9:30 पर। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

आज शाम 7:32 पर सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे सरफराज साबरी और साथियों की गायी कव्वालियां। आज शाम 6:45 पर विविधा के अंतर्गत आप सुनेंगे विवेक गुप्ता की वार्ता, जिसका विषय होगा आपातकाल के दौरान हिंदी साहित्यकारों की भूमिका। शाम 6:55 पर समय रहेगा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम छाया गीत का।

शाम 6:05 पर किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज आप सुनेंगे मासिक नाटक श्रृंखला के अंतर्गत नाटक काला साया। इस नाटक के निर्देशक हैं अंकित सैनी, प्रस्तुतकर्ता हैं शोभित शर्मा, आलेख है सुवेंद्र सिंह का और वाचन स्वर है आलोक कुमार का। साथ ही आप सुनेंगे चर्चा, जिसका विषय होगा गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाने का लाभ।

युवा दोस्तों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:15 पर। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, लव स्टोरी और गुप्तगू बस यूं ही। आज शाम 4 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। दोपहर 2:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम एक ही संगीतकार का। आज के संगीतकार हैं राहुल देव वर्मन।

आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्मी संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। रात्रि 8:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। आज दोपहर 1:45 पर लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे भजन दास के गाए जौनसारी लोकगीत।

1:15 पर महिला जगत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर निकिता सिंह से बीना कोटनाला की बातचीत, जिसका विषय रहेगा महिलाओं में एनीमिया की समस्या, कारण, लक्षण और निदान। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मिड डे मेलोडी, और अब से बस कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। सैनिक भाइयों आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप सबके सम्मान में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से न निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबूए वफा आएगी। ये सर हर बार झुकाए हर बार झुकेगा उनकी शहादत में, जो शहीद हुए हैं मेरे वतन की हिफाजत में।

सैनिक भाइयों, आइए अब सुनते हैं फिल्म उपकार से लिया गया ये सुंदर सा गीत। युगल आवाजें हैं महेंद्र कपूर और साथियों की, गीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी और संगीत से सवारा है गुलशन बावरा ने।

सैनिक भाइयों, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं गीत संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आइए अब सुनते हैं फिल्म नया दौर से लिया गया ये गीत, मोहम्मद रफ़ी और बलबीर की जोशीली आवाज़ों में। संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने और गीत को बोल दिए हैं साहिर लुधियानवी ने।

मुझे पूरी उम्मीद है सैनिक भाइयों, आपको बहुत आनंद आ रहा होगा हमारा ये कार्यक्रम सुनकर। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम पेशकश फिल्म क्रांति से। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत को बोल दिए हैं संतोष आनंद ने।

इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। शौर्य और साहस का तू चंदन है, शौर्य और साहस का तू चंदन है, हे मातृभूमि के वीर तुम्हारा वंदन है। जय हिंद सैनिक भाइयों।

12:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। श्रोता दोस्तों, गीत संगीत के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश फिल्म आशिकी से। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू, संगीत बद्ध किया है नदीम श्रवण ने और गीतकार हैं समीर

0: श्रोताओं आइए सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं गीत संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं हम फिल्म एक दूजे से लिया गया ये गीत। सुरों को सवारा है लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम ने, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत फिल्म साथिया से। आवाज है सोनू निगम की, संगीत से सवारा है ए आर रहमान ने और गीत को बोल दिए हैं गुलजार ने।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं गीत संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म पद्मावत से। आवाज है नीति मोहन की, संगीत से सवारा है संजय लीला भंसाली ने और गीत लिखा है सिद्धार्थ गरिमा ने।

श्रोता दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की, संगीत से सवारा है नदीम श्रवण ने और गीत लिखा है फैज अनवर ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा हूँ।

0: की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on the 25th of June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to excesses in the emergency. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah today paid homage to all those who stood firm in defence of democratic values during the emergency. In a social media post, Prime Minister Modi said the emergency was a direct assault on the Constitution.

0: Mujer. इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। भारतीय जनता पार्टी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है। मुल्क भर में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद आईन और जमहूरी इकदार के तहफ़ की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इमरजेंसी के 51वीं बरसी के मौके पर संविधान हत्या दिवस के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा,
1: एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का वह अभियान जिसमें जनता ही सब कुछ है, योजना का लाभ, उसका अंतिम उनका निष्कर्ष क्या है, वो अंतिम पायदान पर बैठे हुए जनता जनार्दन के व्यक्ति को इस योजना के साथ जोड़ना, परिणाम 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक नए मध्यम वर्ग के रूप में उभर करके अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देते हुए दिखाई देते हैं।
0: शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राममोहन रायडू ने आज वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे से पहली EZ कनेक्ट परवाज का इफ्तिताह किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक फ्लाइट भारत के कोने कोने को दुनिया से बगैर किसी रुकावट के जोड़ने के मकसद से शुरू की गई है। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत मुसाफिर अपनी आखिरी बैनुल अक्वामी मंजिल के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरी कर सकते हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भारत में किस शहर में रहते हैं, आप अपने बैनुल अक्वामी सफर का आगाज अपने शहर से ही कर सकते हैं।
2: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को ये हब एंड स्पोक मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। हवाई यात्रा या एयरपोर्ट आने से आपको पता है किस तरह से वो शहर को एक ताकत मिलती है, वो छोटा शहर नहीं रहता उसके बाद।
0: LDA ने लखनऊ के अलीगंज आतशजदगी मामले की महकमा जाती जांच करके कसूरवारों की शनाख्त कर ली है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के नायब सदर प्रथमेश कुमार ने बताया कि जिस इमारत में आग लगी थी उसका नक्शा 2014 में मंजूर किया गया था। इसके बाद 2016 में LDA ने मेयार पर पूरा ना उतरने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। महकमा जाती इंक्वायरी में 19 इंजीनियर्स और 6 PCS सतह के अफसरान की जानिब से गफलत पाई गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। आग में जख्मी होने वाले 7 अफराद को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से इलाज के बाद फारिग कर दिया गया। दरियासना फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम रियासत भर में कोचिंग इदारों की मुसलसल जांच कर रही है। गौतम बुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि मुआयने के दौरान 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया है। अयोध्या में CFO महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अयोध्या इंतजामिया ने कोचिंग इंस्टीट्यूट का मुआयना करने के लिए 2 टीमें तश्कील दी हैं, जो न सिर्फ फायर सेफ्टी की जांच कर रही हैं बल्कि लोगों में बेदारी भी पैदा कर रही हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वो धनघटा तहसील के बांसवारी में वाक़े श्री बैजूनाथ धाम में 475 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 139 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद करेंगे। इसके साथ ही वज़ीर आला प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कीमों के फायजीन को सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। रियासती हुकूमत ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को रजामंदी दे दी है। रियासती हुकूमत में वजीर ममलकत कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS को कॉरिडोर मगरबी उत्तर प्रदेश की तरक्की को नई सिमत दिलाने वाला दूरंदेश कदम साबित होगा। महकमा मौसमियात ने कल से रियासत के मशरकी और मगरबी हिस्सों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। महकमे ने 28 जून तक मशरकी उत्तर प्रदेश में गर्मी की लहरों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक आज भी रियासत भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान है। भारत में ताजिकिस्तान के सफीर बोबोल काली नजदान ने कल रामपुर में रजा लाइब्रेरी और म्यूजियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वहां महफूज शुदा नादिर नुस्खे हिंदुस्तान और ताजिकिस्तान के मुश्तरका सकाफती विरसे को समझने के लिए बहुत अहम हैं। रजा लाइब्रेरी के डायरेक्टर पुष्कर ने कहा कि ताजिकिस्तान और भारत के दरमियान सकाफती और तालीमी तआवुन को फरोग देने के लिए जल्द ही एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

0: नमस्कार, स्वागत सभी श्रोता बहनों का कार्यक्रम महिला जगत में प्रियंका त्यागी के साथ। ये कार्यक्रम है हमारी बहनों का, उनके साथ का, क्योंकि एक महिला जो घर परिवार की धुरी भी है और समाज की शक्ति भी, जो हर रिश्ते को पिरोती है, उन्हें संभालती है और साथ ही अपने सपनों को नया आसमान भी देती है। इन्हीं सारे सपनों आकांक्षाओं को संजोए हुए हमारा कार्यक्रम है खास आप सभी के लिए महिला जगत। और बहनों, आज का महिला जगत कार्यक्रम होने वाला है खास, क्योंकि आज स्वास्थ्य उपयोगी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे हमारे आज के क्रम स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज के अंतर्गत। और वैसे भी बहनों, एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की नींव महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, क्योंकि जब महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होती हैं, तो वे अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सकती हैं, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। लेकिन बहनों, कई बार सबकी देखभाल करने में महिलाएं अक्सर अपनी हेल्थ को नजरअंदाज कर देती हैं। काम करते करते थकान होना, कमजोरी महसूस होना, बहुत हद तक ये स्वास्थ्य समस्या आम तौर पर महिलाओं को होती ही है। और रेगुलर चेकअप ना कराने की वजह से पता नहीं चलता कि समस्या आखिर है क्या। बहनों, बहुत सी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है एनीमिया, जिसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है, लेकिन पता नहीं चलता कि हम एनीमिक है। बहनों, बात करें एनीमिया की, तो विश्व स्तर पर होने वाली एनीमिया की समस्या को एक आम प्रॉब्लम समझा जाता है, क्योंकि शुरुआत में एनीमिया के दुष्प्रभावों को हम समझ नहीं पाते, लेकिन लंबे समय तक एनीमिक रहने पर बहुत सी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। बहनों, अगर स्वास्थ्य समस्या है तो निदान के लिए हमारे पास है स्वास्थ्य चिकित्सक। तो बहनों, आज हमारे क्रम स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं भेंट वार्ता, जिसका विषय है महिलाओं में एनीमिया की समस्या, कारण, लक्षण व निदान। है चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निकिता सिंह और इनसे बातचीत कर रही है हमारी साथी बीना कोटनाला।
1: स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज के अंतर्गत आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निकिता सिंह, मेडिकल ऑफिसर नजीबाबाद, जो हमें महिलाओं में एनीमिया की समस्या, कारण, लक्षण और निदान विषय में जानकारी देंगी। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज में।
2: थैंक यू बीना जी।
1: डॉक्टर साहिबा, हम आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि एनीमिया क्या है और कैसे पता चलता है कि किसी महिला को एनीमिया है या वो महिला एनीमिक हो चुकी है।
2: तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि एनीमिया क्या है। एनीमिया को अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन बोली जाए तो एनीमिया का डेफिनेशन है कि डिक्रीज इन लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन और आरबीसी कंसंट्रेशन बिलो नॉर्मल लेवल। मैं इसे एक बार एक सिंप्लीफाइड वे में बोल देती हूँ, जो नॉर्मल लोगों के बीच बोला जाता है कि हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया है। अब हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो कितने से कम हो गया है, हम सिंप्लीफाई ऐसे तो नहीं बोल सकते कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है। तो जैसे जैसे हम अगर जेंडर वाइज जाए तो हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन है, जो हम नॉर्मल वैल्यू लेते हैं, ये मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है और इन्फेंट्स के लिए अलग है।
1: मैम, तो ये जानना चाहेंगे हम आपसे कि आपने कहा कि हीमोग्लोबिन का जो मात्रा है वो कम हो जाती है, यानी कि खून की कमी।
2: हाँ,
1: है ना। और महिलाओं और पुरुषों में भी अलग अलग है इसका स्तर।
2: जी बिल्कुल।
1: तो महिलाओं में क्या है?
2: महिलाओं में अगर हम नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट महिला को लें तो उनमें अगर 12 ग्राम से कम खून की मात्रा पाई जाती है तो उसे हम एनीमिक मानते हैं। अब मैं एनीमिया की अगर हम एक बात चल रही है तो छोटी सी और बात कहनी चाहूंगी कि एनीमिया भी माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है और सीवियर हो सकता है।
1: तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या है ये सब जो आप बता रही?
2: देखिए, एक हीमोग्लोबिन अगर आपके पास आता है कि 11 ग्राम है या 10 ग्राम है, तो इसके लिए हम तुरंत ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बहुत हैवी मेडिकेशन चालू कर दे या 11.5 से आ गई हमारे पास महिला एनीमिक है, पर जरूरी नहीं कि हम उसे मेडिसिन से ही कवर करें। काफी सारी चीजें हैं जो आप घर पर भी कवर कर सकते हैं। हर चीज को ट्रीट करने की शुरुआत जरूरी नहीं कि दवाई से ही की जाए। अगर आप घर पे अपना जो रूटीन कह सकते हैं, आप खाना है, पोषक तत्व है, अगर वो आप सही तरीके से अपने खाने में शामिल करेंगे तो हो सकता है आप एनीमिया के क्राइटेरिया में ना आए।
1: तो एक सवाल

0: अनार नहीं बोल रही हूँ, और भी जो फल हैं जैसे कि पपीता जो रहता है, ऑरेंज, कीवी, इनमें जो है विटामिन B12, जो एक तरीके का अनीमिया कराता है, क्योंकि अनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से नहीं
1: हाँ,
0: होती।
1: ज्यादातर सब लोग यही जानते हैं कि आयरन की कमी के कारण ही एनीमिया होता है।
0: हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मल लोगों में यही जाना जाता है कि आपको एनीमिया है तो आपको बस आयरन की कमी है, पर ऐसा नहीं है। जो एनीमिया है वो काफी तरीके का हो सकता है, उसमें से एक है कि आयरन की कमी। अब हम इस टॉपिक पे आ ही गए तो दूसरे तरीके का एनीमिया मैं थोड़ा सा संक्षिप्त तो मैं बताना चाहूंगी कि आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई, फॉलेट की डेफिशिएंसी हो गई, ये है। इसके बाद आपने एक बहुत कॉमन चीज सुनी होगी कि हमारे बच्चों के पेट में कीड़े हैं, बच्चे बार बार पेट में दर्द की शिकायत करते हैं। अगर किसी भी बच्चे के पेट में लंबे समय से कीड़े हैं तो उन्हें एनीमिया हो सकता।
1: तो मतलब एज ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है इसका,
0: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: किसी भी आयु वर्ग के लोगों को हो सकता है
0: हाँ,
1: ये।
0: ये बिल्कुल किसी भी आयु वर्ग के लोगों को हो सकता है, किसी भी जेंडर को हो सकता है। हालांकि ये महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है बिल्कुल, पर ऐसा नहीं है कि ये पुरुषों में नहीं मिलता है। एनीमिया पुरुषों में भी हो सकता है।
1: तो कारण जैसे आपने बताया आयरन की कमी,
0: हाँ
1: B12 की कमी आप बता रही
0: हाँ
1: हैं, इसके अलावा और कोई कारण भी होते हैं जो महिलाओं में एनीमिया की शिकायत ज्यादा देखने को मिलती है?
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब काफी महिलाओं में जो एनीमिया प्राइमरी डिसीज नहीं होती है, प्राइमरी यानी सबसे पहले एनीमिया हुआ, ये नहीं, उनके हो सकता है शरीर में कोई बीमारी पहले से ही हो जो एनीमिया करा रही हो, इस तरीके की बीमारियां होती है। दूसरी बात होता है कि कई लोगों को किडनी की लंबे समय की डिसीज है, क्रॉनिक डिसीज ऑफ किडनी, ये भी एनीमिया कराती है, तो ये और चीजें हो सकती हैं।
1: अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो क्या लक्षण सबसे शुरुआती दौर में देखने को मिलते हैं और क्या जोखिम आगे बढ़कर इस बीमारी को लेकर हो सकता है?
0: सबसे पहले हम लक्षणों की बात करें तो जो सब लोग जानते हैं उससे शुरुआत करते हैं कि थकान लगना, चक्कर आना, मुझसे काम नहीं होता, मुझे थोड़ी थोड़ी दूर चलकर थकान लग जाती है, मुझे बैठना पड़ जाता है, ये हम सभी जानते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बच्चे बार बार बोलते हैं कि मुझे बर्फ खाने की इच्छा हो रही है।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: ठंडा खाने का।
0: ठंडा खाना, जो बर्फ रहती है, बिल्कुल बर्फ चबाने वाली जो रहती है, बार बार कई बच्चे जिद करते हैं कि मुझे तो बर्फ चबानी है, ये हुआ। मिट्टी खाना, ये हुई। उसके बाद हमारे जो नाखून है, अगर हम अपने नाखून का शेप देखेंगे तो वो एक कर्व शेप में है, पर अगर आपको एनीमिया है तो वो फ्लैट हो सकते हैं, वो स्पून शेप्ड हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम अपने चेहरे पे आए तो एंगल ऑफ माउथ होता है, आपने सुना होगा होंठ के साइड में थोड़ा थोड़ा फटने लगा है,
1: हाँ
0: और ये
1: बिल्कुल।
0: काफी लंबे समय से चल रहा है, हमने काफी दवाई लगा ली, वो ठीक नहीं हो रहा, हो सकता है वो एनीमिया के कारण हो, ये हुआ। फिर जो मैंने आपको एक पहले भी बताया था कि बच्चों में पेट के कीड़े होते हैं, लंबे समय से पेट दर्द की अगर शिकायत कर रहे हैं और आपने पेट के कीड़ों की दवाई नहीं दी है तो हो सकता है कि वो बच्चा भी एनीमिक हो। बच्चे कई बार सोने से पहले हाथों पैरों में दर्द की शिकायत करते हैं, पूरे दिन खेलने नहीं जाना चाहते, थोड़ा कमजोरी महसूस करते हैं, तो उनमें भी एनीमिया हो सकता है।
1: तो मैडम, इसकी ना जांच जो होती है वो किस तरीके की होती है, कैसे पता लगता है कि एनीमिया हो चुका है?
0: बिल्कुल बेसिक हम अगर करवाएं तो हीमोग्लोबिन करवाते हैं, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन से आपको ये पता चल जाता है कि आपको एनीमिया है। पर अगर हमको पता करना है कि आपको किस तरीके का एनीमिया है तो हम लोग एक CBC जांच करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, उससे हमें ये पता चल सकता है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, या फिर विटामिन B12 की कमी से है, या फिर किसी और कमी से है। पर ये आपके डॉक्टर पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सी जांच करवाना चाहेगा और आपको किस तरीके का एनीमिया है, ये पूरे का पूरा डायग्नोसिस डॉक्टर का रहेगा।
1: बिल्कुल। और एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे मैम, कि गर्भावस्था के दौरान अक्सर महिलाओं में खून की कमी देखने को मिलती है, तो क्या ये आगे किसी जोखिम को जन्म तो नहीं देता?
0: अगर गर्भावस्था में एनीमिया है, किसी को खून की कमी है, तो इससे क्या होता है कि जो डिलीवरी के समय है, डिलीवरी के समय खून जाने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नॉर्मल जो खून जाता है उससे कई गुना ज्यादा जा सकता है। बच्चेदानी जो जिस समय में सुकड़ती है और सुकड़ के खून बंद होता है जाना, वो समय बढ़ सकता है। इसे हम पोस्टपार्टम हैमरेज कहते हैं साइंटिफिक टर्म में। वैसे आप ये सुन सकते हैं कि डिलीवरी के समय खून ज्यादा गया है, जो बच्चे की बढ़ने की क्षमता है, जो नॉर्मल ग्रोथ रहता है 9 मंथ में बेबीज का, वो अफेक्ट हो सकता है। अगर मदर में ही खून कम है तो ऑक्सीजन डिलीवरी जो बच्चे को है वो कम हो जाती है।
1: तो इसके लिए वही है कि खाना पीना अच्छा रखें, मेन।
0: बिल्कुल, खाना पीना अच्छा रखें, और जो गवर्नमेंट जो है हमारी

0: वो फ्री आयरन और कैल्शियम देती हैं सारे प्रेग्नेंट फीमेल्स। तो ये जो है प्रेगनेंसी जब चालू होती है 9 महीने तक फ्री आपको आयरन और फॉलिक एसिड प्लस कैल्शियम दिया जाता है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं डिलीवरी तक तो खाती हैं आयरन और फॉलिक एसिड, पर उसके बाद वो बंद कर देती हैं। और उनके बाद एक बहुत कॉमन कंप्लेन आ जाती है कि मैडम मेरा बच्चा तो दूध पी रहा है, इस वजह से मेरे अंदर थोड़ी सी कमी आ गई है। अगर आप वो आयरन और फॉलिक एसिड बच्चा डिलीवर होने के 6 महीने बाद तक खाएं तो उस वजह से आपका शरीर और अच्छा रहेगा।
1: तो ऐसा कुछ ना सोचकर आप जो है वो गोलियां 6 महीने बाद तक भी कंटिन्यू कर
0: बिल्कुल,
1: सकती
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: बिल्कुल।
1: मैम आपसे आगे हम ये भी जानना चाहेंगे कि अक्सर जो एनीमिया है उसको गंभीर रोग माना ही नहीं जाता है ना, हम लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं। ठीक है, खून की कमी है, हमें थकान लग रही है, तो महिलाओं में तो होती है, अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि महिलाओं में खून की कमी होती ही है, लेकिन क्या ये गंभीर रोगों की तरफ ले जा सकता है?
0: देखिए अगर माइल्ड जो एनीमिया है, मैंने आपको जैसे ही बताया था कि ठीक है 12 से कम है पर 10 से ज्यादा है, तो ये आपको ऐसा कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं कराता है। पर जैसे जैसे हम डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन की तरफ बढ़ते रहते हैं, जैसे 5 हुए 6 हुए 7 हुआ, तो इस वजह से क्या है, हमारी हीमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन कैरी करना शरीर में, ऑक्सीजन अलग अलग अंगों तक पहुंचाना। तो हमारा हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगा शरीर में।
1: तो क्या हम महिलाओं को कितने समय के अंतराल में ये पता लगाना चाहिए कि हीमोग्लोबिन हमारा सही है या नहीं है?
0: वैसे तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी सिम्टम होते हैं तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जरूरी नहीं है वो पहली बार ही आपका जो है टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि हम काफी सारी चीजें ऑब्जर्वेशन से भी पता कर सकते हैं। तो ये प्योरली सिम्टमेटिक रहता है कि आपको अगर ज्यादा थकान लग रही है या कोई भी आपको सिम्टम्स हैं अलग तरीके से, तो बिल्कुल आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए।
1: और जैसे कि मैम आजकल स्कूलों में भी सरकार की तरफ से गोलियां, किशोरियां हैं हमारी बेटियां हैं उनके लिए दी जाती हैं, आयरन की गोलियां दी जाती हैं, तो कई पेरेंट्स तो कहते हैं कि खा लीजिए, कई पेरेंट्स को थोड़ा एतराज होता है कि नहीं ऐसे ही गोलियां नहीं लेनी है, तो क्या ले लेनी चाहिए उन आयरन की गोलियों को जो सरकार द्वारा स्कूलों में बंटवाई जाती हैं?
0: जी बिल्कुल, सरकार द्वारा एनीमिया मुक्त भारत जो एक ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चों को किशोरियों को जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें कवर किया जाता है और आयरन और फॉलिक एसिड की दवाइयां दी जाती है। ये उनको मैं बोलना चाहूंगी कि वो एनीमिक ना हो पहले से, प्रोफाइलेक्सिस कहा जाता है इसे,
1: अच्छा
0: कि बीमारी होने से पहले हम ऐसा क्या करें कि वो बीमारी हो ही ना। तो इसलिए ये आयरन और फॉलिक एसिड की जो दवाइयां हैं ये स्कूलों में खिलाई जाती है, ये सेफ है।
1: और मैडम हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमारी जो महिलाएं हैं वो एनेमिक ना हो, तो डेली रूटीन में आपने बताया कि फल वगैरह हमें लेने चाहिए, कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनमें आयरन की मात्रा अधिक होती है और वो महिलाएं उन्हें ले सकती हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे हरी पत्तीदार सब्जियां हुई, इसमें आयरन की मात्रा अच्छी होती है। जो लोग नॉनवेज खा सकते हैं, मैं बिल्कुल कहूंगी वो खाते रहें, क्योंकि काफी लोग छोड़ देते हैं खाना।
1: तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए स्पेशल ऐसी कौन सी डाइट है कि जो
0: हाँ
1: एनीमिक ना हो वो?
0: देखिए, वो हरी पत्तेदार सब्जियां मैंने पहले भी बताया वो ले सकते हैं। उसके बाद ये जो पम्पकिन सीड्स होते हैं, कीवी हुआ, ऑरेंज हुए, पपाया, बनाना, ये सब विटामिन B12 में रिच हैं, ये ले सकते हैं। डाइट्री जो ये डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ये सारी चीजें हैं। एग हुआ, अगर आप एग खा सकते हैं तो बिल्कुल खाइए।
1: और ग्रामीण और शहरी महिलाओं सभी के लिए देखिए ये सारे जो पौष्टिक आहार हो सभी के लिए सेम ही है,
0: जी बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: आपको भी अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा लगा कि जो हमारे ग्रामीण महिलाएं हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा सजग नहीं रहती हैं?
0: मैंने काफी ऑब्जर्व किया है कि ये बात ग्रामीण महिला और शहरी महिलाओं में थोड़ा सा डिफरेंस आने लगा है। हालांकि अवेयरनेस बढ़ती जा रही है पर फिर भी उतनी नहीं बढ़ी है। वुमेन्स शुड स्टैंड फॉर देमसेल्फ। मुझे लगता है कि आप दूसरों की केयर तभी कर पाओगे जब आप खुद की केयर करोगे। आप बेसिक बिल्कुल अपनी डाइट से स्टार्ट कीजिए। आप जब 10 चीजें दूसरों को खिला रही हैं तो 5 खुद भी खा सकती हैं।
1: बिल्कुल, और परिवार का ध्यान रखना है तो वही अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो
0: बिल्कुल
1: पहले
0: बिल्कुल,
1: रखना
0: आप
1: ही
0: पूरे
1: होगा।
0: परिवार का ध्यान तभी रख सकती हैं जब आप खुद हेल्दी हैं। अगर आप खुद हेल्दी नहीं है तो परिवार कैसे हेल्दी रहेगा।
1: अच्छा, जो हमारी किशोर बेटियां हैं जैसे माहवारी का टाइम उनका जब शुरू होता है तो इससे भी खून की कमी होने की संभावनाएं रहती हैं क्या शरीर में?
0: देखिए नॉर्मली जो है हमारा जो शरीर है वो खून बनाता रहता है, अगर आप डाइट में सारी चीजें सही तरीके से ले रहे हैं। पर अगर आपकी डाइट में चीजों की कमी

0: है तो फिर आपके अंदर खून की कमी आने लग जाती है। इसी वजह से आयरन और फॉलिक एसिड दिया जाता है बच्चों को, इसी वजह से सरकार ने स्कूलों में आयरन और फॉलिक एसिड दिलवाना चालू करा है। आंगनवाड़ियों के द्वारा भी ये जो चीजें आयरन फॉलिक एसिड है, जो छोटे बच्चों में आयरन और फॉलिक एसिड का सिरप है, वो दिया जाता है।
1: तो चाहे वो महावारी का समय हो या मेनोपॉज वाली जो महिलाओं में स्थिति है, इसका एनीमिया से कोई लेना देना है नहीं?
0: नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर ब्लड लॉस होगा तो एनीमिया तो होगा, ये वाला है। पर ये है कि आप उससे कैसे बचाव कर सकते हैं अपने घर पे। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो बिल्कुल वो आपको मेडिकेशन लिखेगा, पर आप घर पे कैसे बच सकते हैं, आप अपनी डाइट बिल्कुल ठीक रखिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो ब्लड बनाती है। अगर आप डाइट में उन्हें सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो देते रहेंगे, सारे मिनरल्स वगैरह बॉडी को मिलते रहेंगे, तो हीमोग्लोबिन सही बना रहे। देखिए मीनोपॉज जो है उसमें ब्लड जो है जाना तब तक बंद हो चुका होता है, तो अगर मीनोपॉज के बाद अगर आपको एनीमिया है तो उसके कारण ब्लड लॉस नहीं होगा, कुछ और होगा, तो आपको वो पता करना पड़ेगा।
1: तो कुल मिला के अगर हम कहें कि हमें एनीमिक नहीं होना है, तो उसके लिए खाने पीने का तो हमें ध्यान रखना ही होगा, और इसके अलावा तो कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ इसके लिए तो कुछ है ऐसा?
0: कि हाँ, एक्सरसाइज एक हेल्दी बॉडी को जन्म देती है, आप कह सकते हो। तो एक्सरसाइज तो हर चीज का एक प्रिवेंशन है ही, आप उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। मैं डायरेक्ट नहीं बोलती हूँ कि एक्सरसाइज से एनीमिया ठीक हो सकता है, पर हाँ आपको एक्सरसाइज करनी
1: कुल
0: चाहिए।
1: मिला के अगर हम ये कहें कि एक्सरसाइज तो हर बीमारी से ही हमें बचा सकती है और हमें रेगुलर अपनी लाइफ में करना ही चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप स्पेसिफिक डिसीज छोड़ दीजिए, एक्सरसाइज इज अ मस्ट।
1: मैम, जैसे कि आपने बताया कि आयरन युक्त भोजन हमें लेना चाहिए, B12 वाला भोजन हमें लेना चाहिए, साथ ही आपने बताया कि हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए, लेकिन इसके साथ हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर इन सब चीज़ों से भी हमारा जो एनीमिया है वो ठीक नहीं होता है या हम एनीमिक होते जा रहे हैं, तो ऐसी स्टेज भी आती है कभी कि हमें ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती हो शरीर में, ऐसा है, तब क्या किया जा सकता है?
0: जी बिल्कुल, ऐसी स्टेज भी आ सकती है कि जब आप सीवियर एनीमिक हो जाए तो आपको ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। पर हाँ, ब्लड हम सबसे लास्ट स्लॉट मानते हैं। सबसे पहले हम, आपने कह दिया कि जैसे डाइट से हमारा जो एनीमिया है वो कंट्रोल नहीं हुआ है, वो ट्रीट नहीं हुआ है, हम आयरन और फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स है उनसे ट्राई करेंगे। उसके बाद इंजेक्टेबल्स रहते हैं, जैसे आयरन सुक्रोज हुआ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चढ़ाया जाता है। उसके बाद और भी आईवी ड्रग्स होती हैं, जैसे FCM हुआ। अगर इनसे भी आपका एनीमिया ट्रीट नहीं हो रहा है तो फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे आते हैं।
1: और चलते चलते मैम, आप हमारी बहनों को कुछ अगर ऐसा कहना चाहें कि हमारी जो बहनें हैं एनेमिक कभी हो ही ना?
0: मैं यही कहूंगी कि आप शुरुआत से अपना ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि आप एक लेवल ऑफ लाइफ पे पहुंचेंगे कि नहीं हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम अपने आप पे ध्यान देना चालू करेंगे, हमारी ये लेवल ऑफ लाइफ या इतनी एज निकल जाएगी फिर हम अपने आप पे ध्यान देंगे। नहीं, आपको शुरुआत से अपनी बॉडी का ध्यान रखना ही है। अपनी डाइट प्रॉपर रखें, एक्सरसाइज अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें जरूर शामिल करें।
1: डॉक्टर साहिबा, आज आप हमारे स्टूडियोज में आई, एनीमिया कारण लक्षण और निदान विषय पर हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपने बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद बीना जी।
2: स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज क्रम के अंतर्गत अभी हम सुन रहे थे भेंट वार्ता, महिलाओं में एनीमिया की समस्या कारण लक्षण व निदान। जानकारी दे रही थी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निकिता सिंह और इनसे बातचीत कर रही थी बीना कोटनाला। और बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि इसे सुनकर हमारी श्रोता बहनें जरूर लाभ उठाएंगी। बहनों, समय समय पर अपनी स्वास्थ्य जांच कराती रहिए और कार्यक्रम सुन रही सभी श्रोता बहनों से कहना चाहेंगे कि अगर महिलाएं स्वस्थ हैं तो पूरा समाज स्वस्थ है, इसलिए बहनों अपना ख्याल रखें। और बहनों, अब कार्यक्रम महिला जगत में वक्त है सुनने का कुछ जरूरी संदेश, तो आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: किसानों हर पल चंदन का एहसास।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, ये किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
1: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमे 250 रूपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: इन संदेशों के बाद फिर से स्वागत है सभी बहनों का कार्यक्रम महिला जगत में। महिलाओं का स्वास्थ्य, सुरक्षित गर्भावस्था और स्वस्थ भावी पीढ़ी को जन्म देने के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। बहनों, अक्सर देखा गया है कि प्रीमैच्योर बेबी यानी समय से पूर्व जन्मे बच्चों में मृत्यु दर की आशंका बहुत रहती है और साथ ही संक्रमण का खतरा भी बहुत होता है। लेकिन कहते हैं कि जो बचाने वाला होता है उसका दर्जा भगवान से कम नहीं होता, और वो होते हैं हमारे डॉक्टर्स। और बात अगर छोटे बच्चों की हो और सामने वाला डॉक्टर कोई मसीहा हो, तो बहनों वो है हमारी आज की आधी आबादी की नायिका। वो कौन है, सुनते हैं हमारे क्रम आधी आबादी में।

0: Dr. Neelam Clare. I'm a neonatologist. I look after newly born babies' health.
1: Dr. Neelam Clare, premature babies की मसीहा कहलाई जाने वाली ये है हमारी आज की आधी आबादी की नायिका. न्यूनोटोलॉजी यानी नवजात शिशु विज्ञान के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है. बहनों, बता दें कि डॉक्टर नीलम क्लेर को समय से पहले जन्म लेने वाले और बहुत ही कम वजन वाले नवजात शिशुओं की देखभाल और वेंटिलेशन के लिए जाना जाता है. डॉक्टर नीलम क्लेर बच्चों के जीवन और उनके विकास के लिए नियोनेटोलॉजिस्ट यानी नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, जिनके प्रयास की वजह से 1 किलो से भी कम वजन वाले प्री टर्म शिशुओं की जीवित बचने की उम्मीद लगभग 90% तक बढ़ी है और नवजातों में संक्रमण फैलने की दर में बहुत तक उनको कम करने में सफलता मिली है. इन्होंने देश में नियोनेटोलॉजी विभाग की शुरुआत की और उसे देश में सबसे बेहतरीन और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले विभागों में से एक बनाया. मेडिकल क्षेत्र में बहुत से विभाग हैं, लेकिन डॉक्टर नीलम क्लेर ने इसे ही क्यों चुना? नवजात शिशुओं को बचाने का विचार उनको कैसे आया, जानते हैं उन्हीं से.
0: जम्मू कश्मीर से हूँ. किश्तवाड़ एक बड़ा हिली एरिया है, वहाँ पे पोस्टेड थी एज ए इंटर्न और घर पे डिलीवरी अटेंड करने के लिए हमारी जो नर्स इंचार्ज थी उसके साथ गई. अभी कि मैं इंटर्न थी बट हमारी जो वहाँ पे स्त्री रोग स्पेशलिस्ट थी वो छुट्टी पे थी. ये यंग सी औरत थी जो प्रसव के बिल्कुल आखिरी पहर पे थी और डिलीवरी हो नहीं पा रही थी. बहुत मुश्किल डिलीवरी थी. आज भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इसी तरह की शायद घर में डिलीवरी होती है. डिलीवरी तो हो गई बहुत मुश्किल से, लेकिन जो बच्चा था दिखने में बहुत स्वस्थ, कोरा चिट्टा, 3 किलो का, लेकिन वो सांस नहीं ले पाया क्योंकि एक लंबा कठिन वाला प्रसव था. बच्चा सांस नहीं ले पाया. मैंने अपनी सारी मेडिकल साइंस लगा के उसे रिवाइव करने की कोशिश की, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दी, चेस्ट कंप्रेशंस की, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाई या वो बच ना पाया. तो आई थिंक वो उसी समय कुछ मेरे मन में ऐसा आया, आने वाले कल में मैं कोशिश करूंगी कि मैं बचा पाऊँ, ऐसे किसी बच्चे को मैं बचा पाऊँ.
1: बहनों, इसके बाद का सफर और डॉक्टर नीलम ने नियोनेटोलॉजी की शुरुआत कैसे की सुनते हैं.
0: मैंने बाल रोग विशेषज्ञ में PGI चंडीगढ़ से मैंने MD किया. उसके बाद मैंने नियोनेटोलॉजी में ट्रेनिंग किया. मैं बाहर गई, हिंदुस्तान से बाहर गई, वापस दिल्ली में आके गंगाराम हॉस्पिटल ज्वाइन किया. और उसमें नियोनेटोलॉजी एक सेपरेट स्पेशलिटी नहीं थी, अलग से एक सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो एक टर्निंग पॉइंट था आज से 30 साल पहले. उसके बाद हमने नवजात शिशु एक अलग से डिपार्टमेंट तैयार किया, छोटे बच्चों के लिए ICU जो थी उसमें सब तरह की सुविधाएं, उन्हें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के लिए, उनकी हार्ट रेट

0: की मॉनिटरिंग के लिए, उन्हें सब तरह की वो सुविधाएं देने के लिए जो कि बाहर के देशों में उन्हें बचाने के लिए, ताकि हम उन्हें बचा।
1: डॉक्टर नीलम ने न्यूमोनिया, दूसरी जेनेटिक बीमारियां, सांस की बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को बेहतर इलाज और नई जिंदगी दी। नेशनल न्यूनोटिकल फोरम में विभिन्न पदों पर रहते हुए डॉक्टर नीलम ने 100 से ज्यादा जिला अस्पतालों में बच्चों के लिए ICU खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहनों, हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, जो एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और उनका स्वास्थ्य सीधा माँ से जुड़ा है। डॉक्टर नीलम क्या कहती है महिलाओं की सेहत और उनकी स्थिति को लेकर, आइए जानते हैं उन्हीं से।
0: मेरा दृढ़ विश्वास है इस बात पे कि किसी भी देश का भविष्य जो है वो वहाँ की औरतों और बच्चों पे निर्भर करता है। जिस देश में औरतें सेहतमंद नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, सशक्त नहीं है, एम्पावर्ड नहीं है, बच्चे कमजोर हैं, तो उस देश का भविष्य भी जो है वो उज्जवल नहीं हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में हम दो तरह की एपिडेमिक्स का सामना कर रहे हैं। एक तरफ तो गांव में बहुत ही कुपोषण वाली अनीमिक, बहुत हाई खून की कमी जो है वो बहुत हाई है उस तरह की महिलाएं हैं, और एक तरफ शहरों में सडनली लोग थोड़े सेडेंटरी हो गए हैं, खाना पीना अच्छा हो गया है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, हम लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन काम का स्ट्रेस, शहरों के जीवन का स्ट्रेस, टोबैको का यूज, अल्कोहल का यूज एक दूसरे स्तर पे एक एपिडेमिक पैदा कर रहा है, डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, और उससे रिलेटेड चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, और तीसरे स्तर पे जो एक नई एपिडेमिक शुरू हो रही है वो हमारी इंक्रीजिंग पोल्यूशन है। जो हमारा वातावरण है जो वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है।
1: तो सुना बहनों आपने, डॉक्टर नीलम क्लेर विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के साथ मिलकर दक्षिण पूर्व एशिया में जन्मजात दोषों को रोकने के लिए भी काम कर चुकी हैं। चिकित्सा और नवजात शिशु विज्ञान के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा उन्हें वर्ष 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। आने वाले समय में डॉक्टर नीलम की क्या योजनाएं हैं और उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, जानते हैं उन्हीं से।
0: छोटे बच्चे जो हैं उन्हें बचाना एक काम होता है, लेकिन उन्हें इस तरह से बचाना कि उनका कल का भविष्य उज्जवल हो और उन्हें क्वालिटी लाइफ मिले, ये एक उससे भी बड़ा जो उद्देश्य है वो मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी है, और उस पे ज्यादा ध्यान देने की। एक तो कि उन्हें इस तरह से बचाया जाए कि उनका कल का लाइफ जो है बहुत उज्जवल, सो एक तो ये मेरा उद्देश्य है। दूसरा, हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है, बहुत सारी मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स होती जा रही है, तो एक हेल्थ केयर में क्वालिटी देना कि जो भी किया जाए वो एविडेंस बेस्ड हो, जिससे नुकसान ना हो।
1: बहनों, नवजात बच्चों के जन्म और उनकी सेहत का ध्यान रखने वाली आधी आबादी की नायिका डॉक्टर नीलम क्लेर पर गर्व है, साथ ही बहनों ये एक प्रेरणा भी है हम सभी के लिए। बहनों, क्रम आधी आबादी में अभी हमने जाना कि डॉक्टर नीलम क्लेर ने किस प्रकार से नवजातों की जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभाई, और हम अपनी बहनों से यही कहना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और सुनते रहिए कार्यक्रम महिला जगत। और बहनों, इसी कामना के साथ कि हमारी सभी बहनें स्वस्थ रहे, हंसती मुस्कुराती रहे, आज का महिला जगत कार्यक्रम सम्पन्न करने की प्रियंका त्यागी को दे अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक धारा। इस कार्यक्रम में के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं भजन दास के गाए जौनसारी लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला लोकगीत।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं भजन दास के गाए जौनसारी लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत।

0: एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्रीमान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित CCTV फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति

0: ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश

0: किया, दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं गीत संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक ही संगीतकार को सुनने वाले मेरे सभी श्रोता दोस्तों को आपकी साथी पारुल गोयल का प्यार भरा नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। दोस्तों, भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो समय की सीमाओं से दूर जाकर अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है फिल्मी संगीत की दुनिया का आधार स्तंभ राहुल देव वर्मन का, जिन्हें प्यार से पूरी दुनिया पंचम दा के नाम से पुकारती है। पंचम दा केवल एक संगीतकार ही नहीं वरन संगीत के एक ऐसे जादूगर थे जिन्होंने सुरों को एक नई उड़ान दी, धुनों को एक नई पहचान दी और भारतीय फिल्म संगीत को आधुनिकता का एक नया स्वरूप प्रदान किया। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं उनकी संगीत में जादूगरी का एक नायाब नमूना, फिल्म 1942 ए लव स्टोरी का एक खूबसूरत सा नगमा कुमार सानू की शानदार आवाज में। और आप सबको ये बता दें कि बहुत हर्ष की बात है, इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये प्यारा सा नगमा।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं फिल्मी दुनिया के महान संगीतकार राहुल देव बर्मन यानी आरडी बर्मन यानी पंचम दाखी। राहुल देव बर्मन का जन्म 27 जून सन 1939 को कोलकाता में हुआ था। वे प्रसिद्ध संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मीरा देव बर्मन के सुपुत्र थे। संगीत उन्हें विरासत में मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत से स्वयं की एक अलग पहचान बनाई थी। कहा जाता है कि जब वे बचपन में राहुल देव बर्मन रोते थे तो उनके रोने की ध्वनि पंचम स्वर जैसी लगती थी, इसीलिए अभिनेता अशोक कुमार ने उन्हें पंचम नाम दिया और आगे चलकर यही नाम उनकी पहचान बन गया। सन 1961 में बनी फिल्म छोटे नवाब से उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें वास्तविक पहचान मिली सन 1966 में बनी फिल्म तीसरी मंजिल से। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं उनकी लोकप्रिय सुपर डुपर हिट फिल्म तीसरी मंजिल का ये प्यारा सा शरारत भरा नगमा मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की सुंदर आवाज़ों में।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
4: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
5: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
4: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
5: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
4: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
5: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं गीत संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीत का। तो श्रोता दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम एक ही संगीतकार में। और आज के हमारे संगीतकार हैं संगीत की दुनिया के महान कलाकार राहुल देव वर्मन। तीसरी मंजिल फिल्म की महान सफलता के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने भारतीय संगीत में पश्चिमी वाद्य यंत्रों, नए प्रयोगों, अनोखी ध्वनियों का एक ऐसा अद्भुत समावेश किया जिसने संगीत की दुनिया में तहलका मचा दिया और एक नई क्रांति ला दी। वे कांच की बोतलों, कंघियों, सांसों की आवाज़ों और रोज़मर्रा के काम आने वाली वस्तुओं से निकलने वाली ध्वनियों से अद्भुत संगीत की रचना कर देते थे। आइए सुनते हैं उनकी इसी कला का एक अनोखा उदाहरण जो आज भी श्रोताओं के दिलों पर राज करता है और उनके दिलों में गीत बनकर धड़कता है। फिल्म यादों की बारात से लिया गया ये गीत, जिसे मधुर सुर दिए हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। तो आइए, ये गीत कौन सा है सुनिए।

श्रोताओं, आइए आपको एक बार फिर से ले चलते पंचमदा यानी आरडी बर्मन के जीवन के सुहाने सफर पर। आरडी बर्मन हमारी फिल्मी दुनिया के एक ऐसे महारथी थे जिनके संगीत में भारतीय और पाश्चात्य संगीत का सुंदर संगम देखने को मिलता है। उनके रोमांटिक, दर्द भरे, मस्ती भरे और सूफियाना अंदाज के भरे हर तरह के गीतों में युवा पीढ़ी की धड़कनों को समझने की अद्भुत क्षमता थी। उनकी बनाई प्रत्येक धुन में नई ताजगी और एक अलग पहचान दिखाई देती थी और उनके संगीत की इसी खासियत ने उन्हें आज भी श्रोताओं की यादों में अमरता प्रदान की है। तीसरी मंजिल, पड़ोसन, कटी पतंग, अमर प्रेम, हरे रामा हरे कृष्णा, यादों की बारात, शोले, हम किसी से कम नहीं, गोलमाल, सत्य पे सत्ता जैसी असंख्य फिल्मों में शानदार संगीत देकर पंचम दा ने संगीतमयी दुनिया के धरातल पर भारतीय संगीत के शौर्य का परचम लहरा दिया था। तो आइए सुनते हैं उनके शानदार संगीत का प्रतीक ये गीत फिल्म शोले से और युगल आवाजें किशोर कुमार मन्ना डे की।

तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं, आज के हमारे संगीतकार हैं फिल्मी दुनिया के दिग्गज संगीतकार आरडी बर्मन। उन्होंने लगभग 300 से भी अधिक फिल्मों में संगीत दिया और भारतीय फिल्म संगीत को एक नई ऊंचाई प्रदान की। बॉलीवुड संगीत में क्रांति लाने वाले पंचम दा को 3 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पंचम दा की धरपत्नी महान गायिका आशा भोसले की मधुर आवाज और पंचम दा के संगीत ने मिलकर भारतीय सिनेमा को एक अनोखी अनमोल धरोहर दी है। सुरों की दुनिया का वह सूरज जिसने हर पीढ़ी को धुनों की स्वर्णिम आभा प्रदान की, 4 जनवरी सन 1994 को हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। लेकिन इस सूरज की आभा और प्रकाश आज भी प्रत्येक दिल की हर धड़कन में जगमगा रहा है। कलाकार के जाने के बाद भी उसकी कला का जीवंत रहना, यही एक सच्चे संगीत साधक के जीवन की सबसे बड़ी कुंजी होती है। दोस्तों, आपका और हमारा आज का फिल्मी सफर बस इतना ही। आपकी साथी पारुल गोयल को अब अनुमति दीजिए आपसे विदा लेते हुए। चलते चलते सुनते आइए गीत के दो लाइनें।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। हमारे इस सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। हमारी दूसरी सभा में शाम 4 बजे आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 4 बजने को हैं। अब हमारी संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स, जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम शुरू हो गया है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स हमेशा की तरह से आज हमारे खास मेहमान एक सोल्जर जिनका नाम है कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। देश के कुछ बेहद टफ और सेंसिटिव रीजन्स में सर्व कर चुके हैं जिसमें कश्मीर घाटी से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स शामिल हैं। इसके अलावा 3 नए सैनिक स्कूल्स खड़े करना आसान काम नहीं होता। और भी कई शानदार अचीवमेंट्स और कीर्तिमान स्थापित करने वाले कर्नल वरुण वाजपेयी VSM हमारे साथ हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के हैं स्पेशल गेस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस शो में। और संदेश टू सोल्जर्स हमारा प्रोग्राम है जो डेडिकेटेड है हमारे सोल्जर्स को, हमारे सैनिकों को। तो आपने तो सैनिक स्कूल एक या दो नहीं, तीन एस्टैब्लिश किए हैं, तो जाहिर है हमारी उस पर बात होगी। लेकिन सर हम शुरुआत करेंगे अपने आज के शो की, और हम आपके बारे में जो हमने थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, ज्यादा हम आपसे ही बातचीत में जानेंगे कि शुरुआत आपकी किस तरह से हुई और आपने जो आर्मी ज्वाइन की इंडियन आर्मी, तो कहां से आपको इंस्पिरेशन मिली या फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से रहा?
1: जी, मैं मूलतः लखनऊ का रहने वाला हूं एंड आई कम फ्रॉम एकेडमिकली ओरिएंटेड फैमिली, जिसमें कि मूलतः ज्यादातर लोग एकेडमिक्स और उससे जुड़े हुए अलाइड एस्पेक्ट्स में उन्होंने काम किया पूरा का पूरा। तो आई एम द एल्डेस्ट अमंग्स 3 सन्स ऑफ माय पेरेंट्स। तो घर में सभी लोगों का बेसिकली एकेडमिक की तरफ रुझान ज्यादा था। तो टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन लाइक फोर्सेस, इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड वन फॉर एवरीबॉडी कि भाई ये कैसे। बट हाँ, मेरा शुरुआत से ही मन था, आई वॉज एनसीसी कैडेट, तो बड़ा मन था कि हम फौज ही ज्वाइन करें। तो इसी से प्रेरणा लेते हुए देन आई क्लियर्ड फॉर, आफ्टर डूइंग माय ग्रेजुएशन क्लियर्ड फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और फिर आईएमए ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में आई गॉट कमीशन्ड इन टू जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री फ्रॉम इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो हमारी रेजिमेंट जो है एक बड़ी यूनिक रेजिमेंट है जिसमें कि सारे के सारे ट्रूप्स जितने भी हैं वो सारे के सारे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही आते हैं। तो वी हैव सब्जेक्ट्स फ्रॉम जम्मू से लेकर वैली तक पूरा का पूरा, प्लस हाईलैंडर्स भी हैं जैसे कि द्रास में कारगिल से लेकर इस साइड उड़ी और पुंछ तक का पूरा पूरा।
0: Okay, मतलब पूरा वो
1: हाँ, तो हमारा ट्रूप्स का जो कॉम्पोजिशन है वो कम्प्लीटली JNK का ही है। Okay. तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज है, यही हमारी ऑपरेशनल एज भी हमको मिलती है। इसी की वजह से हम ऑपरेशनली इतना अच्छा कर भी पाते हैं JNK में।
0: Okay.
1: क्योंकि आप उन लोगों के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं जिनको, जो कि उस टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो इस तरह करते करते फौज में काफी टाइम कटा एंड देन आई वाज गिवन द टास्क टू सेट अप न्यू सैनिक स्कूल्स। तो वहां से एक एकेडमिकली ओरिएंटेड जर्नी भी आगे स्टार्ट हुई,
0: यानी कि जो एकेडमिक आपका जो फैमिली का रहा तो वापस वो
1: वापस घूम फिर के
0: वापस घूम फिर करके आया। लेकिन सर जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई, जो आपने सर्व किया, जो सेंसिटिव एरियाज कहा जाए, बहुत ही टफ, मतलब उनको फ्रंटियर्स कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो वो बहुत ही टफ रहा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा। उसके बाद के तो टास्क बाद में आए,
1: बिल्कुल
0: ऐसा था।
1: बिल्कुल, मिलिट्री के अंदर में इन्फेंट्री इज जनरली द कटिंग एज, जहां पे जिसको इसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं माना जाता है। अच्छा। तो इन्फेंट्री को सर्व भी करना पड़ता है पहाड़ों पे। तो जहां जहां पे यूनिट रही, जहां जहां पे हम लोग डिप्लॉय रहे, वहां वहां पे एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में जो भी योगदान दे पाए हम लोग वो देते। अच्छा। रहे जी। तो डिफिकल्ट, इट इज इंडी डिफिकल्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आप कट ऑफ रहते हैं चीजों से। अच्छा। विंटर जो वैकेटेड पोस्ट होती हैं वहां, जहां से 5-5, 6-6 महीने भी आपको लग जाते हैं दोबारा वापस नीचे उतरने में। तो ऑपरेशनली इट्स अ डिफिकल्ट इन योर।
0: तो उसमें सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो आज भी आपके साथ जुड़ा हो, आपको याद रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको याद आता हो?
1: जी, देयर नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेस। एक बार ऐसा था कि पोस्ट पे काफी टाइम रहने के बाद जब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाती है तो आपकी आंखें और आपका दिमाग अट्यून्ड हो जाता है टू सी, बिकॉज आप ऑपरेशन में भी उसमें जा रहे हैं, एम्बुश में भी उसी बर्फ में जा रहे हैं, एवरीथिंग इज वाइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयरिंग वाइट क्लोथ, योर इग्लू इज वाइट, योर द आइस इन फ्रंट ऑफ यू इज वाइट। तो ग्रीनरी एक बहुत किसी भी इंसान के जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो पोस्ट से नीचे उतर के आने के बाद में नॉर्मल सब्जी खाना, लौकी को देखना, या चलती हुई बकरी और जानवरों को देखना, ये सब चीजें बड़ी अम्यूजिंग से लगने लगती है कुछ टाइम के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम डाउन एंड टेक अ विकेट, टेक अ ब्रेक ऑल्सो फॉर अ वाइल, बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह के दुनिया भर के तमाम इंसिडेंसेस हैं। ऑपरेशनली मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज वो चीज एक थोड़ा सा उसकी अलग सैंक्टिटी होती है। बट हाँ, फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस, बड़ा ही अलग तरीके का।
0: तो आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। और आप बात करेंगे आगे कि किस किस तरीके के फेजेस आए उनकी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए और कब उनको VSM से नवाजा गया। तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर। आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी दुनिया भर में, और आप हमें SMS, आप हमें WhatsApp मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और साथ ही आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं. हमारे आज के मेहमान कर्नल वरुण वाजपेयी VSM से, नंबर है दिल्ली का कोड 011-2342-1085, 2342-1085.

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और आज के हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण बाजपेयी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: सर, हमने बात करी कि किस तरह से आपने शुरुआत करी, और काफी इंटरेस्टिंग आपका जो है वो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने कहा कि कहीं भी कोई फैमिली में भी दूर दूर तक कोई आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये काफी पहला ही चैलेंज रहा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने 3 नए सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करने में बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया
1: जी।
0: बल्कि मिजोरम का सैनिक स्कूल तो आपने सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया
1: जी।
0: क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल करा और उसको कामयाब बनाया
1: जी? मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में एज अ रजिस्ट्रार आई थी, तो वहां पर तकरीबन 1.5 साल रहने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया कि मिजोरम में कैपिटल आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर के पास में एक छोटा सा जिला है, इसका एक छोटा सा हैमलेट है बेसिकली, चिंगचिप करके, वहां पे आपको सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करना है। तो फॉर मी, मेरे लिए बड़ा ही यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा कि इतने सेक्लूडेड से एरिया में जाके, बट हाँ, गवर्नमेंट का विजन था कि भाई राष्ट्रीय भावना और ये अवसर सबको दिए जाए, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी फार फ्लंग क्यों ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ पे 2017 में मैं मिजोरम पहुंचा, और वहां पे चिंगचिप जगह है जो कि सरचिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटा सा एक एरिया है, वहां पे हमने सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश करने का बेड़ा उठाया। और तकरीबन साहब 7 महीने लगे हम लोग को, दिसंबर से लेकर अगले साल मई जून तक का, जिसमें बिल्डिंग भी बनवाई गई।
0: अच्छा।
1: जिन लोगों ने अपना लैंड डोनेट किया था उनको भी गवर्नमेंट ने इनकम पास किया साथ में, और हमने उन सबको जॉब भी दिए वहां पे।
0: अच्छा।
1: तो एक बार एक तो एक तरीके से स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के हमने सबको साथ में लेके काम किया।
0: साथ में लेकर
1: शुरुआत में बड़ी दिक्कतें भी आई, चर्च को एक कुछ अपने अप्रिहेंशन थे, बिकॉज दैट इज अ प्राइमरीली अ क्रिश्चियन बिलीफ स्टेट, तो चर्च

0: से हमको मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी आई, बट बाद में जब उनको लगा कि नहीं यहाँ पे इनका पर्पस तो ये है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को आगे फौज में अवसर बनने का, फौज ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, तो देन इट वॉज अ गुडविल विच वॉज स्टैब्लिश. फिर चर्च ने ही हमारा बड़ा हेल्प भी करी कि बाद में स्कूल का इनॉग्रेशन करने के टाइम पे आप मतलब उन्हीं के बेंचेस उन्हीं के वो टेबल तक आई. बट इट वॉज अ ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस अपने आप में. और सबसे अच्छी बात थी, सबसे बड़ा योगदान शायद चिमचक का ये रहा है कि स्कूल से शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर में गर्ल स्टूडेंट्स को लेने की, जो कि बाद में एनडीए तक था. तो 2018 में हमारा पहला बैच आया था जिसमें लड़कियों को भी हमने शामिल किया था. अच्छा. इस तरीके से अभी सभी सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स भी हैं और एनडीए में भी लड़कियां पास आउट हो रही हैं, आईएमए भी जा रही हैं. अच्छा. ये अपने आप में बड़ा सुखद और बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था.
1: बिल्कुल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और जैसे आपने बताया कि जो चैलेंजेस आपको सामने करना पड़े वो तो अब पहला स्कूल खड़ा करने में, तो क्या आगे जो आपने बाद में किए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या वो चैलेंजेस फिर से वही सब दोबारा से सामना करना पड़ा या आसान हो गया था?
0: नहीं, एक बार चीजों को कर लेने के बाद थोड़ा तो मतलब मनोबल बढ़ जाता है, चीजें आसान भी हो जाती है. अरुणाचल वॉज ओके. झुंझुनू हैड इट्स ओन चैलेंजेस, बिकॉज झुंझुनू क्या है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है देश का जहां पे हर घर में फौजी है बेसिकली. तो अगर हम निकालें कि ऑन एन एवरेज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फौजीज, इस जिले में सबसे ज्यादा फौजीज हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में. तो यहाँ पे बच्चों को उन क्लास छठे में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल अपनी मदर के फोल्ड से निकल के बाहर आते हैं ना, कि घर में तो उनको हाथ से भी खाना खिला दिया जाता है कभी कभी. ऐसे बच्चों को स्कूल में ला के उनको सेटल करना, उनको बताना कि बच्चों कैसे उठना है, कैसे बिस्तर लगाना है, कैसे अपने शूज को पॉलिश करना है, कैसे अपने ड्रेस को लगाना है, कैसे यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑल्सो, कैसे कैसे अपना अपनी दिनचर्या को आगे लेके आना है, पढ़ना कैसे है,
1: पूरा लाइफस्टाइल.
0: तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्कूल को एस्टैब्लिश करने में इस टाइप के ये होता है कि जब आप जाते हैं एज अ फाउंडर प्रिंसिपल तो आपके साथ में आपके कुछ लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग कॉलेज से पूल होके आए होते हैं. फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे भर्तियों के माध्यम से टीचरों को लिया जाता है, कुछ स्टाफ को लिया जाता है, उसके बाद में बच्चे आते हैं. तो इतने कम स्टाफ के साथ में उनका मैस चलाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनका पूरा मेडिसिन सबका इंतजाम भी करवाना, डे टू डे चैलेंजेस आर मतलब एक फाउंडर प्रिंसिपल के तरीके से मेरे पास मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे एंड आई हैड टू वाइंड अप ओनली मतलब जब बच्चे सो जाते थे जाके. तो झुंझुनू वॉज इटसेल्फ अपने आप में अमेजिंग. और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों में इतना जोश था साहब कि झुंझुनू में इन्होंने मतलब उस सैनिक स्कूल को एक ओएसएस में कन्वर्ट कर दिया. इट इज अ ग्रीन कैंपस नाउ, इतना सुंदर है कि अगर आप इंटरनेट से भी देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ देखिए आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे.
1: तो जबकि उसमें बताया जाता है कि झुंझुनू अपने आप में बहुत ही गर्म एक रीजन होता है, बड़ा गर्म इलाका है, तो उसमें इस तरीके से इसको बना पाना, तो ये मतलब आपकी अपनी कोशिश रही, इसमें कितने लोगों ने साथ दिया और जो बच्चे आपने जैसे कहा कि वो तो जाहिर है वो तो सीख रहे हैं आपके साथ, तो क्या वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर रहे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों तो बच्चे तो स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गए थे. हम जो भी कर रहे थे बच्चों को साथ में लेके कर रहे थे. देखिए साहब,
1: तो एक बड़ी टीम हो गई,
0: एक बड़ी टीम हो गई. द एंटायर ऑब्जेक्टिव वाज वेरी सेम कि ये अच्छे इंसान बने पहले, ये अच्छे सोल्जर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अपने आप बनेंगे बाद में.
1: बिल्कुल,
0: टू इनकल्केट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ना, वो सेंस सिखाना, वो इनग्रेन करना उनके अंदर में, दैट वॉज द बिगर एंड द लार्जर एम. एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूं कि इसमें से कई बच्चे अभी आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं. अच्छा. कई लड़कियां बन चुकी हैं जो वहां पे गई थी. तो आई एम श्योर ये एक मूवमेंट है जो देश में बहुत दूरगामी परिणाम देखा आगे आगे.
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो बीज आपने वो बोया वो अब आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन के पेड़ बन रहा है और वो फल फूल रहा है, सब तरफ फैल रहा है.
0: बिल्कुल.
1: तो ये जो सिचुएशन आपने वहां की बताई उसमें उन बच्चों को जैसे आपने कहा कि उनके घरों से उनके माओ की गोद से निकाल करके लाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, पूरा लाइफस्टाइल बदलना, उनको एक एक चीज सिखाना, वो मैनेजमेंट जो था वो आपकी जो टीम थी उसमें कितने लोग थे और किस तरीके से आपने उसको मतलब प्लान किया, मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया?
0: शुरुआती दौर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये दो लोग होते हैं. उसके साथ साथ में 5 टीचर्स लिए आते हैं, 5 टीचर्स और करीब 6-7 का और स्टाफ. तो पूरे एक बड़े से कॉलेज को मैंने 25 एकड़ के आसपास के कैंपस को या 50 एकड़ के कैंपस को शुरुआत में मैनेज करने के लिए ले देके आपके पास में गिनती की यही 12-15 लोग होते हैं
1: बस.
0: यही आपकी बैकबोन होते हैं, यही आपके लेफ्ट राइट आपके आंख कान नाक सब कुछ होते हैं. तो इन्हीं से ही सारा काम करना होता है. तो सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन, कि सबको मोटिवेट करके एक लार्जर एम से अलाइन करना कि हम सबका उद्देश्य देखिए साहब ये है, ये पहला बैच है, इसकी नींव अगर मजबूती रखी जा गई तो कम से कम ये आगे चल के सस्टेन करेगा आगे जाके.
1: बिल्कुल, और ये तो मतलब हमेशा के लिए, हमेशा एक बहुत बड़ी मिसाल भी बन गया. तो क्या कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा, कभी ऐसी मुश्किलें आई जहां आ गया कि अब शायद ये हम पूरी तरीके से कामयाब शायद ना हो पाए?
0: नहीं सर, चैलेंजेस बहुत आए बट दिमाग में ये चीज बहुत जरूरी, बहुत क्लियर थी कि ये एक टफ फेज है, बट हाँ इससे निकल के आने के बाद में स्कूल जो तैयार हुआ है ये आगे से, देखिए हम सब शायद फेड हो जाएंगे कितने किसी टाइम पे आके, बट ये संस्थान रहेगा, इसकी एथॉस रहेगी, इसकी कार्यशैली

0: रहेगी, और जो जो चीजें अभी करी गई ये शायद चलती रहेंगी आगे तक,
1: हमेशा के लिए वो
0: हमेशा
1: बन
0: के
1: गया और
0: लिए।
1: वो हमेशा ही वहां से एक नए बच्चे निकल करके
0: जी
1: आते
0: जी
1: रहेंगे।
0: जी जी
1: तो ये
0: जी
1: बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके पूरे करियर का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं।
0: मैं बिल्कुल आप बात मैं मानता हूं आपकी बात, ये सबसे सेटिस्फाइंग फेज था हमारे करियर का। और क्योंकि एक ऐसी चीज थी कि आप उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनको आपको, जिनमें आपका भविष्य दिख रहा है आपका उनका, तो ये अपने आप में बहुत ही सुखद था, बहुत ही अमेजिंग फेज था करियर का।
1: सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपको अनथक कड़ी मेहनत, एग्जेम्पलरी फोरसाइट, जबरदस्त फुल प्रूफ प्लानिंग, लीडरशिप और अपने कर्तव्य से बढ़कर दिए गए अटूट समर्पण के लिए, यही सब काम उसमें शामिल थे
0: जी
1: जो राष्ट्रपति द्वारा आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। तो कैसा महसूस हुआ आपको उस वक्त, वो क्षण, वो मोमेंट्स, और यही वो आपका काम था जिसकी बदले आपको VSM से सम्मानित किया गया,
0: जी
1: तो वो जो मोमेंट था।
0: देखिए साहब, कभी भी किसी रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया, काम तो अपनी सेवा भाव से, अपने दम से किया पूरा का पूरा।
1: जी
0: हाँ, बस ये था कि तीन तीन स्कूल स्टैब्लिश करना अपने आप में एक अचीवमेंट था, जिसको हमने अचीवमेंट की तरह तो नहीं लिया, बट हाँ, जिन लोगों ने, जो मेरे ऊपर से उच्च अधिकारी थे, उन्होंने
1: जी
0: उसको अचीवमेंट माना, और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से ये सम्मान मिला, तो अपने आप में ये बहुत ही सुखद अनुभव था। इट वॉज एक्चुअली ए ट्रेमेंडस
1: सर, ये
0: अचीवमेंट।
1: आपके लिए अचीवमेंट था, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक मेडल था और ऑनर भी था।
0: जी
1: आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो मिलने वाले थे, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक अलग सी चीज है,
0: जी
1: बड़ा
0: जी
1: इंटरेस्टिंग रहा हो, तो वो बताइए हमें।
0: मुझे याद है जिस दिन ये अवार्ड डिक्लेयर करा गया था, हमारी एक कोर्समेट ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारा नाम अवार्ड की लिस्ट में है, तो
1: जी
0: अपने आप में बस सबसे सबसे सुखद अनुभव था वो वाला। पर हाँ, ये फौज में बहुत चुनिंदा लोगों को ही इस तरह से अवार्ड
1: बिल्कुल
0: दिए आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो
1: बिल्कुल
0: अपने आप में ये अवार्ड दिया जाना बहुत सुखद अनुभव था, और बहुत प्रोत्साहन भी मिला इस चीज से कि आगे भी अच्छे करते रहना है।
1: बिल्कुल
0: जी
1: सर, एक चीज यहां पर हमें बताइएगा कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे वो आए, एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को।
0: जी देखिए, सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ। इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है,
1: ठीक है,
0: जिसको कि NTA कंडक्ट कराता है। तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या पांचवें में
1: ओके,
0: हैं,
1: जी
0: दे कैन अपियर इन द एग्जामिनेशन,
1: ओके,
0: और इस एग्जाम को जब कंडक्ट कराया जाता है उसमें अपनी अपनी चॉइस दी जाती है कि आप भाई आप किस स्टेट के नेटिव हैं,
1: अच्छा,
0: किस राज्य के आप हैं नेटिव, और उसके बाद में कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस जिस राज्य में आप अप्लाई कर, अगर आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य
1: जी
0: में अप्लाई करें, तो 70% सीट्स उस राज्य से भरी आती हैं
1: ओके
0: और 30% सीट्स अलग अलग राज्यों से भी भरी आती है, जिनका अलग अलग कुछ सीट नॉमिनेट होती हैं। तो
1: जी
0: ये रूल्स समय समय पर चेंज भी होते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। एंड इन स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही बच्चे को वहां पर दाखिला होता है। पर
1: जी
0: यह बात निश्चित है कि सैनिक स्कूल्स का जो उसमें जो ग्रूमिंग होती है, जो एक बच्चे के अंदर में एक एक आदर्श डाले आते हैं,
1: जी
0: जो उसके अंदर में एक डिसिप्लिन की
1: डिसिप्लिन,
0: भावना डाली जाती है,
1: बिल्कुल
0: ये जीवन भर काम आती है। तो भले ही वो फौज में जाए या ना जाए, उद्देश्य तो जाना ही है, पर
1: बिल्कुल,
0: वो चूज करता है कि नहीं भी जाना है। हर बच्चे के अंदर में अलग अलग
1: जब
0: महत्वाकांक्षाएं हो
1: जी
0: सकती हैं,
1: करियर को
0: चॉइस
1: लेकर
0: हो
1: के,
0: सकती हैं,
1: जी
0: पर एक बात तो निश्चित है कि उस बच्चे को जीवन भर कम से कम एक सही दिशा, सही तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने का एक रास्ता जरूर मिल
1: यानी
0: जाता
1: कि
0: है।
1: बुनियादी तौर पर वो जो रूट्स हैं उसके वो
0: जी
1: मजबूत हो जाते
0: बिल्कुल
1: हैं, और वो जैसे आपने कहा कि वो डिसिप्लिन और एक लाइफस्टाइल जो है पूरा वो बहुत ही
0: बिल्कुल,
1: ऑर्गेनाइज हो जाता
0: यस
1: है।
0: यस
1: तो सर
0: यस
1: इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर है?
0: यस यस अगर गूगल करेंगे तो सैनिक स्कूल एडमिशंस की वेबसाइट भी अलग है, सैनिक स्कूल
1: ठीक है
0: सोसाइटी की वेबसाइट भी अलग है, और इन सभी स्कूलों के लिए अलग अलग स्वयं की वेबसाइट भी है,
1: ठीक
0: जिसपे
1: है
0: कि जो लोग एडमिशन चाहते हैं वो जाके जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबडी हैज द डेटा विद हिम, तो सब लोग उस पर जाके देख सकते हैं, जिसको जहां पे चूज करना है दे हैव ऑप्शन।
1: ओके तो ये इन वेबसाइट से और सैनिक स्कूल सर्च करेंगे गूगल पर तो सारा
0: जी
1: प्रोसीजर सामने
0: जी
1: आ जाएगा
0: जी
1: उसके थ्रू। लेकिन आपने कहा कि जो 5वीं पास आउट कर रहे होते हैं बच्चे वो, या
0: या जो
1: जो
0: पास आउट हो चुके
1: हो
0: हैं,
1: चुके हैं
0: हाँ,
1: वो,
0: 12 साल की लिमिट होती है,
1: 12 साल की
0: तो 10
1: लिमिट
0: से
1: है।
0: 12 के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
1: ओके हमारे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आगे भी हम उनसे बातचीत रखेंगे जारी और कुछ और भी उनके पहलू पर जिंदगी के और करियर के डालेंगे रोशनी। आप बने रहे हमारे साथ रेनबो पर। आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। सर हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने 3 नए सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश किया कितना चैलेंजिंग था और कितने ज्यादा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा और वही आपकी मेहनत और वही चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किए और उनको फुलफिल किया जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने आपकी फीलिंग्स ही पूछी और हम फीलिंग्स हम देखना चाहेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये है मैसेज, जय हिंद सर जी, रजनीकांत हैं ये रघुनाथ पाटिल वार्ड 1 से। और इसके अलावा मैसेज है, हेलो सर, माय हार्टेस्ट सैल्यूट टू ऑनरेबल गेस्ट टुडे एंड जय हिंद टू ऑल आवर इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द कंट्री। आई बो माय हैट टू देम माय सेल्फ। अंजलि लोध फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्लीज शेयर माय मैसेज टू रेस्पेक्टेड सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आपका मैसेज जो है अंजलि, हमारे जो गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी, उन्होंने सुन लिया है। और एक मैसेज और है, ये शरद का मैसेज है, वो गुड इवनिंग सर, आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेजेस आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 011-2342-1085। सर हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में, हम जानना चाहेंगे कि आप

0: के पीजीआई लखनऊ का जो आपका एक एक्सपीरियंस है, तो पीजीआई क्या है, क्या होता है और आप कैसे पहुंचे, क्योंकि पीजीआई लखनऊ के रजिस्ट्रार के तौर पर आप मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव भी ला रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: जी, वाइल्ड बीइंग इन सर्विस मुझे डेपुटेशन पे पीजीआई भेजा गया। मतलब पीजीआई में डेपुटेशन की ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलती हैं, जिनमें इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को का चयन होता है। तो डेपुटेशन के लिए 3 साल के लिए मुझे पीजीआई गया था मैं। तो वहां पे एज अ रजिस्ट्रार माई रोल वॉज प्राइमरली टू द मैनेजमेंट ऑफ अकेडमिक एक्टिविटीज, जिसमें कि जो हमारे डीएमएमसीएच एमडीएमएस के जो पाठ्यक्रम हैं, प्लस जो हमारे यहाँ 2 कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका प्रबंधन और प्लस डे टू डे एकेडमिक मैनेजमेंट पूरे इंस्टीट्यूट का, वो एक रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है।
0: तो आई ये बहुत ही एक अहम भी और बहुत ही मतलब टफ होता है, क्योंकि अब बिल्कुल एक एकेडमिक्स में आकर के
1: एब्सोल्युटली कमिंग फ्रॉम अ इन्फेंट्री बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच वॉज हार्ड कोर ऑपरेशनल बैकग्राउंड से, एक अकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वॉज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। मैं तो उस प्रकार का व्यक्ति था कि मुझे हेमेटोलॉजी और हेपेटोलॉजी के बीच में ढंग से फर्क नहीं पता था, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी मेडिसिन साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज के बारे में।
0: तो पहले आपको खुद सीखनी पड़ी वो?
1: जी, बट हाँ, तीन साल चार साल हो गए वहां पे। इन 4 सालों में द एक्सपीरियंस हैज बीन ट्रेमेंडस, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली और बहुत चीजों को कंट्रीब्यूट भी किया हम लोगों ने। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स को हमने बढ़ा के उनकी संख्या काफी बढ़ी वहां पे, तो पहले 28 थे, अब करीब 41 हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में क्लिनिकल सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूटों में नंबर 3 पे आता है, एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई के बाद में। और यूपी के करीब 26-28 करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पे एक अवसर मिलता है।
0: अच्छा,
1: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा, ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी काफी
0: जी,
1: करी
0: जी।
1: और नए एकेडमिक कोर्सेज को, नर्सिंग कॉलेज को रीइंस्टेट करने में, उसकी जो ग्लोरी बनती है उसको वहां पे लाने में, तो उसमें काफी योगदान किया गया
0: जी। तो सर, अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी, उसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि करियर के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, तो पीजीआई उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है, रोल प्ले करता है, तो किस किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है?
1: देखिए, पीजीआई लखनऊ में है और एक चंडीगढ़ में भी है। तो लखनऊ वाला पीजीआई दैट इज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड इसमें यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज नहीं होते हैं, बट एमडी और एमएस कोर्सेज होते हैं और डीएम और एमसीएच कोर्सेज होते हैं, जो कि और प्लस पीएचडीज भी हैं, जो कि सुपर स्पेशलाइज कोर्सेज हैं। तो इनके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद में नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में अपियर करना पड़ता है, और जो लोग एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, जहां पे इनके अच्छे नंबर आते हैं, तो रैंक के माध्यम से उनको रिस्पेक्टिवली कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। तो ये चूज कर सकते हैं, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, ऑटोनोमस है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ के डिपार्टमेंट्स पुराने हैं, यहाँ की लेगेसी बहुत रिमार्केबल है, और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है।
0: सर, जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे कितना फायदा हो रहा है अभी?
1: बहुत सारे बदलाव हैं। देखिए, आप प्राइमरी केयर होता है, फिर टर्शरी केयर, फिर ना प्राइमरी अच्छा। होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी केयर होता है, उसके बाद क्वार्टनरी केयर भी होता है। तो अब संस्थान एक नए लेवल पर जा रहा है, कुछ स्तर पर जा रहा है, जहां पे टर्शरी केयर के बाद में अब हम क्वार्टनरी केयर की बातें करने जा रहे हैं। जहां
0: अगर हम एक लेमैन के हिसाब से समझें, आम भाषा के हिसाब से, तो उसको कैसे हम इसको समझेंगे कि ये कौन कौन से, आप जो बता रहे हैं आप
1: संस्थान में, जैसे कि टर्शरी केयर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्पेशलाइज केयर होता है।
0: अच्छा।
1: कि जैसे कि आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट सर्जरीज हो गई, ट्रीटमेंट्स हो गए, जेनेटिक ट्रीटमेंट्स हो गए, तो इनका भी एक हायर लेवल होता है, उसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी केयर, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज को अमैलगमेट करके एक जगह पे किसी भी पेशेंट के सारे रोगों का उपचार एक साथ करने की पद्धति निकाली जाती है। तो इन चीजों को अभी हम लोग लेके आ रहे हैं वहां पे, डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, एंड वी विल टेक इट फर्दर इन अ बिग वे नाउ। सो पीजीआई इज गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर।
0: ओके,
1: हाँ, तो प्लस यहाँ पे ये है कि भाई जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे, उनको जो एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट को देखने में, डिफरेंट प्रॉब्लम को क्योर करने में, ना वो बहुत रिमार्केबल होगा।
0: सर, लेकिन एक चीज यहाँ पर हम ये भी महसूस करते हैं आपसे बातचीत करते हुए कि जो चैलेंजेस आपको सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करने में आए होंगे, ये तो मुझे और भी टफ महसूस हो रहा है कि इसको अपग्रेड करना, इतने हाईली सेंसिटिव जो ट्रीटमेंट आपने बताया उनको और बेहतर।
1: देखिए सर, दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट थे। सैनिक स्कूल में आई वाज द लीडर एंड आई हैड ऑल द पीपल हु अंडर मी एंड आई कुड यूज देम एट माय ओन डिस्पोजल. यहाँ पे एक टीम है जो कि अलग अलग कॉम्पिटेंसीज कैपेबिलिटीज और अलग अलग एनवायरमेंट से आती है. तो यहाँ पे एक टीम भावना को लेकर चलना और उनको सबको समन्वय के साथ लेकर चलना आगे वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है बिकॉज बड़ा इंस्टीट्यूट है, ज्यादा लोग भी हैं. तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं. यहाँ पे हम लखनऊ में बैठे हैं, वहां पे आप आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ थे जंगल में एक तरीके से, जहां पे बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी, वहां पे जहां फोन तक नहीं मिलता था उस टाइम पे. तो इन सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, प्रारूप हैं. बट द फैक्ट इज की यस बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग.
0: जी जी. तो लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एग्जर्शन आपको महसूस हो, आपको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे भी ब्रेक चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा?
1: देखिए साहब, ब्रेक सबको लेना भी चाहिए, टफ टाइम्स आते हैं, बट टफ टाइम्स में वही कहावत नहीं कि भाई टफ टाइम्स डोंट लास्ट ना, बट टफ पीपल डू. तो वही टफ पीपल डू लास्ट, तो वही वाली एक सच्चाई है कि जो इंसान मजबूत है, जो इंसान सहनशील है, जिसके अंदर में अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करने का दम है, तो वो लगा रहेगा, रास्ता निकाल लेगा अपने आप.
0: तो बिल्कुल वो जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए, तो आप कभी भी थकते या रुकते नहीं है, आप एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ते हैं. सर, इसी में पीजीआई के बारे में बात करें कि आपने पीजीआई के नर्सिंग कॉलेज को रीस्ट्रक्चर, इसका पुनर्गठन भी किया, तो वो कैसे किया गया, क्योंकि ये भी एक अलग एक पूरा एक अपने आप में काम था, कार्य था.
1: जी जी. देखिए, नर्सिंग कॉलेज एक नर्सिंग एक बैकबोन है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज की. अच्छे नर्सेज ही अच्छे केयर को दे पाएंगे. डॉक्टर्स ने इलाज करना है, सर्जरी करनी है, बट उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या किसी भी मरीज की देखभाल है, केयर है, वो तो नर्स के जिम्मे आती है. तो अच्छा नर्सिंग का करिकुलम बनाना, अच्छे नर्सेस को ट्रेन करना, तो हम लोगों ने लखनऊ में इस कॉलेज को पूरा रिस्ट्रक्चर किया. कॉलेज चल रहा था पहले से, पर उसके अंदर में बहुत ही जो ब्रॉड लेवल के बदलाव हम लोग लेके आए, हमने कोर्स को, करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया, टीचर्स को लेके आए अच्छे, जो हमारा ट्रेनिंग को हमने और प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया, और उनके मेट्रिक्स को हमने किया. तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहां पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहां पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92 एंड पीजीआई वाज नॉमिनेटेड एज अ मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की या जहां जहां प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं, इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए और बताइए कैसे आप कैसे अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाया जाता है. तो ये अपने आप में
0: बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट था. जी. और जाहिर है बहुत टफ भी रहा होगा.
1: हाँ,
0: इसमें फिर किस तरीके का आपको,
1: इसमें सबका योगदान है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के फैकल्टी का, बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे. बट हाँ, सबको लेके चलना हो, ये बोलना कि नहीं साहब हमको इस स्टैंडर्ड को लेके ऊपर बढ़ाना है, और जिस चीज के लिए भी ये जाना जाता है वो स्टैंडर्ड को हमको अचीव करना है. तो दैट इज हाउ वी कुड डू इट एंड इट केम टू अ लेवल.
0: बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहाँ भी है कि एक तो होता है कि आप एक बुनियादी तौर से मतलब बिल्कुल रूट से एक नई चीज खड़ी कर रहे हैं, और एक है कि रीस्ट्रक्चर उसको करना.
1: जी.
0: तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ रहा होगा.
1: रीस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला जानना ये जरूरी होता है कि किन चीजों से आप लैग कर रहे हैं. जब आप ये जान जाते हैं कि भैया ये चीज हमको पुल डाउन कर रही है, देन उनको स्ट्रीमलाइन करना और उनके अलाइड चीजों को साथ में इकट्ठा करना, वो एक अलग टास्क होता है. तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आप जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो इस काम को कर सकते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करें, कैसे आप उनको एनर्जाइज करें, कैसे आप उनको कुछ ऐसे पर्क्स दें जो उनको थोड़ा अच्छा महसूस कराएं, और कैसे उनको एक सिस्टम में लेके साथ चलने के लिए प्रेरित करते रहें. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
0: ये जितनी भी चीजें रही हैं यहाँ पर, वो जो आपका जो आर्मी का बैकग्राउंड था, वो जो ट्रेनिंग थी, वो सब जो सीख कर आप आए, तो वही यहाँ पर ज्यादा असरदार साबित हुई, उसी ने ही सबसे बड़ा इसमें आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की, सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाए, ऑर्गेनाइज मैनर में कर पाए.
1: बिल्कुल, मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. कैसे आप हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलें, कैसे आप उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं. देखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान की कॉम्पिटेंसी में, हर इंसान की कैपेबिलिटी में फर्क होता है, पर इन कैपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसी को कैसे हार्नेस करा जाए, कैसे उसको सिस्टम में ज्यादा यूज किया जाए, कैसे उनको लेकर चला जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है. एंड डेफिनेटली मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन फॉर द एंटायर एफर्ट. एक्चुअली
0: यानी कि वो जैसे हम अक्सर हम बात करते हैं, जब भी हमारे पास आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स आते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आर्मी जो है वो हम उसका एक पार्ट जब बन जाते हैं, तो वो एक अलग जिंदगी है, वो एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है,
1: जीवन शैली है.
0: वो एक लाइफ
1: वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ,
0: और बहुत ही स्पेशल है.
1: Absolutely,
0: मैं समझता हूँ. तो वो जैसे अब कहा जाता है कि एक थोड़ा बहुत वक्त जो है हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि थोड़ा बहुत समय वो उस ट्रेनिंग को दें, ताकि वो उस डिसिप्लिन को भी समझें और सीखें, और उनके मन में जो है वो देशभक्ति की भावना को लेकर के एक जज्बा पैदा हो.
1: जी.
0: तो इस चीज में किस तरीके का हम कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी, अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं?
1: देखिए साहब, भारत बहुत बड़ा देश है और हमारी फोर्सेज आर स्ट्रांग इनफ, सो कंपलसरी जो कंस्क्रिप्शन होता है कि भाई सबको सबको सैन्य में सेवा करनी करनी है,
0: जी
1: वो शायद यहाँ संभव ना हो पाए, बट हाँ ये जरूर है कि एनसीसी हो गया, स्काउट्स हो गया, इन सब की ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे पास एक एक युवा पीढ़ी मौजूद है जो कि फौज ज्वाइन करने के लिए तैयार है। आज भी देखिए भर्तियों में कितना भीड़ लगती है, आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज में देयर सो मेनी एप्लीकेंट्स, 10-12 लाख लोगों में से कुछ चुने हुए 400 लोग 300-350 लोग अकेडमी पहुंच पाते हैं। तो देयर लॉट ऑफ एनर्जी इन द एनवायरमेंट, देयर लॉट ऑफ लाइक एंथुसियाज्म इन द यंगस्टर्स, जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई आर्मी में वो अपनी सर्विस दे पाए, नेवी में जा पाए, एयरफोर्स में जा पाए। तो डेमोग्राफिकली इंडिया इज इनरिच्ड, वी हैव अ लॉट ऑफ यंग पीपल। हाँ ये जरूर है कि गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करें, जो जिससे कि एटलीस्ट एक सैनिक होने पे जो प्राइड है ना वो बरकरार रहे,
0: बरकरार रहे।
1: तो वो एक बहुत बहुत
0: वो दशवार है,
1: exactly।
0: सर एक चीज यहां भी बताएगा कि जैसे जो शुरुआत है कि जब आप चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, जहां आपने बताया कि एनसीसी से शुरुआत हो सकती है और भी कई सारे ऐसे, तो कब से कर सकते हैं, क्या उसके लिए मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, एज फैक्टर है, एजुकेशन है, वो भी बताइएगा।
1: आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू स्टे इन एनसीसी बटालियन ऑल्सो। तो एनसीसी में क्या होता है, दो विंग होते हैं, जूनियर डिवीजन होता है, सीनियर डिवीजन होता है। तो जूनियर डिवीजन में तो ए सर्टिफिकेट मिलता है, बट हाँ सीनियर डिवीजन की शुरुआत होती है क्लास ऑलमोस्ट 9-10 से।
0: अच्छा,
1: तो 9-10 से वो बच्चा जा सकता है सीनियर डिवीजन में और वो अपना एनसीसी का 11th 12th आते जाते अपना बी सर्टिफिकेट पास कर लेता है और 12th के बाद में वो ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सी सर्टिफिकेट कर सकता है। बट सी सर्टिफिकेट करने का एडवांटेज ये है कि उससे उस पर्टिकुलर कैडेट को एग्जाम में अपीयर करने से छूट मिल जाती है।
0: अच्छा,
1: तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में एक एनसीसी का एक कोर्स चलता है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल कोर्स, जिसमें इसके बाद में यू गेट अ कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द एकेडमी। तो एग्जाम आपको एनसीसी एग्जाम पास करने की वजह से आपको एग्जाम में अपीयर करने की छूट मिल जाती है। यू हैव टू अपीयर स्ट्रेट फॉर द एसएसबी, एसएसबी आपने पास कर लिया।
0: अच्छा,
1: तो आप यू कैन गो एंड ज्वाइन द एकेडमी विद अ रेगुलर कोर्स। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मुझे लगता है कि एनसीसी को ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में कंपलसरी करना चाहिए और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर में और ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को ना एक लार्जर नेशनल एथॉस में इंक्लूड कर सकते हैं,
0: कम से कम उनके अंदर वो चीज,
1: राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय स्पिरिट को वी कैन अपहोल्ड, दैट स्पिरिट
0: अपहोल्ड, बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज उनमें बरकरार रहनी चाहिए और उसके अंदर वो जोर से जज्बा और देश देश से जुड़ने का भी एक ना उसके पास एक माध्यम होगा कि हाँ भाई क्यों वो अपने देश से मोहब्बत करता है और उस पर जानिशार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। सर हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे और हम पीजीआई के अंदर जैसे आपसे हमने बात करी, इतनी लंबी बात करी हमने, और उस पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसमें टेक्निकली की भी एडवांसमेंट हो रहा है, एआई का भी इसमें शामिल किया जा रहा है जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है। तो जाहिर है एआई हर जगह पर है, तो क्या उसमें उसकी भी कहीं पर जो है शामिल किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है उसको?
1: जी बिल्कुल।
0: तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे संदेश टू सोल्जर्स में और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं ताकि हम यहाँ पर आपके लिए प्ले कर सकें।
1: आप बॉर्डर का गाना चलाइए, संदेश से आते हैं।
0: तो आज के हमारे गेस्ट हैं संदेश टू सोल्जर्स के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आप सुन रहे हैं 1.6 देश के नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेनबो संदेश सोल्जर्स शायद के साथ, और ये हमारे आज के गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी की पसंद का ट्रैक आप भी एंजॉय करें। और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे आज के गेस्ट से, 9868107070 नंबर है हमारा।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, और हम बात कर रहे हैं वरुण से। हमने बात करी 3 नए सैनिक स्कूल जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए, उसके अलावा उनके आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में बात की, और हमने बात करी PGI लखनऊ के बारे में। सर, हम आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि PGI लखनऊ की आपने बात करी, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो अब AI का तो यूज हर जगह है, हर चीज में है
1: जी।
0: तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है और जो ट्रेनिंग है उसमें भी अब AI का बहुत यूज हो रहा है, तो PGI किस तरीके से AI के बारे में सोच रहा है या यूज कर रहा है?
1: देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप AI से अपने आप को अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: AI हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे आप मोबाइल यूज करें, चाहे आप किसी चीज को सर्च करें, कुछ भी करें
0: जी।
1: AI हैज बिकम अ प्रिंसिपल वे टू लिव योर लाइफ नाउ।
0: तो गलत है कि मतलब किस तरह से आप इसको देखते
1: जी
0: हैं?
1: नहीं, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। देखिए साहब, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज जब नहीं आती है तो इनेबलर होती है, कुछ चीज को इनेबल भी करती है, उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं
0: जी।
1: उसको दिक्कत नहीं आती जिसके लिए तैयारी पहले से कर लेता है। अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहां पे भी AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है डायग्नोस्टिक में।
0: अच्छा।
1: बहुत बड़ा रोल होने वाला है चीजों को समझने में। अब जैसे आप, छोटी सी बात है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि क्लिनिकल साइंसेज में, डायग्नोस्टिक में AI विल बी हैविंग अ मेजर रोल नाउ। कि आपने MRI करा, MRI को पढ़ने के लिए आपको क्लिनिशियन चाहिए, हमेशा चाहिए होगा। देयर विल ऑलवेज बी अ मैन बिहाइंड अ टेक्नोलॉजी, दैट यू कैन नॉट निगेट दैट, उसको आप नहीं दूर कर सकते। बट हाँ, 10 चीजों को कंपेयर करके, 10 AI के जो AI का जो डेटा बेस है उससे, उस इमेज को कंपेयर करके जो एक इन्फ्रेंस निकल सकता है
0: जी,
1: और उस डायग्नोसिस के बाद में जो बेटर इलाज निकल सकता है, इन सब चीजों में AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो PGI में बहुत बड़े स्तर पे अभी AI को हम लेके आएंगे अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर में, सर्जिकल टूल्स के अंदर में, और टेक्नोलॉजी को हम ऐसे एम्बेड करें, कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करें, उस पर काफी विचार विमर्श चल रहा है, काफी काम चल रहा है
0: जी।
1: आई एम श्योर आने वाले टाइम पे AI से आप दूर तो नहीं जा पाएंगे
0: जी। AI विल, अक्सर लोग बताते हैं कि सर, अब जो एक मेडिकल एग्जामिनर है वो किसी रिपोर्ट को देखता है, अगर उसको वो एनालाइज करता है, तो वो हो सकता है कि वो किसी हद तक परफेक्टली शायद उसको डायग्नोस ना कर पाए उस डिजीज को, लेकिन ये बताया गया है कि AI बहुत ही कम समय में एकदम परफेक्ट उसको एनालाइज कर लेती है, तो ये किसी हद तक,
1: मैंने भी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जहां पे ये देखा गया है कि AI का जो असेसमेंट रहा है वो क्लिनिशियन के असेसमेंट के बिल्कुल पास रहा है, कभी कभी उससे बेटर भी हुआ है, और स्कोप ऑफ एरर काफी कम कर दिया है उसने। मैं ये बात तो हमेशा बोलूंगा कि देयर विल ऑलवेज बी अ इंडिविजुअल और मैन और अ क्लिनिशियन बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन इंटरफेस को तो आप निगेट नहीं कर सकते, बट ये जरूर है कि AI के माध्यम से, AI के आने से जो हमारा परफेक्शन है, हम उसके और पास पहुंच सकते हैं, अपनी हम ट्रीटमेंट की पद्धतियों को, अपने इलाज की शैलियों को हम और रिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन रियली रीच आउट टू द रियल कॉज ऑफ द इलनेस इन अ शार्पर एंड अ फास्टर वे। दिस कैन डेफिनेटली बी अ बिग रेवोल्यूशन नाउ।
0: सर, AI पर हमने बात की, और AI तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि जिंदगी का हिस्सा बन ही चुका है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में
1: जी।
0: हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर भी, जो फौज पर उसका क्या असर होता है, जो नए बच्चे जाते हैं उनका भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मैसेज ले लूं जो मैसेज आए हुए हैं। ये मैसेज आया है, जय हिंद सर, सेवा मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं शबनम BK दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, और इनका सवाल भी है सर
1: जी,
0: इनका सवाल ये है कि किस आधार पर सैनिक स्कूल में दाखिला मिलता है, कृपया बताएं। हालांकि इस पर बात हमने की
1: जी जी जी,
0: तो एक बार और प्लीज अगर बता।
1: देखिए, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है
0: जी।
1: क्लास 5th पास बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं
0: जी।
1: 10 से 12 साल का एज लिमिट होता है। क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन किया जाता है। एग्जाम NTA कराता है, और सैनिक स्कूल एडमिशन की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है, और किस तरीके से क्या क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्जाम में क्या चीज चेक करी जाती है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस।
0: अच्छा।
1: वो सारा कोर्स करिकुलम, एग्जामिनेशन का पैटर्न, सब कुछ मिल जाएगा। और इवन कोर्स में एग्जामिनेशन को अपियर करने के लिए जो गाइड्स होती हैं, किताबें होती हैं, कोचिंग्स होती हैं, वो भी उपलब्ध हैं। तो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे है आपके। यू जस्ट हैव टू गूगल सैनिक स्कूल एडमिशन, देन यू कैन गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन।
0: ओके
1: जी,
0: आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और ऑनलाइन अप्लाई भी आप वहीं से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: सर, एक मैसेज और है, गुड आफ्टरनून वाजपेयी सर, NRJ सर, जय हिंद टू यू एंड ऑल इंडियन आर्मी, आई सल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर द डेडिकेशन एंड फेयरलेसली सर्विस टू आवर नेशन। I give respect from bottom of my heart, myself, Shankar Lod, from Gomo district, Dhanbad, Jharkhand. Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai.
1: Bharat Mata Ki Jai.
0: तो ये इनका मैसेज था, और भी मैसेजेस अभी हम देखते हैं, लेकिन हम सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या फौज पर भी सोशल मीडिया का असर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के कई कंट्रीज हैं ऐसी जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने उसको बैन किया हुआ है
1: जी,
0: तो
1: जी.
0: वो जाहिर है उसके अपने जो भी उसके हार्म्स हैं, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं इसकी वजह से. तो हमारे यहाँ भी जो बच्चे हैं उसी दौर से गुजर रहे हैं, जो बच्चे यही बच्चे जो होते हैं फिर ये जो इसी दौर से गुजर रहे होते हैं हम
1: जी.
0: उसी जिंदगी में लाइफ स्टाइल में जी. तो वो सोशल मीडिया के भी काफी तक हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस हो जाता है. तो एनडीए में जब ये जाते हैं तो सोशल मीडिया का उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, क्या होता है, कैसे आप महसूस करते हैं वो, आपने अपने तौर पर जो चीजें देखी होंगी वो, तो उसको कैसे हैंडल भी करते हैं ये भी बताइएगा.
1: जी जी, देखिए साहब, सोशल मीडिया इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड नाउ, दुधारी तलवार है जिसके पॉजिटिव भी हैं बिकॉज इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बट क्या ये कम्युनिकेशन रियल है, क्या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, तो इसका उत्तर ना है. ये तो एक ऑनलाइन मोड का कम्युनिकेशन है जिसमें आप वर्चुअली बात कर रहे हैं एक दूसरे से. तो इस वर्चुअल एलियनेशन से होता क्या है कि हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी पर फर्क पड़ने लग जाता है. तो यही क्लास 12th पास लोग जो जवान जा रहे हैं फौज में, ये भी फोन पे ही इनका फोन का एडिक्शन है. यही लड़के जब एनडीए जा रहे हैं तो ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, सेम सोशल स्टाटा से, सेम सोशल सेगमेंट से उनको लिया जा रहा है. तो सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप में उसके दुष्प्रभाव तो दिख रहे हैं
0: जी.
1: आजकल सबको पता है कि भाई एक टेबल पे जो लोग बैठे हैं 5 लोग तो आपस में बातें नहीं कर रहे हैं खाना खाने के टाइम पे या गपशप नहीं लगा रहे हैं, पर वो अपने फोन पे लगे हुए हैं और रील्स को उंगली उनकी हिल रही है.
0: वाला था सर, ये रील्स का जो एक तरह से वो हो गया है कि हैबिचुअल हो चुके हैं या एडिक्ट हो चुके हैं लोग, इसका कोई मतलब या असर भी, और दूसरी बात कि कैसे बचे इससे.
1: देखिए साहब, ये बहुत जरूरी है. तो जिन कंट्रीज ने देखिए अभी हाल में इसको इस पे बैन लगाया है, दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज. सो इन सब कंट्रीज में भी इस चीज का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि कैसे इससे एक पूरी एक जवान पीढ़ी, एक पूरी पौध खराब हो रही है.
0: बिल्कुल,
1: जैसे हम बात करते थे ड्रग्स का दुष्प्रभाव क्या है और ना बुरी हैबिट्स का दुष्प्रभाव क्या है, तो ये भी अपने आप में इसका बुरी मतलब डबल एज सॉर्ड तो है ही. जैसे मैंने पहले बोला, इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है अभी कि कैसे इंसान आपस का कम्युनिकेशन खराब हो गया है और कैसे इंसान इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दुनिया भर के स्नैपचैट और इन सब चीजों पे, कि उसको उनसे वही उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है जिससे बाहर निकल के आने में बड़ी तकलीफ हो रही है.
0: सर, एक चीज ये भी बताई जाती है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से डिजाइन है नेचुरली कि वो कंफर्ट को ही एक्सेप्ट करता, प्रेफर करता है.
1: जी, जी.
0: वो एफर्ट्स पर जाना ही नहीं चाहता.
1: जी.
0: तो इससे बचने का कोई तरीका, क्योंकि जो फौज बच्चे जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं 12th पास करके जा रहे हैं, तो क्या उसका असर फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बन सकता है, हार्म कर सकता है?
1: देखिए साहब, ये बहुत सबसे जरूरी बात है कि पेरेंट्स को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा इस चीज के लिए कि वो अपने बच्चों को उतना ही एक्सपोज करें उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में मोबाइल और लैपटॉप पे जितना आवश्यक है. हर चीज मोबाइल और हर चीज लैपटॉप के माध्यम से अवेयर कराना, उससे पढ़ाना जरूरी नहीं है, किताबें भी जरूरी हैं.
0: किताबें
1: देखिए साहब, आप
0: तो
1: बिल्कुल एयरपोर्ट जाइए, आप देखिए साहब, एक टाइम था कि बहुत लोग किताबें देखते मिलते थे, किताबें पढ़ते मिलते थे, मैगजीन्स बिकना बंद हो गई, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन काफी कम हो गया है. तो देयर इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, पढ़ना के और भी तरीके हैं, कुछ चीजें हैं ऑनलाइन, आप नहीं जा सकते दूर उनसे, बट यस, यू हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वेज ऑफ लर्निंग. ये बहुत आवश्यक है,
0: ये बहुत जरूरी है. और सर, इसका जैसे हमने कहा कि जो फौज में नए बच्चे जाते हैं उन पर जो असर पड़ रहा है, वो आपने क्या महसूस किया है और उसका फिर मतलब निवारण क्या है, मतलब उसे कैसे बचा जाए ताकि उसका नेगेटिव असर फिर लॉन्ग टर्म में उस तरफ ना जाए?
1: देखिए, फौज में, आर्मी में तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए.
0: अच्छा.
1: किस तरीके से दूर रहना है. देखिए, फौज में बहुत सारी चीजें स्पियोनाज भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें मतलब ना, कोई इंसान आपको गलत तरीके से आपको टैप कर सकता है ताकि आपसे इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए. तो इन सब से भी, ये भी सोशल मीडिया के तरीके से ही होता है. तो फौज ने तो इनफैक्ट फेसबुक पे और बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया है कि भाई, कि एज सर्विंग सोल्जर यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोज ऐप्स ना.
0: अच्छा, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट भी,
1: अकाउंट भी डिलीट कर दिए गए हैं, बैन लगा दिए गए हैं, क्योंकि उन सब से भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होती है. आप भूल जाते हैं कभी कभी, आप कैरी ऑन हो जाते हैं भाई कि इन चीजों को लेके फर्क नहीं पड़ता है, बट देन समबडी इज मॉनिटरिंग यू ऑन द सोशल मीडिया इस चीजों से. प्लस आपको पता ही कितने स्कैम्स चलते हैं, कितने फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो जाते हैं. तो सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी इविल, आई अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज करना है ये बताना, समझाना, सिखाना बहुत जरूरी है.
0: तो सर, ये तो बहुत टफ काम है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि वो एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो बच्चा हो या बड़ा हो तो उसे वो छूट नहीं पा रहा है,
1: छूट नहीं पा रहा है.
0: तो क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे उनको मतलब बचाया जाए।
1: देखिए कुछ चीजें तो
0: डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं
1: जी, जैसे डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं, कुछ चीजें पॉलिसी फ्रेमवर्क में आनी चाहिए हम लोग के, कि भैया एक बच्चे की ग्रोथ के जो बेसिक ईयर्स होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है। प्रॉब्ली दे वील कम टू अ टाइम, एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत में भी ये चीजें बैन करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो इस चीजों का इम्पैक्ट इतना ज्यादा दुष्प्रभाव हो गया है कि इनसे एक जनरेशन के अंदर इम्पैक्ट आ गया है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों
0: जी। तो ये जो बातचीत आपसे रही है सर, ये बहुत ही इंसाइटफुल रही। आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, आपने जितने बड़े बड़े अचीवमेंट बताए अपने सैनिक स्कूल और पीजीआई को लेकर के, वो बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही मोटिवेटिंग है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जिससे सुन रहे होंगे उनको भी गाइडेंस मिला होगा, खासतौर पर सैनिक स्कूल के एडमिशन को लेकर के जो लोगों ने हमसे बात की।
1: तो थैंक यू सो मच,
0: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद
1: थैंक यू सो मच
0: आने के लिए
1: जी।
0: कर्नल वरुण वाजपेयी हमारे साथ रहे। कर्नल वरुण वाजपेयी VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 5 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है मेरा सपना उन्नत भारत। मेरा सपना उन्नत भारत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त अलका सिंह का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन के विषय में। पहले बात करते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की। श्रोताओं, वर्ष 2006 में हमारे प्रधानमंत्री ने 15 सूत्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए प्रमुख छात्रवृत्ति योजना भी शामिल है। श्रोताओं, भारत में सरकारी या निजी स्कूल में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करती हैं। श्रोताओं, इसमें मुख्य रूप से प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और योग्यता सह साधन यानी मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति शामिल है। तो चलिए बता देते हैं आपको इनके विषय में। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, श्रोताओं यह योजना कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए है। इसमें छात्र के पिछली परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए और पारिवारिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, श्रोताओं इसके अंतर्गत 11वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर तकनीकी व्यवसाय पाठ्यक्रम और एमफिल या पीएचडी में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं शामिल हैं और इनकी पारिवारिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति, श्रोताओं इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर के व्यवसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल मैनेजमेंट करने के लिए वित्तीय सहायता देना है। श्रोताओं, अगर बात करें अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के लाभ की, तो छात्र छात्राएं कॉलेज या कोर्स की पूरी ट्यूशन फीस और साथ ही हॉस्टल के भरण पोषण का भत्ता भी ले सकते हैं और यह प्रदान किया जाता है। श्रोताओं, अब आपको बता देते हैं कि आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आपको आवेदन के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करने हैं। श्रोताओं, इसके लिए आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP पर जाना होगा। वहां आप अपना आधार नंबर दर्ज करें और मोबाइल नंबर पर आपको OTP प्राप्त होगा, जिसके बाद आप वेरिफिकेशन को पूरा करें। इसके बाद आपको वन टाइम

रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त होगा। इस पासवर्ड का प्रयोग करके आप एनएसपी स्टूडेंट लॉगिन में लॉगिन करें। डैशबोर्ड में अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप विकल्प चुनें। अपनी योग्यता के अनुसार चुने गए फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड कर दें। श्रोताओं, आपको सबमिट होने के बाद यह सेक्शन जो आप दस्तावेज सबमिट करेंगे, यह आपकी शैक्षणिक संस्थान जहाँ से आप कोई भी ये पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ आपके संस्था द्वारा वेरीफाई किए जाते हैं, और जिसके बाद आपको संबंधित राज्य या केंद्र मंत्रालय द्वारा आपको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, और इस प्रकार आप ये छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे देते हैं तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन के विषय में। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन का अर्थ युवाओं और कार्यबल को आधुनिक विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और व्यवहारिक तकनीकी के उपयोग में निपुण बनाना है। यह शिक्षा रोजगार की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करती है, जिससे युवाओं को रोजगार पाने या स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिलती है। श्रोताओं, अब आपको बता देते हैं कौशल उन्नयन के लाभों के विषय में। रोजगार क्षमता में वृद्धि, यानी तकनीकी प्रशिक्षण जैसे कोडिंग, मशीन संचालन और डिजिटल टूल्स के ज्ञान से वेतन और कैरियर के अवसर बेहतर होते हैं। नवाचार को बढ़ावा मिलता है, यानी कौशल उन्नयन से व्यवहारिक सोच और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता विकसित होती है, जिससे छात्र अपनी सोचने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। यह बदलती तकनीक के अनुकूल है, यानी उद्योगों में ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसी तकनीकों के बीच प्रासंगिक बने रहने के लिए कौशल का अपग्रेड होना जरूरी है, जिससे छात्र नई तकनीकें सीख सकें। श्रोताओं, तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से कुछ मुख्य योजना इस प्रकार है। कौशल भारत मिशन यानी स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं को रोजगार योग्य बनाने और विकसित व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिए कई पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, श्रोताओं, यह योजना PMKVY के नाम से भी जानी जाती है। इस योजना में युवाओं को इंडस्ट्री के अनुसार लघु अवधि यानी शॉर्ट टर्म का प्रशिक्षण मिलता है और प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात ITI, श्रोताओं, इसमें तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में ITI के माध्यम से विभिन्न ट्रेंडों में बुनियादी और उन्नत तकनीकी कौशल सिखाए जाते हैं। श्रोताओं, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन के लिए भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट स्किल इंडिया डिजिटल हब पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। इसके बाद आपको अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कोर्स का चयन करना होगा। फिर आप अपनी लोकेशन के अनुसार नज़दीकी ट्रेनिंग सेंटर का चुनाव कर सकते हैं। श्रोताओं, अब आपको इसमें चाहने वाले आवश्यक दस्तावेजों के बारे में भी बता देते हैं। तो आपको चाहिए आधार कार्ड, लिंक मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र यानी 8वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र यदि आवश्यक है तो। श्रोताओं, शिक्षा से ही हमें कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ती है, और यही शिक्षा मिल जाए तो और जिसमें रोजगार भी हमें साथ साथ प्रदान हो तो वह सोने पे सुहागा हो जाता है। और जो भी छात्र हैं अपने जीवन की आर्थिक कठिनाइयों से लड़कर खुद एक मुकाम हासिल कर सकें, और मुकाम में सहायता करता है कौशल उन्नयन, जो आज के युवाओं को के सपनों को उड़ान दे रहा है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 5:10 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, पहले आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की और फिर आपको रूबरू कराएंगे हमारे कल के प्रमुख कार्यक्रमों से। आज रात 9:30 पर सुनिएगा कंट्री वाइड और इनसाइट्स। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। आज रात्रि 10 सुनेंगे आप नाटक परहेज, जिसकी लेखिका होंगी सुधा शर्मा, प्रस्तुति सहायक होंगे यशोधर डबराल और प्रस्तुतकर्ता होंगे शोभित शर्मा। आज रात 10:30 पर सुनिएगा आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। एक ही फिल्म से सुनेंगे आप आज रात 8:30 पर। गीत संध्या का समय रहेगा आज रात 8:00। सुगम संगीत में सुनेंगे आप सरफराज साबरी और साथी की गाई कव्वाली आज संध्या 7:32 पर।

आज रात 8 बजे। सुगम संगीत में सुनेंगे आप सरफराज साबरी और साथी की गाई कव्वाली, आज संध्या 7:32 पर। रात 8 बजे सुगम संगीत में सुनेंगे आप सरफराज साबरी और साथी की गाई कव्वाली, आज संध्या 7:32 पर।

सुनिएगा कृषि निर्यात लाइव चौपाल का एपिसोड 8। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। इसका संचालन करेंगे सुवेंद्र सिंह और प्रमोद सिंह।

घर संसार सुनेंगे आप कल दिन में 12:15 पर, जिसमें कल चर्चा होगी ड्रग नशा और तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर प्रायोजित कार्यक्रम हमारी भेड़िया सुनेंगे आप कल दोपहर 12:00। कल दिन में 11:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, जिसके प्रायोजक होंगे NCERT। सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता सुनेंगे आप कल सुबह 10:30 पर, जिसमें कल का विषय रहेगा आपातकाल और उसका प्रभाव। मेरा सपना उन्नत भारत में कल आपको जानकारी दी जाएगी नशा मुक्त भारत अभियान के विषय में, समय रहेगा कल शाम 5:00।

और कल शाम 5:15 पर सुनिएगा युववाणी, जिसमें कला आकर्षण का केंद्र होंगे मुझे तो जाने कुछ खास है आज ये शाम गजलों के नाम, यंग अचीवर्स और रहस्य सीरीज, साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का भी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 5:15 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारे युवा साथियों का मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युवाणी में। और मैं आपकी वन ऑफ द होस्ट और दोस्त वाणी कौशिक,
1: और वाणी के साथ हाजिर हूँ स्टूडियो में मैं आपकी अपनी दोस्त उज्मा। एक बार फिर आ गए हम आपकी शाम की चाय में एक चटपटा सा तड़का लगाने।
0: उज्मा, टाइम भी देखो ना, कितनी जल्दी जल्दी निकल जाता है।
1: हाँ, लेकिन तुम ये बात आज क्यों याद कर रही हो, जरा ये बताओ।
0: क्योंकि उज्मा, तुम्हें याद होगा जब स्कूल में कंप्यूटर का पीरियड हुआ करता था तो हम कितने खुश हुआ करते थे कि आज तो भाई स्क्रीन से आमने सामने मुलाकात होगी।
1: हाँ, और वाणी, तब हमारी मुलाकात किताबों की खुशबू से होती थी, है ना? और अब तो सारा दिन मोस्टली लोग स्क्रीन से ही मुलाकात करते हैं।
0: हाँ उज्मा, इसीलिए तो मैंने कहा कि वक्त का पता नहीं चलता। साइंस ने अब देखो कितनी तरक्की कर ली है, हर बच्चे के हाथ में फोन होता है, मुलाकात सिर्फ स्क्रीन से ही होती है।
1: हाँ, अब तो इस बात से तुम्हारी वाणी मैं भी एग्री करती हूँ।
0: चलो वाणी, वो चलो उज्मा, ये बात तो होती ही रहेंगी। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम में अनाउंस करते हैं थर्सडे का स्पेशल सेगमेंट, यानी कि नॉन फिल्मी चार्टबस्टर।
1: बिल्कुल, अब वानी हमें प्रोग्राम में आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। भाई देखो, तुमने अपने आप को ही आगे बढ़ने को तो अभी कह दिया था चलो वानी, है ना? तो जिसमें हम अपने दोस्तों को बता देते हैं कि दोस्तों हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हम आपको सुनवाएंगे ऐसे गीत जो किसी मूवी के नहीं होंगे।
0: जी हाँ, वो सॉन्ग्स होंगे, एल्बम सॉन्ग्स, जो आपकी शाम को एकदम नायाब बना देंगे और
1: बिल्कुल,
0: आपकी जुबां पर रात तक घर कर जाएंगे। तो चलो उज्मा, इसी के साथ प्रोग्राम में शामिल करते हैं हमारा सबसे पुश्तैनी सेगमेंट।
1: बिल्कुल, यानी बूझो तो जाने, जिसके अंतर्गत हम अपने लिसनर से करते हैं एक सवाल। और आज का सवाल है,
0: किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? और दोस्तों, सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, जाना होगा दौड़ के हमारे FB पेज के कमेंट सेक्शन में और लिख देना होगा अपना सही जवाब।
1: तो वाणी जी के साथ चलते हैं। जैसा भी आपने कहा ही था वाणी जी कि चलो वाणी, तो वाणी को ले चलते हैं गुफ्तगू, हमारे जो गुफ्तगू की तरफ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले

नाशे किस्साए मोहब्बत बड़ी लंबी कहानी। मैं जमाने से नहीं हारा, बस किसी की बात मानी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10

0: है।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
5: हो जाओगे आसास कर लोट पोट,
4: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
6: और डोज में क्या है?
5: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
7: अरे क्या हो गया भैया, इतना उदास क्यों बैठा?
8: अरे अक्कू यार, तुझे क्या ही बताऊं, चल छोड़।
7: अरे ना ना, बता बता, बांटने से दुख हल्का हो वो।
8: अरे यार, कोई भी लड़की मुझे घास नहीं डालती।
7: अरे तो इसमें निराश होने वाली बात क्या है, मुझे तो यूँ ना समझ आता।
8: यार तू ये बता, मैं क्या करूँ, सच में मुझे कोई लड़की घास नहीं डालती।
7: अबे भैया, वो तुझे घास क्यों डालेगी, तू गधा थोड़ी इंसान है।
5: जी हाँ, मजा आ गया।
9: भीड़ में खो जाना तो बस एक बहाना है, असल उदासी तो तब होती है जब इंसान खुद को ढूंढना भूल जाता है। एलियनेशन तब होता है दोस्तों, जब इंसान दुनिया से नहीं खुद से दूर होता है।
10: वानी, मतलब हम तो कुछ खास है आज शामिल करने वाले थे ना प्रोग्राम में, कि तुम क्या ले आई हो भाई?
9: अरे उज़्मा, यही तो है आज का हमारा टॉपिक। एलियनेशन तब होता है जब इंसान दुनिया से नहीं खुद से दूर होता है।
10: अच्छा, वैसे बात तो बिल्कुल सही है ये तुम्हारी।
9: हम अक्सर सोचते हैं कि अकेले रहना या लोगों से कट जाना अलगाव होता है,
10: पर सच तो है वानी कि जब तक आप अंदर से खुद से जुड़े हैं ना, तब तक आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते, है ना?
9: हाँ, वैसे मुश्किल तो तब होती है जब हम अपने लिए ना बोल पाए और ना दुनिया से लड़ पाए, क्योंकि सच बताऊं अंदर से ही हमारे अंदर वो शक्ति नहीं होती।
10: बिल्कुल, इसीलिए ना वानी हमें खुद से जुड़े रहना चाहिए।
9: इसीलिए तो कहा है एलियनेशन तब तक नहीं होता जब तक इंसान खुद से जुड़ा है।
10: बिल्कुल। अरे भाई तुम,
9: लेकिन उज़्मा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इसका सबसे अच्छा तरीका है रोज जर्नल लिखना।
10: अरे अरे अंग्रेजी की मैम, जरा आप इसे सही से समझाएंगी, ये है क्या?
9: जी हाँ उज़्मा, सही से समझा देते हैं और हमारे लिसनर्स को भी बता देते हैं। जर्नल लिखने का मतलब कि रोज डायरी लिखना, खुद से बात करना।
10: हाँ ये बात तो सही है, उससे अपना मन भी हल्का हो जाता है।
9: और उज़्मा एक बात बताऊं, जिस दिन तुमने लिखना शुरू कर दिया, जिस दिन कलम उठाकर पेन पर लिखना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हें ही नहीं पता चलेगा कि मन से ऐसी ऐसी बात पेपर पर आ जाएंगी जो तुम कभी सोचती भी नहीं थी।
10: चलो फिर ठीक है, तुम्हारी इसी बात पर ना मैं भी जरूर ट्राई करूंगी।
9: जी हाँ दोस्तों, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और कुछ खास है आज में बस इतना ही, और आप सबके लिए एक संदेश कि कभी भी अकेला महसूस करें तो पेपर से और अपनों से जरूर बात करें।
10: तो पेन और पेपर से मुलाकात तो कुछ खास है आज में हो गई, अब मुलाकात कर लेते हैं अपने एक मेहमान से अपने सेगमेंट गुफ्तगू बस यूं ही में, जिसमें आज आप सुनेंगे एहसन से रुमान की बातचीत। तो चलिए दोस्तों, आप और हम भी मिलकर सुन लेते हैं आखिर इन लोगों की क्या बातें हुई।
11: तो स्वागत है आपका गुफ्तगू बस यूं ही में, जिसमें आज हमारे बीच मौजूद है एक मेहमान। तो सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
12: माय नेम इज सैयद हसन ज़ैदी एंड आई एम फ्रॉम धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी।
11: अहसन कैसे हैं आप?
12: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
11: हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज गुफ्तगू बस यूं ही में हम जनरली गुफ्तगू करने वाले हैं अहसन के साथ में। तो अहसन आजकल क्या कर रहे हैं आप?
12: राइट नाउ आई एम परस्यूइंग BBA जनरल फ्रॉम शोलन यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश।
11: सोलन हिमाचल प्रदेश से आप BBA कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्सिटी आपने पहले से सजेस्ट कर रखी हुई थी या लोकेशन देख कर आपने इसी यूनिवर्सिटी को चूज किया?
12: ये दोनों चीज़ें थी इसमें, सजेस्ट भी थी और लोकेशन भी देख रखी थी हमने, क्योंकि हमारे भाई वहाँ से पास आउट हैं एक, उन्होंने बताया था हमें इसके बारे में।
11: अच्छा, तो आपके भाई ने आपको सजेस्ट किया था, लोकेशन देखने के बाद आपने सोचा चलो यहीं ले लेते हैं, अगर पढ़ाई नहीं भी हुई तो घूमने निकल पड़ेंगे।
12: जी ऐसा ही था कुछ।
11: हाँ हम समझ सकते हैं, क्योंकि सोलन की जो लोकेशन है वो मैंने बहुत तारीफ सुनी है उसकी, कि बहुत प्यारी सी पहाड़ों के बीच में बसी हुई एक सिटी है जो कि हर वक्त जगमगाती रहती है।
12: सोलन बहुत ज्यादा फेमस जगह है, दे आल्सो नोन एज मशरूम सिटी।
11: ओ तो आपने खाए हैं मशरूम वहाँ पर?
12: बहुत खाए हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे लगते हैं।
11: और कैसे चल रहा है आपका BBA का सफर, कैसे चल रही है आपकी स्टडीज और कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका?
12: स्टडीज अच्छी चल रही है, हमारा सेमेस्टर 5th चल रहा है, मतलब शुरू होगा, 4th का रिजल्ट आ चुका है।
11: तो आपने कोई एग्जाम दिया था, एंट्रेंस एग्जाम? बेसिकली
12: एंट्रेंस एग्जाम होता है और वो

0: अरे आप जब उस पर जाएंगे शुल्नी की वेबसाइट पर, तो आप जब उसका एडमिशन फॉर्म में जाएंगे तो आपका काउंसलर से कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा।
1: ओ, तो आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपने वहां पर एडमिशन लिया था। तो जैसे हमारे जो लिसनर्स हैं आज हमें सुन रहे हैं, अगर वो वहां उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन कब ओपन होते हैं बीबीए के लिए और क्या प्रोसेस होता है, तो एक बार जरा हमारे लिसनर्स को बता दीजिएगा।
0: एडमिशन ओपन है, जून एंड जुलाई में ही होते हैं एडमिशंस, और अगस्त से कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस होती हैं।
1: आप ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं?
0: जी बहुत रखता हूँ शौक, मैं घूमता रहता हूँ वहाँ पर भी आसपास।
1: वो तो हमें पता था कि आपने एडमिशन वहां पर क्यों लिया है, हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए आपने एडमिशन लिया है। तो कौन कौन सी डेस्टिनेशन है जो आप कवर कर चुके हैं अब तक?
0: मैंने अपने पास पास की डेस्टिनेशन देखी हैं, जैसे कि गिरिपुल हो गया और कसौली और नाहन, बहुत सारी जगह हैं वहाँ पर आसपास घूमने के लिए।
1: तो सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह कौन सी लगी आपको अपनी?
0: गिरिपुल बहुत फेवरेट जगह है मेरी, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, रिवर है, बहुत अच्छे हैं वहाँ पे।
1: ये बात तो है। वैसे पहाड़ों के बीच में जब नज़ारा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, जैसे कि नदी बह रही होती है, झरना भी देखने के लिए मिलता है। आई थिंक ग्रिपुल में होगा।
0: बहुत ज़्यादा है वहाँ पर हैं बहुत अच्छे अच्छे झरने हैं, और वहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छी है।
1: और आपको सॉन्ग सुनना पसंद है?
0: हाँ जी बहुत।
1: कौन कौन से आर्टिस्ट के सॉन्ग आप सुनते हैं, किस तरह का म्यूजिक आपको पसंद है?
0: मोस्टली पंजाबी एंड बॉलीवुड।
1: अपना कोई फेवरेट सॉन्ग बताइए जो आज हम अपने लिसनर्स को सुनवा सके।
0: दूरो दूरो
1: ठीक है, हम वो ही गाना अभी अपने लिसनर्स को सुनवाएंगे। इतने आप जरा हमें बताइए कि बीबीए करने के क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, अगर कोई हमारा जो ऑडियंस है वो अगर बीबीए करें तो वो आगे क्या क्या कर सकते हैं अपने करियर में?
0: बीबीए प्रोवाइड मल्टीपल ऑप्शंस, लाइक यू कैन गेट सेल्स, HR एंड बहुत सारी उसमें आपकी फील्ड मिल जाती है। आप उसके बाद आपके MBA करेंगे तो आपका जो पैकेज होता है वो इनहेंस होता है।
1: और ये जो बीबीए करने का आइडिया आपके जहन में आया, वो कहाँ से आया?
0: ये हमारे भाई ने बताया हमें इसके बारे में, क्योंकि फ्यूचर जो है आप AI एंड BI पे वो करता है, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
1: तो बीबीए में आपका कोई पर्टिकुलर एआई से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है?
0: बेसिक एप्टीट्यूड उसमें पाइथन होता है हमारा
1: ओके, तो वो बीबीए में आपको कोडिंग वगैरह भी सिखाते हैं?
0: जी, पाइथन लैंग्वेज है हमारी।
1: अच्छा, दरअसल ये देखने में आता है कि बीबीए जो होता है वो लैंग्वेज बेस्ड कोर्स होता है इन कंपैरिजन टू बीसीए।
0: जी
1: तो आपका जो 12th रहा है वो किस स्ट्रीम से रहा है?
0: मेरा जो 12th रहा है वो PCB से रहा है, मतलब मींस साइंस।
1: अक्सर जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली पीसीबी वाले, वो नीट को ऑप्ट करते हैं और 2-3 साल तक नीट की कोचिंग करते हैं। क्या आपका डॉक्टर बनने का कोई ख्वाब नहीं था? आपने बीसीए भी नहीं किया, आपने बीबीए चूज किया?
0: अच्छा, मीन हमें इस टाइम पे मतलब ऐसा लगा था कि अगर मैं साइंस उसमें साइड में जाता हूँ, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उसमें रश था, बहुत पब्लिक घुस रही थी उसमें, तो इसलिए मैंने सोचा ये ले लेते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस।
1: सही है, तो आपका आगे का जो आपका विजन है वो बिल्कुल क्लियर है।
0: जी
1: आगे आप बीबीए के बाद जॉब प्रेफर करेंगे या फिर एमपीए या आगे मास्टर्स के लिए जाना चाहेंगे?
0: मैं अभी तो करंटली मैं जॉब प्रेफर करूँगा, क्योंकि मुझे एक साल का एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर उसके बाद मैं जब MBA करूँगा तो मुझे पैकेज इनहेंस होकर मिलेगा, उसका मुझे फ़ायदा होता है।
1: तो आप अभी जॉब प्रेफर करेंगे, बहुत सही है। तो दोस्तों आज तो हम मिले एहसन से। एहसन, हमारे दोस्तों के लिए कोई गाइडेंस या एक टिप जो आप देना चाहते हैं उन्हें?
0: तो मैं एक ही टिप देना चाहूँगा, चूज़ वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, अपने आप से जो आप करना चाहते हैं वो चूज़ करना चाहिए इंसान को, किसी और के उस पर नहीं।

0: सही करियर ऑप्शंस चूज करें दोस्तों। तो एहसन, आपको आज हमारे साथ जुड़कर कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा लगा, ये मेरा पहला इंटरव्यू है।
0: हमें भी आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर

0: पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: ए वेटर, इधर आओ।
4: ये कोई प्रॉब्लम
3: नहीं, तुम ये सूप चखो।
4: हम ऐसा नहीं कर सकते।
3: आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम ये सूप चखो बस।
4: अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम

0: प्लीज देख लीजिए।
1: चखो।
0: ठीक है, लाइए चम्मच, किधर है?
1: हाँ, अब किया ना असली सवाल, कहाँ है चम्मच, कब लाया तू, चल चम्मच लेके आ।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
0: तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे अपने एक और रहस्य भरे सेगमेंट की ओर। और मेरे कहने से आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ अपने अगले सेगमेंट रहस्य सीरीज की, जिसका आ चुका है सीजन 2। और उसमें आज आप सुनेंगे कहानी भूल भुलैया, जिसका है आज एपिसोड नंबर 1,
1: जिसका आलेख किया है हमारे ही एक बहुत प्यारे प्रेजेंटर आदिल ने।
3: हाय, मेरा नाम आदिल है, आदिल सैफी, और आप सभी लिसनर्स का स्वागत है हमारे रहस्य सीरीज के सीजन 2 में। इस कहानी का नाम है भूल भुलैया। डर डर कभी चीखता नहीं, वो बस खामोशी से इंतजार करता है उस एक पल का जब आप खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझते हैं। सबसे बड़ा खौफ मौत का नहीं होता, बल्कि उस अनजाने पल का होता है जब आपको पता हो कि अंधेरे में कोई आपको देख रहा है, पर आप उसे नहीं देख सकते। इंसान को सबसे ज्यादा डराती है वो आहट, जो पीछे से आती तो है लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। इसी डर का एक्सपीरियंस करेंगे हम, और ये कहानी आपको आखिर तक जोड़े रखेगी। ये है रहस्य सीरीज की पहली कड़ी, यानी एपिसोड नंबर 1।

9 अगस्त साल 2008, राजस्थान के पोखरान गांव में एक किला मौजूद था, या कह सकते हैं एक राजमहल। राजवेली बेहद ही खूबसूरत थी। महल के अंदर बेहद ही खूबसूरत नक्काशी की गई थी। उस महल के अंदर गार्डन वगैरह सभी तरह की सहूलियत थी। चाही परिवार अभी भी उस हवेली में अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था। गोवर्धन सिंह राजपूत वहां के कुंवर थे। सभी गांव के लोग उन्हें राजा साहिब कहकर बुलाते थे। अब उस तारीख से 3 दिन बाद यानी 12 अगस्त सन 2008 को रात के समय में वहां पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाना था। दरअसल वो पार्टी गोवर्धन सिंह अपने बेटे के वापस विदेश से लौटने की खुशी में ऑर्गेनाइज कर रहे थे। 4 साल पहले गोवर्धन सिंह का बेटा राजवर्धन सिंह अमेरिका अपनी पढ़ाई के लिए गया था और अब 4 साल बाद राज अपने घर वापस लौट रहा था अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। उन दिनों हवेली में काम काज जोरों शोरों पर था। पार्टी ऑर्गेनाइजर्स को बुलाया गया, एक से एक पकवान बनाए गए, राज्य के मंत्री और सभी अमीर और वीआईपी लोगों को इनविटेशन दिया गया। लेकिन गोवर्धन सिंह को कुछ बहुत अजीब लग रहा था। राजा साहब को फील हो रहा था कि शायद कोई उन पर नजर रख रहा है, लेकिन राजा साहब उन सभी बातों को अनदेखा कर देते थे। पर क्या सच में कोई वहां पर मौजूद था जो उन पर नजरें रख रहा था? क्या कोई अनहोनी थी जो उनके साथ होने जा रही थी, या कोई और वजह थी? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब रहस्य सीरीज के आगे आने वाले एपिसोड में। सो हमारे युवाणी प्रोग्राम तो सुनना ना भूलें।

0: दोस्तों आज है हफ्ते का चौथा दिन, यानी कि लव स्टोरी का भी चौथा दिन, जिसका टाइटल है चित्रलेखा। तो एंजॉय कीजिए हमारे साथ हमारी ये लव स्टोरी चित्रलेखा।
1: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे, ये धड़कने लगे, है अजब सी चाहत का असर। दिल तड़पने लगे, हम तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।

मारगिरी और चित्रलेखा के बीच बढ़ती नजदीकियों ने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया था। वर्षों से तपस्या में लीन कुमारगिरी अब अपने ही मन में संघर्ष कर रहे थे। दूसरी तरफ बीजगुप्त अब सब कुछ समझते हुए भी शांत था, लेकिन अब हालात ऐसे मोड़ पर आ चुके थे जहां किसी का भी जीवन पहले जैसा नहीं रहने वाला था। समय के साथ कुमारगिरी का संघर्ष और बढ़ता गया। वे बार बार अपने मन को समझाने की कोशिश करते, लेकिन चित्रलेखा की याद उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा योगी क्यों ना हो, वो अपने मन से पूरी तरह नहीं जीत सकता। एक दिन चित्रलेखा उनसे मिलने आई। बातचीत के दौरान कुमारगिरी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अपने जीवन पर पछतावा होता है? चित्रलेखा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, पछतावा मुझे अपने फैसलों पर नहीं होता, लेकिन लोगों के फैसलों पर जरूर होता है। लोग बिना जाने किसी को भी अच्छा या बुरा कुछ भी कह देते हैं। उसकी ये बात कुमारगिरी के दिल में उतर गई। उन्हें महसूस हुआ कि जिस स्त्री को समाज सिर्फ एक मृतकी के रूप में देखता है, उसके विचार कितने गहरे हैं। इसी बीच कुमारगिरी ने चित्रलेखा से एक ऐसी बात कही जिसने उसके मन में संदेह पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजगुप्त का जीवन अब बदल चुका है और शायद उसके मन में पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। चित्रलेखा ने उनकी बात सुन तो ली, लेकिन उसका दिल इसे मानने को तैयार ही नहीं था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा, क्या सचमुच बीजगुप्त का प्रेम बदल गया है? दिन बीतते गए, लेकिन ये सवाल उसके मन से नहीं निकला। आखिरकार उसने सच्चाई जानने का फैसला कर लिया। उस रात उसने विशाल देव को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे सच जानना है। मैं जानना चाहती हूँ कि बीजगुप्त के मन में आज भी मेरे लिए वही भाव है या नहीं। विशाल देव उसकी बात सुनकर चौंक गया। चित्रलेखा अब किसी भ्रम में नहीं जीना चाहती थी, उसे सच्चाई चाहिए थी, चाहे वो उसके पक्ष में हो या उसके खिलाफ। लेकिन क्या कुमारगिरी ने उससे पूरी सच्चाई कही थी? क्या बीजगुप्त का प्रेम सचमुच बदल गया था, या फिर चित्रलेखा किसी बहुत बड़े भ्रम का शिकार हो चुकी थी? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको अगले और अंतिम भाग में, जो आप सुनेंगे कल यानी शुक्रवार को।

0: दोस्तों एक बार फिर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आज आप देख ही रहे हैं कि आज नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर के कुछ और भाई भी बहुत ज्यादा प्रोग्राम में शामिल हो रहे थे, यानी कि हमारे कुछ ऐसे सेगमेंट्स जैसे रहस्य और गुफ्तगू। तो हमारा नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर हमसे नाराज ना हो, इसलिए प्रोग्राम में शामिल करते हैं आज नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर का दूसरा गाना।
1: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

0: वेलकम बैक दोस्तों। उसमें देखो, आज नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर के अंदर जितने भी गाने हैं उनमें जुबिन जैसे आर्टिस्ट ने बहुत चार चांद लगाए हैं। आज हमसे हमारा कोई लिसनर निराश नहीं होगा।
1: बिल्कुल, ये बात तो तुमने वाणी बिल्कुल ठीक कही। अब तुमने अपने फेवरेट सिंगर का तब जिक्र कर ही दिया है, तुमने उन्हें शामिल कर लिया है, तो भाई मैं तो अपने जो मेरे फेवरेट दोस्त हैं उनका नाम शामिल करना बिल्कुल नहीं भूलूंगी।
0: कैसे शामिल करोगी?
1: कितनी भुलक्कड़ हो तुम।
0: अरे समझ गई समझ गई। तुम बूझो तो जाने के अंतर्गत हमने अपने लिसनर से जो सवाल किया था उसका जवाब में उनके नाम शामिल करोगी।
1: बिल्कुल
0: तो आज का सवाल क्या था उसमें?
1: दोस्तों, हमारा आज का सवाल था, किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है?
0: जिसका सही जवाब है
1: अंटार्कटिका। और सही जवाब देने वालों के नाम है देवशंकर। और इसी के साथ हमें दोस्तों हमारे एक दोस्त ने और जवाब दिया है, जो कि है नानक खन्ना, दिग्दर्शन गौड़, संजय डिंगिया, ताज अंसारी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, मुजफ्फर अली खान, विजय सुरेलकर, अनिल विनोचा, नदीम बाकी, गुरमीत सिंह मीता और जॉन डी कैस्ट्रो, गंगा सिंह रावत, राजेश वर्मा, अंजना कुमार सिंह और नरेंद्र शर्मा, फागुराम यादव, भुवन प्रकाश, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लाल मोहम्मद अंसारी, राजेश कुमार वर्मा, मोहम्मद सईद अब्बासी, सैमुअल कमर राही, मोहम्मद कलीम अंसारी, वरेंद्र। इसी के साथ हमारे एक और दोस्त हैं जिनका नाम है बी कमल,

और उत्तम कुमार भगत। दोस्तों, अब हम अपने लिसनर्स का नाम अभी और प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उससे पहले चलवाते हैं नॉन फिल्मी चार्टबस्टर का एक और गाना।

0: दोस्तों अभी हमारे कुछ और दोस्त बाकी थे जिनका नाम अभी रह गए थे, उनमें हमारे दोस्त शामिल हैं निसार सलमानी, सदाशिव थोरात, कैलाश आफताब अंसारी, राजकुमार दूधी, प्रवीण चौहान, गजानन येले, अनिल बी गोडके, जगदीश धाकड़, और हमारे दोस्त हैं आकाश रस्तोगी, अल्ताफ हुजरे, मोहम्मद यासीन अनजान, सत्येंद्र, और इसी के साथ है शारुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, उमेश कुमार गौरव, सुरेश, और इसी के साथ हमारे एक और दोस्त हैं जिनका नाम है धीरज भाई राबड़ी, मुकेश कश्यप और मिसबा शमशी।
1: दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम, हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए भी बता सकते हैं, और खत के लिए हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम युवाणी अनुभव द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763,
0: और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद, साथ ही हमारे पुराने प्ले कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर सुन सकते हैं।
1: आप सभी हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन जरूर बजा लीजिए। इसी के साथ आपके साथ ही वाणी कौशिक
0: और उस्मा को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।
1: और दोस्तों प्रोग्राम यहाँ खत्म नहीं होता है, हम जाते जाते अपने नॉन फिल्मी चार्ट बसर का एक नगमा आपको जरूर सुनवाएंगे। नमस्कार।

0: हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जब किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक है। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है, 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदांबी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है हमारे किसान भाई बहनों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सब बहन भाइयों को आपके भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू
1: और आपके भैया अंकित कुमार की
0: राम राम।
1: और झुमरू भैया कैसे हाल चाल है थारे?
0: वाह भाई देखो हमारे हाल चाल तो ठीक है भाई, तुम बताओ अंकित भाई कैसे हाल चाल है?
1: भैया ठीक है हमारे हाल चाल भी। और बताओ थारी खेती बाड़ी कैसी चल रही?
0: अरे बस खेती बाड़ी की मत ना पूछो भैया।
1: क्यों भैया?
0: भाई वो समझ लो कि खेती का तो नाम आते तो ही जो ना अरे कपड़े पसीने में तर बतर हो जाए भैया।
1: देखो भैया पसीने में तो तर हो गई गर्मी जो हो रही इतनी।
0: भाई गर्मी बहुत हो रही है भाई, वो समझ लो कि दिल निकलता ही पसीना साना शुरू हो जाए भैया।
1: बिल्कुल।
0: और खेत तक पहुंचते हुए जो ना कपड़े पसीने में तर हो जाए भाई।
1: भैया काम ऐसा हो रहा, कपड़े पहनते तो गिल्ले हो जाए और निकालते ही सूख जाए।
0: भाई देखो बात योग्य मौसम है गर्मी का, और यो जो गर्मी का भैया मौसम होता है भाई आप इसे यो समझ लो कि बिल्कुल यो पीक टाइम है भाई। जो जून का महीना होता इसमें सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सबसे ज्यादा तापमान,
1: बिल्कुल भैया
0: उमस, लू, तो यानी कि भयंकर जो भैया गर्मी होती है वो इस महीने में होती है। और क्योंकि भैया उसके बाद जो भैया ठंडी ठंडी फुहारों का महीना आता है, जो मौसम भैया बरसात का आता है, तो उसके तो भैया कहने क्या।
1: बिल्कुल भैया देखो वो नजदीक समय आने वाला है, जल्दी ही बारिश के मजे हमारे किसान भाई लेंगे। और भैया अपनी जो फसल है उन्हें पानी लगेगा, फसल हमारी अच्छी लहरा में खेतों में, और कितना अच्छा लाभ भी मिलेगा।
0: भाई देखो बात यो कि बरसात तो आने वाली है, लेकिन भैया बरसात आने से पहले भैया हमें कुछ तैयारी भी करनी है
1: बिल्कुल भैया। देखो
0: भैया ऐसा ना हो कि एक दिन अचानक से बारिश शुरू हो गई,
1: हाँ हाँ
0: बरसात का मौसम शुरू हो गया और हम यू कहें अरे हो अभी तो भैया डॉल भी ना लगी, अभी तो भैया मट्टी भी ना लगी, और अभी तो भैया हमारा खाद भी ना बिखरा। तो भैया देखो हमें पहले से काम की तैयारी लेकर चलनी है।
1: बिल्कुल भैया देखो जो हमारे किसान भाई की जो पेड्डी गन्ना है या नौला गन्ना है, गन्ने में गूल चढ़ाने का काम हमारे किसान भाइयों को बारिश से पहले कर लेना है।
0: भाई देखो मट्टी चढ़ाने का काम इस टाइम पर चल रहा है, और जो हमारे जागरूक किसान भाई है जो वो जो है इस काम को निपटा चुके हैं, और इस टाइम जो भैया मट्टी लग रही है भैया वो लग रही है जो हमने पछेत्ती बुआई करी है
1: बिल्कुल
0: गेहूं काटने के बाद में। तो भैया उस गन्ने में भी अब हमारे किसान भाई धीरे धीरे भैया मट्टी लगा रहे हैं, गुल लगा रहे हैं। और भाई मट्टी चढ़ाने का यानी गूल लगाने का फायदा बहुत हो भैया।
1: देखो भैया एक तो पौधे को जो हमारे सहारा मिलता है, जो हमारी गन्ना है वो गिर जाता है, उस हमारी जो फसल को नुकसान होता है वो बच जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और भैया देखो कल्लों की संख्या अच्छी होती है, कल्ले अच्छे निकलते हैं, और भैया जो हमारी जड़ है ना उसका विकास भी बहुत अच्छे से होता है।
0: और भैया देखो जब हम भैया मट्टी लगा वहां तो जो बीच के भैया घास फूस हो, जो खरपतवार हो भैया वो भी नष्ट हो जा, और जो पौधे के आसपास भैया घास फूस हो ना तो वो भी मट्टी में दबको नष्ट हो जा।
1: बिल्कुल भैया एक एक काम हो रहा भैया भैया उसमें नमी संरक्षण भी बहुत अच्छा हो।
0: भाई देखो जब नालियां खिंच जाहा और नालियों में पानी जो हो लगता है, नालियों में पानी भर जाहा, तो लंबे समय तक भैया हमारे खेत में नमी बनी रहे।
1: हाँ हाँ
0: और एक फायदा और भी होता है भैया।
1: क्या भैया?
0: भैया जिस खेत को भरने में जो भैया हमारा समतल खेत होता,
1: हाँ हाँ
0: आप ये समझ लो अगर 2-2.5 घंटे का समय लगता है,
1: हाँ
0: तो वो खेत हमारा भैया आधा घंटा पहले ही 2 घंटे में भर जा।
1: बिल्कुल
0: यानी कि भैया नालियों पानी आर पार होया और छुट्टी भैया,
1: बिल्कुल भैया
0: है ना।
1: भैया कुल मिलाकर बात यू निकल कर आओगी भैया सो उपज में बढ़ोतरी हो जाए।
0: तो भाई देखो सबसे बड़ा फायदा तो ये हो गया भैया फसल हमारी गिरती नहीं है, है ना। और फसल गिरती नहीं है और भैया उसमें अगर फसल गिरेगी नहीं तो हमारा उत्पादन बढ़िया होगा, बढ़वार अच्छी होगी, और चूहों से नुकसान भी नहीं होने का,
1: और भैया गुणवत्ता भी बहुत अच्छी रहेगी।
0: और गुणवत्ता बढ़िया रहती है। साथ ही में देखो हमने और हमारे बहन भाइयों ने यो भी महसूस किया है और वैज्ञानिकों ने भी इस बात को बताया है कि भैया जिस खेत में हम मट्टी लगाते हैं यानी कि गूल हमारी लगी होती है, तो पौधा गन्ना काटने के बाद में यानी कि नौलख को काटने के बाद में जब पेड़ी का ब्यांत होता है,
1: हाँ
0: तो जिस खेत में मट्टी लगी हुई हो भैया उसमें ब्यांत बहुत बढ़िया हो।
1: बिल्कुल भैया भैया उसमें ना जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है, और जो जड़ों में हमारी जो मिट्टी हो या ऑक्सीजन लेती हो उसमें वो अच्छे से हो जाता है।
0: और भैया आपने एक चीज और भी देखी होगी,
1: क्या भैया?
0: बच्चे तो हम ट्रैक्टर से मट्टी लगामो,
1: हाँ
0: या भैया हल बैल के माध्यम से मट्टी लगामो,
1: या फावड़े से लगामो।
0: या कुछ हमारे ना फावड़े से भी लगामो, उसमें आपने देखा होगा कि बारीक बारीक से जो नस्से फैल जाना भैया,
1: हाँ हाँ
0: तो नस्से कटते हैं, और उन नस्सों के कटने से भैया जो हमारी अवांछित जड़ फैल जाए उनके कटने से भैया बढ़वार बहुत बढ़िया होती है,
1: बिल्कुल भैया
0: वानस्पतिक वृद्धि होती है, और इससे बहुत फायदे भैया।
1: बिल्कुल भैया।
0: तो देखो भाई, हमें जो है मट्टी लगाना काम करना है, गूल हमें लगानी है भाई, चाहे हम किसी भी तरीके से लगाओ, भाई ट्रैक्टर से लगाओ या भैया हल बैल से लगाओ
1: या फावले से लगाओ
0: या भैया फावले से लगाओ, लेकिन भैया हम इस काम को बरसात शुरू होने से पहले पहले निपटाना है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि भैया बरसात जब हो जाती है, आपने भी देखा होगा, क्योंकि सूखी मट्टी जो हम काटते हैं फावड़े से लगाते हैं, चाहे भैया फावड़े की बात हो या भैया हल बैल की बात हो, सूखी मट्टी आराम से लग जा।
1: और भैया जो गिल्ली मट्टी रहती है वो चाहे फावले से लगाएं या हल बैल से लगाएं भैया, उसमें चिपकती रहती है
0: वो चिपकती रहती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। और भैया अगर हम ट्रैक्टर से भी लगाओ तो आप यू समझ लो कि भैया डीजल की खपत ज्यादा होती है, खर्च हमारा ज्यादा होता है।
1: बिल्कुल भैया। और भैया उससे कभी कभी ऐसा होता है कि गिल्ली में जो हमारे खेत की हो ना, गिल्ला होने के कारण जो हमारा पौधा गन्ना वो खड़ भी जाता है।
0: उखड़ जा भैया, तो देखो नुकसान बहुत सारे हैं। तो भाई इसलिए हम तो भाई बहन भाइयों से यही कहेंगे कि भैया बरसात शुरू होने से पहले पहले भैया हम इसे निपटा ले, क्योंकि भैया देखो जून के महीने महीने में हमारा काम हो जाओ, और भैया जून में जो ज्यादातर बरसात होती ना, हाँ
1: बिल्कुल।
0: या भैया जून के बिल्कुल अंत में हुआ करो जैक का।
1: और भैया जब बरसात शुरू हो जाए तो फिर भैया टाइम देती ना है कि हम दोबारा मट्टी लगाने का टाइम हो, मिलने का भी ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इन बातों का हमारे किसान भाई ध्यान रखा।
0: और भाई देखो ये तो बातचीत हो रही है और मट्टी लगाने के बारे में किसान भाई जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं
1: और
0: भाई इस
1: लगा
0: काम
1: भी रहे।
0: को लगा भी रहे हैं। लेकिन भैया अब हम करते हैं एक और काम और
1: क्या
0: सुनते
1: भैया?
0: हैं भैया ये कुछ जरूरी संदेश।
1: बिल्कुल भैया।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
5: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
4: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
5: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
4: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
5: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
7: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
8: देश की धरती तो ना उगले, उगले हीरे होती।
6: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
7: खुशहाली का नया प्रयोग।
9: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
0: तो भाई देखो संदेश तो हमने सुन लिया अंकित।
1: बिल्कुल भैया।
0: और भाई देखो आज है भैया इस जून महीने का चौथा गुरुवार।
1: हाँ भैया।
0: और हमारे बहन भाइयों को पता ही है, देखो भैया हर महीने के चौथे गुरुवार को हम बहन भाइयों को सुनवाते हैं नाटक, है ना भाई?
1: और भैया आज कौन सा नाटक सुनवा रहे हैं हमारे किसान भाइयों को?
0: तो भाई देखो मासिक नाटक श्रृंखला के अंतर्गत भैया राष्ट्रीय आपातकाल की घटनाओं पर आधारित नाटक सुनवा रहे हैं काला साया।
1: अच्छा भैया।
0: हाँ, जिसमें भैया आलेख सुवेंद्र सिंह का और वाचन स्वर है आलोक कुमार का।
1: बिल्कुल भैया।
0: तो भाई जब ऐसी बात हो तो भैया आओ सुनते हैं यो नाटक काला साया।
1: बिल्कुल भैया।
10: आज 25 जून है। जी हाँ, 25 जून 2026। देश विकास के पथ पर अग्रसर है। हर भारतवासी 15 अगस्त 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ले रहा है, पर आज अनायास ही उस काले साए का आभास उभर आया है। वे कड़वी यादें मन को और विषैला कर रही हैं, क्योंकि आज 25 जून है और 25 जून 1975 को देश में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया, यानी कि इमरजेंसी लागू कर दी गई। पूरे देश में भय का माहौल बन गया। मुझे याद है उस दिन कैसे हमारे गांव वाले घबरा रहे थे।
0: अब अरे भैया शांत हो, जो इमरजेंसी लग गई, तुम अपने अपने करे करो यार।
11: ये इमरजेंसी क्या है?
12: अरे क्या हो यो?
13: अरे मास्टर साहब तुम बताओ इमरजेंसी क्या हो?
0: अरे पूछो भैया इनसे मास्टर साहब से ही।
12: मास्टर साहब बताओ।
10: भैया रुको मैं बताता हूँ, इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल। सरकार ने आंतरिक अशांति का हवाला देकर इमरजेंसी लागू कर दी है, जिसका मतलब है देश में शांति स्थापित करने के लिए संवैधानिक नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया है भैया।
0: अच्छा, अरे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा मास्टर साहब, हो गया तो हो जाओ।
11: अरे हम तो किसान हैं, हमें तो खेती करनी ना।
14: और इन सब बातों से हमें क्या लेना देना,
1: हमें क्या फर्क पड़ने वाला।
13: हाँ
10: लेना देना है भैया, लेना देना है। हम देश में रहते हैं और हर छोटी बड़ी बात का मतलब है। हमें अपनी आवाज उठाने से वंचित कर दिया गया है। पुलिस कभी भी किसी को भी उठा के गिरफ्तार कर सकती है, जेल भेज सकती है।
0: अच्छा,
10: कोई भी मुकदमा दर्ज कर सकती है। और हम कुछ नहीं कर सकते,
0: अब क्या हो,
10: कुछ भी नहीं कर सकते।
12: मास्टर साहब हमने तो यू भी सुना, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल भेजा जा रहा और नजरबंद भी किया जा रहा।
13: अरे तो बहुत ही गलत बात हो रही है,
12: इसके खिलाफ
13: तो कोई भैया आवाज भी उठानी चाहिए।
0: उठानी चाहिए भैया,
13: बिल्कुल भैया उठानी चाहिए,
0: उठानी चाहिए।
10: अरे भैया इसी आवाज को तो बंद किया जा रहा है, बड़े दुख की बात है। विपक्ष के बड़े बड़े नेता जैसे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन सब पे भैया आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा लगा के गिरफ्तार कर लिया गया है। और हर जगह विपक्षी नेताओं को और सरकार विरोधी व्यक्तियों को जेल में डाला जा रहा है भैया।
0: जेल में डाला जा रहा? अरे कुछ भी ना, यो तो भैया जो चुनाव में हार हुई ना उसकी खुन्नस निकाल ली जा रही है।
13: बिल्कुल। अरे ये सब इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी जी का चुनाव रद्द करने की जो है ये सारी खुन्नस वो निकल रही।
12: अरे भैया भैया लोकतंत्र की हत्या करी जा रही, हत्या।
13: सही कह रहे भैया तुम।
0: अरे भैया जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को दबा जा रहे हो।
13: बिल्कुल।
10: देखो भैया कुछ भी हो सकता है, इस समय सरकार के विरुद्ध खुलेआम बोलना अच्छा नहीं है। ये लोकतंत्र पर संकट का समय है, इसे बड़ी सतर्कता, सूझबूझ और सावधानी के साथ बिताने की जरूरत है भैया, मैं समझा रहा हूँ आपको।
12: बिल्कुल ठीक कह रहे हो मास्टर साहब, और हमें तो यो लग रहा है यो हम जो खुले में बैठक कर रहे हैं यो करनी भी अच्छी ना।
13: सही कह रहे हो। पुलिस आ गई ना तो सबको गिरफ्तार करके ले जाएगी। चलो भैया अपने खेत पे चलना है।
14: भैया चलो भैया चलो
0: भैया
1: ठीक रहेगा।
0: भैया अपने खेत पे चलो, चलो ऐसा बैठना सही ना।
12: सुरक्षित स्थान
0: ढूंढो, कोई सुरक्षा लेगी पुलिस।
14: अरे हमको ठाली थोड़ी, बतेरा काम है हमें भी।
0: और ये तो 500 फैल रही भैया, मेरा तो बैल भी वहां
12: टाइम है भैया काम।
13: मेरे तो मुंजी लगनी गन्ने पे।
14: चलो चलो चलो भैया अपने काम पे कुछ चलो सब।
0: चलो
1: मास्टर साहब मेरे तो मुंजी लगनी, कैसा लगेगी?
0: अरे मुंजी भी थोड़ी लगेगी, बरसात चल हो जान दो पहले।
10: काम सारे हो जाएंगे भैया, घर को चलो।
12: चलो चलो।
14: और सुरक्षित स्थान और देख लो, कोई रेडियो अपने साथ रख लियो, रेडियो सुनते रहियो।
0: और देखे भूल कभी किसी के सामने सरकार की बुराई मत कर दियो।
12: बिल्कुल बिल्कुल
0: है ना,
13: सही कह रहे हैं
0: भैया। इस टाइम को निकालने की जरूरत है,
13: तुरंत हथकड़ी लग जाएगी।
12: एक बात और है भैया।
0: हाँ।
12: सब अपने अपने बालकों को जाकर समझा दियो, कोई सरकार के खिलाफ ना बोले।
1: बस भैया ठीक है, अपनी खेती किसानी में लग रहो चुपचाप।
10: 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति का हवाला देकर आपातकाल देश में लगाया गया। 27 जून 1975 को अनुच्छेद 358 और 359 को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की आजादी और मौलिक अधिकारों से नागरिकों को वंचित किया गया। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा के अंतर्गत पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया। हमारे गांव में भी कुछ ऐसे किसानों को गिरफ्तार किया गया जो निर्दोष थे। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन पुलिस गांव में आती है।
0: तो बस ठीक है प्रधान जी, हमने थारी बात मान ली, फैसला हो गया।
1: हाँ ठीक है भैया, सब अपना अपना ध्यान रखो।
0: हाँ
1: कोई विवाद नहीं होने का
0: तो ठीक है भैया, सही है।
14: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: कोई
14: दिक्कत
0: नहीं है। ठीक कर जा प्रधान जी।
12: पुलिस कैसे आ रही हो? पुलिस आ रही, पुलिस तो
13: भाई। दरोगा जी सुन दो,
12: पुलिस है भैया।
13: अरे कैसे इकट्ठे हो रहे हो? अरे प्रधान जी सब ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही?
11: ये आइए हुस

0: कपूर, ऐसी कोई बात ना, सब ठीक ठाक है, बस मामूली सा विवाद था, निपटा दिया है, कोई गड़बड़ वाली बात ना।
1: फैसला करवा दिया है? ऐसे कैसे फैसला करवा दिया है? अरे हवलदार, उठाओ दोनों को और डालो गाड़ी में, हम बताएंगे फैसला कैसे होता है।
0: अरे हुजूर, कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपस का फैसला था, झगड़ा कोई मामूली सा विवाद था, कुछ बड़े बात
2: नहीं
0: थी।
2: हो गया फैसला बाबूजी।
3: चलो चलो, दोनों बैठो, गाड़ी में बैठो जल्दी। चलो चलो चलो,
2: गाड़ी में बैठो बाबूजी। हो गया फैसला,
3: चलो गाड़ी में बैठो।
4: फैसला बाबूजी, छोड़ो छोड़ो बाबूजी, छोड़ दो।
3: अरे ना ना, गाड़ी में बैठ यार, इमरजेंसी में तुम बताओ है, रगड़े झगड़े कर रहे हैं।
2: अरे ना बाबूजी, हमारी तो फसल भी ना बोएगी बाबूजी।
0: दारोगा जी, ये गांव की बात है, गांव में ही निपटा दी है, इसको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत ना।
1: अरे बैठा दोनों को, अभी देखता हूँ शांति भंग करना है।
3: चलो चलो बैठो, जल्दी बैठो।
5: चलो भैया चलो, बैठो
2: बाबूजी।
5: चलो चलो
2: बाबूजी, प्रधान जी देख लो, हमें बचाओ प्रधान जी।
0: अरे भाई, अब दरोगा जी बात माने तो बचाएं भी, ये तो जबरदस्ती में उठा कर ले जा रहे हैं। चलो भैया, मैं भी तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ।
2: हमारे तो बालक भूखे मर जाएंगे जी, हमारे तो फसल की बोनी भी ना हुई।
0: अरे नहीं नहीं दरोगा जी, ऐसा जुल्म मत करो, ऐसा बिल्कुल मत करो, ऐसी तो कोई बात ही ना, ये तो बेकसूर हैं दोनों, अन्याय हो जाएगा दरोगा जी, अन्याय, छोड़ दो।
1: थाने आइए प्रधान जी, वहीं बात करते हैं, हमें लॉ एंड ऑर्डर का जो पालन करना है, और भाई बहुत सख्त ऑर्डर है हमारे ऊपर। थाने में आइए प्रधान जी, थाने में हम चलते हैं, वही बात होगी।
3: बैठो चलो गाड़ी में बैठो जल्दी। चलो भैया गाड़ी में बैठो।
2: बताओ प्रधान जी।
3: अरे ना ना,
2: अरे फसल की बोनी भी ना।
1: अरे फसल देख रहे हो, चलो बैठो।
2: अरे बैल भूख के मर जाएंगे।
0: चलो भैया चलो, देखेंगे क्या होगा। चलो
3: नहीं नहीं प्रधान जी, आप वहीं रहो, हम तो इन दोनों का मामला, इन
2: दोनों का जुलम हो रहा है।
6: और इस तरह हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, जनता की आवाज को दबाया गया। आपातकाल का सबसे विवादास्पद पहलू था जबरन नसबंदी। हर विभाग, हर कर्मचारी को नसबंदी के टारगेट दिए गए। मुझे भी एक दिन डिप्टी साहब ने अपने ऑफिस में बुलवाया।
7: सर ये फाइल है, मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, ये इस पर आप साइन कर दीजिए, और जो सरकार के द्वारा कुछ टारगेट आए हैं नसबंदी के, इन्हें फाइल करके भेजनी
5: है
7: ऊपर।
5: ठीक है देखते हैं।
6: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ साहब?
5: आइए आइए मास्टर साहब, बैठिए, बताइए कैसा चल रहा है आपका विद्यालय?
6: नमस्कार सर।
5: नमस्कार।
6: सब ठीक ठाक चल रहा है साहब। विद्यालय में बच्चे कुछ कम आ रहे हैं क्योंकि आजकल फसल कट रही है।
5: ठीक है कोई बात नहीं, दो चार दिन की बात है, बच्चे आ जाएंगे। चलिए अब मुद्दों की बात करते हैं। देखिए मास्टर जी,
6: जी
5: नसबंदी अभियान सरकार ने शुरू किया है, हमें भी टारगेट मिला है, इसमें आप सबको सहयोग करना है, दो चार केस आपको भी लाने होंगे नसबंदी के।
6: जी सर, मैं कोशिश करूंगा सर। अच्छा नमस्कार सर।

0: जाओ मुझे भी ले लो भाई। अब हाय रे आज तो नसबंदी हो जाएगी।
1: अब क्या हो गया भाई, मुझे भी ले चलियो। अब क्या हो गया भाई,
0: अब यो कन्या खेत ही मुख बढ़ जाओ। अब वो ताऊ रह गया बैठा हुआ हूँ वो।
2: अरे भैया मैं भी चल रहा हूँ।
3: अरे डॉक्टर साहब यहाँ तो कोई है ही नहीं, लगता है सब छिप गए। नसबंदी से घबरा कर भाग गए।
4: सब छिप गए, नसबंदी से घबरा रहे हैं।
5: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब आसपास ही हैं। देखो नसबंदी से घबराना बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। गांव वालों एक बात आप जरूर समझ लो, सब समझ लेना भाइयों, छोटा परिवार सुखी परिवार, और बच्चे दो या तीन ही अच्छे। हमें परिवार कल्याण अपनाना है और हम दो हमारे दो को सार्थक बनाना है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना
6: भैया? घसीटा डॉक्टर जो ना बहला रिया बहला।
5: अरे बहुत हुई ये बातें, देखो कोई तो होगा भाई। ऐसा है कंपाउंडर साहब, आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं ना?
3: हाँ सुन रहे हैं।
5: कोई तो होगा गांव में, पकड़ो किसी को भी, पकड़ो जो मिलता है उसको पकड़ो और यहाँ लेकर आओ। कैंप में नसबंदी तो उसकी होकर ही रहेगी।
3: ठीक है
6: भैया, चौकसरी
3: डॉक्टर साहब, एक युवक है 17-18 साल का, क्या करे?
5: अरे करना क्या है, पकड़ो बैठाओ गाड़ी में, ले चलो जल्दी से।
3: ठीक है तो
6: डाल दो स्ट्रेचर पर।
3: ठीक है पकड़ो जल्दी जल्दी, ये जल्दी आओ, आप भी आओ भैया, आप भी आओ।
5: अरे कुछ भी हो इसको गाड़ी में डालियो, ले चलिए अस्पताल।
3: अरे बैठो गाड़ी में, बैठो जल्दी।
6: छोड़ दो छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी, मेरी नसबंदी मत करो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
5: अरे शादी तो तेरी हम करा देंगे अंकित, गाड़ी में
3: डालो
5: इसको।
3: अरे चलो ढालो इस गाड़ी में, इतने ड्रामे कर रहा है।
6: तो भैया रहने देना, जाने दो।
4: ले गए
6: लेगा भैया।
4: अरे सुना भैया, जिसकी नसबंदी हो रही है उसे पैसे मिलेंगे या कोई सहायता मिलेगी?
6: ऐसे पैसे राज करो रे,
1: अभी तो उसका ब्याह भी ना हुआ था, उसे ले जाकर क्या करेंगे?
5: देखो भाई सब लोग चौकस हो जाओ, उसे तो उठा कर ले गए, कोई और हाथ तो मत लग जाइए उनके।
6: ये सब बड़ा समझाया पर यू भी अपने आप को मानना ना आता है, अब फिरेगा शहरी उम्र ऐसी।
5: अरे उसे तो ले गए, तुम यू भूल रहे हैं क्या? वो दोबारा ना आने के, वो दोबारा भी आ जाएंगे, तुम चौकस रहो रे।
1: ठीक है भैया, हम चौकस ही रहेंगे।
7: इस तरह दो वर्षों में लगभग 1 करोड़ नसबंदी ऑपरेशन किए गए। इनमें सैकड़ों अविवाहित व्यक्तियों की नसबंदी की शिकायतें मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में नसबंदी को लेकर लक्ष्य को पूरा करने का भारी दबाव था। पुलिस और अधिकारियों की ज्यादतियों और जबरन नसबंदी से ग्रामीणों में आक्रोश और डर का माहौल बन गया था। इमरजेंसी के दौरान प्रेस पर भी सेंसरशिप लागू की गई। समाचार पत्रों में समाचारों के प्रकाशन और रेडियो टीवी पर समाचारों के प्रसारण से पूर्व सरकारी मंजूरी लेना अनिवार्य किया गया था। आपातकाल के दौरान 16 से 20 मार्च 1977 के बीच आम चुनाव हुए। चुनावों में कांग्रेस की हार हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी।
8: ये आकाशवाणी है, पेश है आज के मुख्य समाचार। 6ठी लोकसभा के लिए हुए आम चुनावों में जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए भारी जीत हासिल की है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है।
9: जनता पार्टी
10: जिंदाबाद,
9: जनता पार्टी
10: जिंदाबाद,
9: जयप्रकाश नारायण
10: जिंदाबाद,
9: जयप्रकाश नारायण
10: जिंदाबाद,
9: मुरारजी देसाई
10: जिंदाबाद,
9: मुरारजी देसाई
10: जिंदाबाद,
9: अटल बिहारी वाजपेयी
10: जिंदाबाद,
9: अटल बिहारी वाजपेयी
10: जिंदाबाद।
11: बहन और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते, एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास में फेंक दिया है। और जिनके हृदय में लोकतंत्र के लिए अटूट निष्ठा है और जो सामाजिक समता और आर्थिक बराबरी में विश्वास करते हैं, उन्हें सेवा करने का मौका दिया है। दिल्ली की जनता के हम आभारी हैं।

0: सारी सीटें कांग्रेस के हाथ से छीनकर जनता पार्टी को सौंप दिए। कोई दल कितना भी शक्तिशाली हो मगर 62 करोड़ जनता से अधिक शक्ति नहीं रख सकता। व्यक्ति आएंगे चले जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, नई पार्टियां जन्मेंगी, सरकारें कायम होंगी बदलेंगी, मगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ भारत अपनी सनातन संस्कृति के साथ आधुनिकता का वरण करने के लिए अमर काल तक इस तीर्थ यात्रा में चलता रहेगा।
1: अटल बिहारी वाजपेयी
2: जिंदाबाद,
1: अटल बिहारी वाजपेयी
2: जिंदाबाद,
1: जनता पार्टी
2: जिंदाबाद,
1: जनता पार्टी
2: जिंदाबाद।
3: इस तरह 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटाया गया, साथ ही नई सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा भविष्य में ऐसे आपातकाल न लगाया जा सके कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई। देश में इमरजेंसी को लगे आज 50 साल से ज्यादा हो गए हैं। आज भी इतने लंबे समय बाद उस समय की यादें काले साए की तरह पीछा कर रही हैं।
4: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे मासिक नाटक श्रृंखला के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घटनाओं पर आधारित नाटक काला साया, आलेख सुवेंद्र सिंह और वाचन स्वर आलोक कुमार,
5: और प्रतिभागी कलाकार प्रमोद सिंह, सुवेंद्र सिंह, आलोक कुमार, नरेश पाल सिंह, जितेंद्र कुमार, हिमांशु रंजन, निधि भारद्वाज और अंकित कुमार, निर्देशक अंकित सैनी और प्रस्तुतकर्ता थे शोभित शर्मा।
4: तो भाई देखो नाटक भाइयों ने सुन लिया, और भैया हम अपने बहन भाइयों को बता दें भैया नाटक हमारे कार्यक्रम में भैया हर महीने के चौथे गुरुवार को सुनवाया जाता है।
5: बिल्कुल भैया,
4: तो भाई देखो अगले महीने फिर हम नाटक लेकर आएंगे।
5: बिल्कुल।
4: और भैया अब कर लेते हैं थोड़ी सी और बातचीत भैया।
5: बिल्कुल भैया।
4: भाई देखो हम बातचीत कर रहे थे बरसात की, भाई बरसात आने वाली है और भैया हम बरसात से पहले कुछ तैयारी करनी है।
5: बिल्कुल भैया, देखो हमारे जो पशु हम पालते हैं भैया उनकी पशुशाला होती है, तो भैया उनकी भी हमें देखभाल करनी है। भैया किसी की पशुशाला जो कच्ची होती है तो भैया उसकी सही से मरम्मत हमें करवा लेनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अप्राकृतिक घटना हो जाती है जिससे भैया हमें हानि होती है।
4: अब देखो भैया आपको भी याद होगा पहले कच्ची छत रहती थी और अभी भी भैया कहीं कहीं जो कच्ची छत वाले मकान है।
5: बिल्कुल भैया,
4: और वे बड़े ठंडे रहते हैं, तो भैया अगर हमारे पास में कच्चे छत वाले मकान है तो भैया उसकी मरम्मत करवाना बहुत ही जरूरी है।
5: बिल्कुल भैया,
4: भैया कोई उसकी लकड़ी जैसे भैया सोंट आदि रहते अगर कमजोर हमें दिखाई दे रहा तो भैया उसे बदल देना।
5: बिल्कुल।
4: साथ ही भैया मिट्टी भी उसमें हम डालते हैं छत पर।
5: बिल्कुल।
4: तो भैया मिट्टी डालना काम हमें करना है। और भैया जो हमारे पशुओं की पशुशाला है भैया अगर वो कहीं उसमें गड्ढे हो गए हैं तो भैया उसकी जो फर्श उसे हमें ठीक करना है पशुशाला की जो।
5: बिल्कुल भैया,
4: जो फर्श है, क्योंकि भैया अगर उसमें गड्ढे रहेंगे तो ये बरसात का पानी भरेगा और पेशाब आदि भैया उसमें भर जाएगा, तो इससे भी दिक्कत होती है।
5: बिल्कुल भैया, उसमें मच्छर मक्खी पैदा होंगे और भैया हमारे पशुओं को स्वास्थ्य के प्रति हानि पहुंचाएंगे।
4: बिल्कुल।
5: और भैया एक बात का और ध्यान रखना।
4: वो क्या भैया?
5: भैया हमारे जो इस टाइम गर्मी का मौसम है तो बहुत से हमारे किसान भाई ऐसा कर रहे हैं कि गर्मी में जो अपने डंगर ढोर बाहर बांध दे, और जब बाहर बांधो भैया पशुशाला में बांधते नहीं है तो भैया उसमें गंदगी हो जा, सामान रख दें, तो भैया बरसात से पहले पशुशाला की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी है।
4: बिल्कुल भैया, अच्छे तरीके से साफ सफाई करनी है, उसकी मरम्मत करनी है। और साथ ही भैया एक और विशेष काम भैया हमारे बहन भाइयों करना है।
5: क्या भैया?
4: भैया वो यो करना की भैया हम मानसून से पहले यानी कि भैया और उसके बाद भी हम हो सकता है काम, लेकिन बहुत बढ़िया रहेगा अगर ये मानसून से पहले हो जाए
5: भैया,
4: और वो है पशुओं का टीकाकरण।
5: बिल्कुल भैया, देखो पशुओं का टीकाकरण हम कराना जरूरी है। देखो भैया सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, बीमारी से पहले बचाव जरूरी है।
4: बिल्कुल। और भाई देखो इसमें हमारे जो पशु वैज्ञानिक है वो ये बताते हैं कि भैया बीमारियों से बचाव के टीके साल में 2 बार लगते हैं, यानी कि भैया हर 6 महीने बाद ये टीके लगवाने जरूरी है।
5: बिल्कुल।
4: और जब मौसम हमारा परिवर्तित होता है, अक्सर भैया आपने देखा होगा या तो भैया मानसून से पहले टीके लगते हैं।
5: बिल्कुल भैया।
4: या मानसून के बाद जब जाड़े की ऋतु आने वाली होती है अक्टूबर नवंबर में, उस टाइम भी टीके लगते हैं। तो जब मौसम हमारा परिवर्तित होता है तो भैया उस समय जब मौसम बदलता है तो भैया पशु में टीके लगवाने जरूरी है।
5: बिल्कुल भैया।
4: जैसे भैया FMD यानी कि भैया मुंह पका खुरपका है, या भैया गलघोटू हो, या लंगड़िया बुखार है, तो भैया ये टीके लगवाना पशुओं को बहुत ही जरूरी है।
5: बिल्कुल भैया, अगर हमारे किसान भाई इन सब बातों को ध्यान करेंगे भैया, टिक्के लगवाएंगे, तो भैया उन्हें भी निश्चित ही लाभ मिलेगा।
4: बिल्कुल। और भैया देखो, अपने पशुओं से हम बढ़िया उत्पादन ले सकें,
5: बिल्कुल
4: अच्छा दूध ले सकें भाई, इसके लिए संतुलित चारा देना बहुत ही जरूरी है।
5: बिल्कुल भैया देखो, और संतुलित चारे के साथ साथ भैया उन्हें सुबह शाम दोपहर भैया ताजा पानी भी पिलाना बहुत जरूरी है।
4: हाँ भाई देखो, ताजा पानी पिलाना, और अक्सर इसमें हमारे जो हमारे भाई बहन है वो एक भूल करते हैं।
5: क्या भैया?
4: वो ये हो कि भैया अब जो हो लगभग सभी भाइयों के पास हो जो हो समर सेविल पंप हो, और ऊपर भैया वो एक टैंक भी रखा
5: हाँ,
4: रहे
5: हैं भैया।
4: तो हमारे भाई क्या काम करेंगे, दोपहर बाद, खासकर दोपहर बाद, जैसे भैया वो पशुओं को पशुशाला से बाहर निकाल लेंगे तो उन्हें पानी पिला मांगे, और वो टंकी चला के यानी कि जो भैया वो टैंक वाला पानी है वो अपने पशुओं को पिलाते हैं। और आपने देखा होगा कि टंकी का पानी यानी कि जो उस टैंक का पानी वो बहुत गर्म हो जाता
5: है। बिल्कुल भैया,
4: और गर्मी के मौसम में पशुओं को गर्म पानी पिलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे कि भैया सर्दी के मौसम में रात का रखा है पानी पिलाना ठीक नहीं रहता।
5: बिल्कुल भैया, सर्दी के मौसम में रात का जो रखा है पानी वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता है।
4: हाँ,
5: ऐसे भैया गर्मी का पानी पूरी तरह से गर्म हो जाता है।
4: बिल्कुल, तो भैया गर्मी के मौसम में दोपहर का जो भैया गर्म पानी रखा हुआ वो हम अपने पशुओं को ना पिलाए, और भैया दिन में कम से कम एक बार तो अपने पशुओं को नहलाई देवो।
5: बिल्कुल,
4: या तो भैया दोपहर से पहले बढ़िया रहता कि हम दोपहर से पहले भैया नहला कर जो अपने पशुओं को पशुशाला में बांध दे।
5: बिल्कुल भैया, और भैया उसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई संतुलित आहार प्रबंधन अपने पशुओं का जरूर करें।
4: भाई देखो इस टाइम तो भैया हरा चारा मिलना बहुत ही शुरू हो गया है। भाई देखो ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, लोबिया है, ये भैया भरपूर मात्रा में आ रहे हैं और हमारे पशु भैया इसे ले रहे हैं। और भैया कई बार हमने एक बात और देखी होगी भैया,
5: भैया
4: जब हमारा नया नया चारा शुरू होता मुलायम मुलायम सा, तो भैया उस टाइम पर हमारे भाई क्या काम करते हैं कि भरपूर मात्रा में देते हैं पशु, और पशु चाव चाव में खाता भी ज्यादा है। लेकिन कई बार भैया मुलायम चारा ज्यादा खाने की वजह से भैया आपने देखा होगा बंद लग जा, यानी गैस अफारे की समस्या आ जा। तो उसमें हमें करना ये हो कि भैया जब मुलायम चारा हो और शुरुआत उसकी हो रही हो तो भैया उसमें भूसा मिलाकर हमें देना है।
5: बिल्कुल भैया, हमें सूखे चारे का और हरे चारे का जो मिश्रण बनाकर अपने पशु को देना है, जिससे जो उसका पाचन तंत्र सही बना रहे।
4: बिल्कुल। और देखो भैया बातचीत हम करते चले जा रहे हैं और समय का पहिया आगे वो
5: बढ़ रहा भैया,
4: बढ़ रहा भैया, और हम बहन भाइयों का मनोरंजन भी तो करवाना भाई।
5: हाँ हाँ बिल्कुल भैया।
4: तो अंकित यो बताओ कि भैया आज क्या लिख के आए हो?
5: भैया आज लिख के आए हमने किसान भाइयों के लिए एक दहेज के लिए रागनी।
4: तो भाई आओ सुनते हैं यो रागनी।
5: बिल्कुल भैया।

0: दुनिया में दहेज दोस्तों। अभी हमारे किसान भाई ने देखो नरेंद्र सिंह की आवाज में प्यारी सी रागनी सुनी, और झुमरू भैया अब घड़ी भी वो कह रही कि किसानों से ज्यादा बातचीत ना की जाए।
1: तो भाई देखो, चलने से पहले मौसम की चिट्ठी बता दे।
0: बिल्कुल भैया।
1: और भैया मौसम की चिट्ठी, भैया हमारे पास में है ग्रामीण कृषि सेवा विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से। और भाई यहाँ से प्राप्त चिट्ठी के अनुसार भैया अगले 3 दिन भाई जनपद बिजनौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना भैया।
0: तो भैया हमारे किसान भाई को हम तो ये सलाह देंगे भैया, अपनी जो खेती बाड़ी है भैया, जो अपनी फसल है उसमें हल्की नमी सिंचाई कर कर हम, और भैया जिस समय फसलों को नुकसान ना हो।
1: बिल्कुल। तो और भैया जो धान की फसल की रोपाई के लिए किसान भाई जो खेत को तैयार करें, और साथ ही भैया उसकी मेड़बंदी करने का काम भी किसान भाई करते रहे।
0: बिल्कुल भैया। और भैया अपनी जो नर्सरी है भैया उसकी देखभाल हमारे किसान भाई करते रहे, कि कितने कैसी हो रही है भैया, कोई रोग तो हमारी नर्सरी में नहीं लग गया, इन बातों का हमारे किसान भाई ध्यान रखा।
1: तो भाई देखो, यू थी आपके लिए मौसम की जानकारी और कृषि मौसम सलाह। और किसान भाइयों, आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगता है? आप इसमें किस तरह की जानकारी सुनना चाहते हैं? और भैया आपका क्या राय है, आपका क्या मशवरा है? तो भैया आप हमें चिट्ठी जरूर लिखें। और चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है,
0: कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद। हमारा पिन कोड है 2467633, और हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 9457072888।
1: तो भैया आप इस नंबर पर अगर चिट्ठी आप ना लिख सको तो भैया व्हाट्सएप मैसेज हमें भेज सकते हो। और भैया इसके अलावा जो भैया हमारे इंस्टाग्राम के हमारे आईडी है, और भैया फेसबुक भैया हमारा आईडी है आकाशवाणी नजीबाबाद के नाम से। साथ ही भैया हमारा आकाशवाणी नजीबाबाद के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, तो इन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इनके माध्यम से भैया आप हमारे जो मुख्य मुख्य कार्यक्रम वो आप सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल भैया, और उनसे जुड़ी हुई जानकारी हमारे किसान भाई देख सकते हैं, और भैया हम अपने विचार हम व्हाट्सएप के थ्रू साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो भाई देखो, इसके माध्यम से हमारे किसान भाई जो है हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बात भैया हम तक पहुंचा सकते हैं।
0: बिल्कुल भैया।
1: और देखो भैया, अब जो है 6:45 होने वाले हैं, हमारे आज के कार्यक्रम का समय संपन्न होता है।
0: बिल्कुल भैया।
1: तो भैया आज का कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू,
0: और भैया अपने भैया अंकित कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों,
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: अभी हमारे किसान बहन भाई सुन रहे थे अपना मनपसंद दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 6:45 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं विवेक गुप्ता की वार्ता, जिसका विषय है आपातकाल के दौरान हिंदी साहित्यकारों की भूमिका।
1: 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है। उस समय बड़े बड़े विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। सरकार के विरुद्ध बोलने वाला हर व्यक्ति अपराधी मान लिया गया था। ऐसे समय में भी हिंदी साहित्यकारों और कवियों ने अपनी कलम की धार से सरकार का जमकर मुकाबला किया था। कविताओं को स्वतंत्रता आंदोलन के समान हथियार के तौर पर प्रयोग किया गया। उस समय कई कवियों को जेल भी जाना पड़ा था, जिनमें नागार्जुन का नाम प्रमुख है। उस समय बिजनौर जनपद में जन्मे हिंदी गजल के सम्राट दुष्यंत कुमार ने अपनी कविताओं से सत्ता विरोध की अलख जगाई थी। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी। 21 महीने तक इमरजेंसी जारी रही। उस समय देश के हजारों इंदिरा गांधी विरोधी नेताओं को मीसा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया था। उस समय अखबारों तक पर पाबंदियां थोप दी गई थीं। इमरजेंसी काल में बिजनौर जनपद के ग्राम राजपुर नवादा में जन्मे दुष्यंत कुमार ने एक कविता लिखी थी, जिसमें इंदिरा गांधी को एक गुड़िया बताया गया था, तो वहीं जेपी नारायण को अंधेरी कोठरी में रोशनदान की संज्ञा दी गई थी। उन्होंने उस समय देश के लिए चीथड़ों में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। वह कविता थी, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर यह तमाशा देखकर हैरान है, खास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए, यह हमारे वक्त की सबसे सही पहचान है। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहें इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है, मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं, हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। उस समय जब यह कविता प्रकाशित हुई, तब सत्ता विरोधी स्वर मुखर हुए। दुष्यंत कुमार ने आम जनता की आवाज को गजल के माध्यम से व्यक्त किया। उन्होंने सत्ता पक्ष और तानाशाही रवैये पर जमकर प्रहार किए। तेरा निजाम है सिलदे जवान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। दुष्यंत की कविताओं में एक इंकलाब का भाव था। उन्होंने हमेशा अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। उनकी वही गजलें आज भी देश के दिग्गज नेता मंचों पर पढ़ते हैं, लेकिन दुष्यंत की कलम निष्पक्ष और बेबाक रही। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। दुष्यंत कुमार की मृत्यु इमरजेंसी के समय में 30 दिसंबर 1975 को हो गई थी, लेकिन उनकी कविताओं ने इमरजेंसी के विरोध में आग में घी का काम किया, और इंदिरा गांधी के विपक्ष के नेताओं ने दुष्यंत कुमार की कविताओं को हथियार बनाकर गाया। इसी दौर में कवि भवानी प्रसाद मिश्र भी थे, जिन्होंने आपातकाल के विरोध में रोज सुबह दोपहर शाम एक कविता लिखने का निश्चय किया था और यथासंभव इसे निभाया भी। बाद में इन कविताओं का संग्रह त्रिकाल संध्या के नाम से प्रकाशित हुआ, जिसकी कुछ कविताएं अपने ढंग से सत्ता और इंदिरा गांधी पर बेहद तीखी चोट करती हैं। बहुत नहीं थे सिर्फ चार कौए थे काले, बहुत नहीं थे सिर्फ चार कौए थे काले, उन्होंने यह तय किया कि सारे उड़ने वाले, उनके ढंग से उड़े रुके खाएं और गाएं, उनके ढंग से उन्हें रुकें, खाएं और गाएं, वो जिसको त्योहार कहें सब उसे मनाएं। इमरजेंसी के दौरान यात्री के नाम से कविताएं लिखने वाले बाबा नागार्जुन खुलकर जयप्रकाश नारायण के पक्ष में आ गए थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण की रैली में प्रतिभाग किया था। तब उन्होंने कहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि मुझे जेल जाना पड़े, और उसके अगले ही दिन उन्हें जेल में डाल दिया गया था। इस दौरान बाबा नागार्जुन की कलम मुखर होकर इंदिरा गांधी का विरोध करती रही। इंदुजी क्या हुआ आपको, इंदुजी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, इंदुजी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। नागार्जुन ने जेल में भी इमरजेंसी के खिलाफ बहुत कुछ लिखा। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूप, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूप, नब में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती ने इमरजेंसी के दौरान मुनादी के नाम से एक कविता लिखी थी। इस कविता में भी इमरजेंसी लगाने के लिए सरकार की हठधर्मिता को कटघरे में खड़ा किया गया था। खलक खुदा का मुल्क बादशाह का, खलक खुदा का मुल्क बादशाह का, हुकुम शहर कोतवाल का, हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें, और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें, गिरा लें खिड़कियों के पर्दे, और बच्चों को बाहर सड़क पर न भेजें, क्योंकि 71 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। राजनेता तथा कवि रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी आपातकाल के दौरान जेल में रहना पड़ा। उन्होंने जेल में कविताएं लिखी। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया संघ को कैसा चढ़ा जुनून, भंग कर दिया संघ को कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून मात्र पूजा प्रतिबंधित, कैसा चढ़ा जुनून मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह कैदी कविराय तोड़ कानूनी कारा, कह कैदी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। आपातकाल के दौरान जेल में 1 साल पूरा होने पर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक भावुक कविता लिखी थी। यह कविता आपातकाल के बाद भी काफी चर्चा में रही थी। झुलसाता जेठ मास, झुलसाता जेठ मास, शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का, सिसकी भरते सावन का, अंतर्घट रीत गया, 1 बरस बीत गया, 1 बरस बीत गया, सींचों में सिमटा जग, सींचों में सिमटा जग, किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक गूंज मुक्ति गीत गाया, 1 बरस बीत गया, 1 बरस बीत गया, पथ निहारते नयन, गिनते दिन पल छिन, लौट कभी आएगा मन का जो मीत गया, 1 बरस बीत गया, 1 बरस बीत गया। आपातकाल के दौरान पूर्व में लिखी गई रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का भी खूब प्रयोग उस समय पर हुआ। आपातकाल की लड़ाई में कवियों पत्रकारों का समग्र सहयोग रहा। सदियों की ठंडी बुझी आग सुख बुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुखा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी हट गई और उसके बाद हुए चुनावों में जनता ने इंदिरा गांधी की सरकार को पटकनी दी। इमरजेंसी के दौरान संघर्षरत रहे लेखकों कवियों और पत्रकारों की जयप्रकाश नारायण ने भी जमकर सराहना की थी।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम विविधा, जिसमें आज आपने सुनी विवेक गुप्ता की वार्ता, जिसका विषय था आपातकाल के दौरान हिंदी साहित्यकारों की भूमिका। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 6:55 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है छाया गीत। छाया गीत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त अलका सिंह का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और इस गर्मी के मौसम में सुन रहे होंगे आकाशवाणी नजीबाबाद। मैं दिन को कहूँ रात तो इकरार करे, बस हसरत यही है कि कोई हमें यूं ही प्यार करे। जी हाँ श्रोताओं, ये जो प्यार होता है ना, ये हर कोई चाहता है, चाहे वो बच्चा अपनी माँ से हो, माँ बच्चे से हो, कोई प्रेमी प्रेमिका से हो या दोस्त अपने दोस्त से हो, हर किसी को ये प्यार चाहिए कि हमारा कोई अपना हमें बस सुने, हमसे प्यार करे, है ना। और कभी कभी ना लगता है वो इठला कर हम बोल देते हैं कि इतना प्यार ना करो, है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको कार्यक्रम का ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म छाया से। इसे आवाज दी है लता मंगेशकर और तलत महमूद ने। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण और संगीत है शलील चौधरी का।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म छाया का ये गीत, जिसे आवाजें दी थी लता मंगेशकर और तलत महमूद ने। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत था शलील चौधरी का। और अब आपको सुनवा देते हैं ये जरूरी संदेश।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआर

0: जरूरी संदेश।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआर।
0: चोरी होती है ना श्रोताओ, ये बड़ी अजीब होती है। बाकी चोरियों में हम चाहते हैं चोर को सजा हो जाए, पुलिस ले जाए उसको पकड़ ले और चार डंडे मारे, लेकिन ये जो दिल के चोर होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं दिल के पास आ जाते हैं और लगता है कि बस इन्होंने दिल तो चुरा लिया है, लेकिन नजरें ना चुराए, है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म यादों की बारात से। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, आवाज़ है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: जब से आपसे इश्क हुआ है, हम बदनाम हो गए हैं। आपके और मेरे प्यार के चर्चे सरेआम हो गए हैं। जी हाँ श्रोताओं, तो चलिए सुनवा देते हैं आपको कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म ब्रह्मचारी से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुरी की, गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

अभी आप सुन रहे थे छाया गीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ज पर। शाम के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशकान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। लीजिए श्रोताओं, पेश है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। आज रात 9:30 पर सुनिएगा कंट्री वाइड और इनसाइड। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। आज रात्रि 10 बजे सुनेंगे आप नाटक परहेज, जिसकी लेखिका होंगी सुधा शर्मा, प्रस्तुति सहायक होंगे यशोधर डबराल और प्रस्तुतकर्ता रहेंगे शोभित शर्मा। आज रात 10:30 पर सुनिएगा आपके पत्र और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। एक ही फिल्म से सुनेंगे आप आज रात 8:30 पर। गीत संध्या का समय रहेगा आज रात 8 बजे। सुगम संगीत में सुनेंगे आप सरफराज सावरी और साथी की गाई कव्वाली, आज संध्या 7:32 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की, और अब आपको जानकारी दे दें हमारे कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। कल दिन में 1:15 पर सुनिएगा कृषि निर्यात लाइव चौपाल का एपिसोड 8। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। इसका संचालन करेंगे सुवेंद्र सिंह और प्रमोद सिंह। घर संसार सुनेंगे आप कल दिन में 12:15 पर, जिसमें कल चर्चा होगी ड्रग नशा और तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां सुनेंगे आप कल दोपहर 12 बजे। कल दिन में 11:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, जिसके प्रायोजक होंगे NCERT। सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता सुनेंगे आप कल सुबह 10:30 पर, जिसमें कल का विषय रहेगा आपातकाल और उसका प्रभाव। मेरा सपना उन्नत भारत में कल आपको जानकारी दी जाएगी नशा मुक्त भारत अभियान के विषय में। समय रहेगा कल शाम 5 बजे। और कल शाम 5:15 पर सुनिएगा युववाणी, जिसमें कल आकर्षण का केंद्र होंगे बुझो तो जाने कुछ खास है आज। ये शाम गजलों के नाम, यंग अचीवर्स, रहस्य सीरीज और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का भी। और कृषि जगत में सुनिएगा किसान भाइयों की खेती एवं पशुपालन संबंधी पत्रों के उत्तर पर आधारित चिट्ठी पत्री। समय रहेगा कल शाम 6:05 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:18 होने को है। कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल की 51वीं बरसी पर लखनऊ में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को किया संबोधित। कहा, सबका साथ सबका विकास का भाव है लोकतंत्र का आधार। मुख्यमंत्री ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने वाराणसी एयरपोर्ट में पहली इजी कनेक्ट उड़ान का किया शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिविल एविएशन सेक्टर में आया है बड़ा बदलाव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आपातकाल की 51वीं बरसी संविधान हत्या दिवस पर लखनऊ में आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश सरकार लोकतंत्र सेनानियों के लिए जल्द ही 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ समाज के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है और यही लोकतंत्र का आधार है।
2: एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का वह अभियान जिसमें जनता ही सब कुछ है। लोकतंत्र का मतलब भी यही है, जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए योजना का लाभ, वो अंतिम पायदान पर बैठे हुए जनता जनार्दन के व्यक्ति को इस योजना के साथ जोड़ना। परिणाम, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक नए मध्यम वर्ग के रूप में उभर करके अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देते हुए दिखाई देते हैं।
1: वरिष्ठ भाजपा नेता और डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने आपातकाल की बरसी पर मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश के हर जनपद का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पूर्वजों की विरासत को संरक्षित किया है। आज सुशासन और सुरक्षा के माहौल के साथ प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है।
3: ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप, कृषि क्षेत्र की विभिन्न केंद्रीय और राज्य की योजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की संयुक्त समीक्षा की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए समृद्ध उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान अल्नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में श्री चौहान ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर पौधे मिल सकें।
4: क्लीन प्लांट सेंटर यहाँ लगाएंगे, जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं तो अच्छे

0: को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के अधिकाधिक किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिलेगा और उनके हितों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होगा। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने अयोध्या पहुंचकर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मखाने की खेती का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद भी किया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर पूरा कर सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति वीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया है कि मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 8 महामंत्री 19 उपाध्यक्ष और 19 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम ब्रज कानपुर अवध काशी और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है।
2: देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है, युवाओं को भी लेकर, महिलाओं को भी लेकर के, और हम लोग ख्याल रखे हैं कि सभी का समायोजन उसमें हो जाए और सभी क्षेत्र का जो हमारे कार्यकर्ता है उनका सबका हर क्षेत्र से करीब करीब बराबर बराबर सबका समायोजन हो जाए, ऐसा प्रयास किया जाए।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नए पदाधिकारी संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने, राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने और जनसेवा के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में कोचिंग सेंटरों और अन्य इमारतों में अग्निशमन व्यवस्था की जांच की जा रही है। इसी क्रम में गौतमबुद्ध नगर में पुलिस, जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने 7 और कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है। वहीं 2 कोचिंग संस्थानों में आग से बचाव के इंतजाम मानकों के अनुरूप न मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं प्रयागराज मंडल प्रशासन ने विशेष अभियान के तहत अब तक प्रयागराज और कौशाम्बी में कुल 10 कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों को सील किया है। मुहर्रम महीने की नवी तारीख पर आज लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में इमाम हुसैन की याद में मजलिसों और मातम का सिलसिला जारी है। लखनऊ में आज देर रात आलमे शबे आशुरा का जुलूस इमामबाड़ा नाजिम साहब से दरगाह हजरत अब्बास तक निकाला जाएगा। कल 10वीं मुहर्रम पर घरों में रखे ताजियों को सुपुर्द खाक किया जाएगा, साथ ही आलमे आशुरा का जुलूस भी निकाला जाएगा। इन जुलूसों के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रदेश के कुछ पूर्वी जनपदों में आज हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी जनपदों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल की 51वीं बरसी पर लखनऊ में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को किया संबोधित। कहा, सबका साथ सबका विकास का भाव है लोकतंत्र का आधार। मुख्यमंत्री ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने

0: लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोड मैप की समीक्षा, कहा किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना, और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने वाराणसी एयरपोर्ट में पहली इजी कनेक्ट उड़ान का किया शुभारंभ, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिविल एविएशन सेक्टर में आया है बड़ा बदलाव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा।
2: बातचीत क्या यहाँ पर निर्देश मिला है कप्तान की तरफ से, वो देखना।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7:32 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सरफराज साबरी और साथी की गाई कव्वाली। तो पेश है कार्यक्रम की ये पहली कव्वाली।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सरफराज साबरी और साथियों की गाई कव्वाली। तो लीजिए पेश है ये एक और कव्वाली।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, जिसमें आज हमने आपको सुनवाई सरफराज साबरी और साथी की गाइंग कव्वाली। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है गीत संध्या। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम गीत संध्या में, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त अलका सिंह। तेरी मेरी दोस्ती इतनी खास हो कि दुनिया कहे काश ऐसा दोस्त मेरे पास हो। जी हाँ श्रोताओं, ये जो दोस्ती होती है ना, वो सच कहें तो किसी अजूबे से कम नहीं होती अगर आपके पास कोई सच्चा दोस्त है तो। क्योंकि दोस्त ही ऐसे होते हैं जिनसे हम कोई बात कभी छुपा नहीं पाते। जो बातें हम अपने पेरेंट्स, फैमिली या दोस्त दूसरे लोगों को नहीं बता पाते हैं, वो हम अपने दोस्तों से दिल खोल कर शेयर कर देते हैं। तभी तो कहा गया है कि 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी, है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको कार्यक्रम का ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म धर्मवीर से। इसे आवाज़ें दी हैं मुकेश और मोहम्मद रफ़ी ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: श्रोताओ, अभी आपने सुना फिल्म धर्मवीर का ये गीत, जिसे आवाजें दी थी मुकेश और मोहम्मद रफी ने। गीत था आनंद बख्शी का और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब आपको सुनवाते हैं ये जरूरी संदेश।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम गीत संध्या में। ना हमें चांदी चाहिए, ना हमें सोना चाहिए, आपके दिल में बस एक कोना चाहिए और इस बात का यकीन आपको होना चाहिए। जी हाँ श्रोताओं, ये जो सोना चांदी होता है ना, इनसे भी कीमती होता है हमारे किसी अपने का प्रेम। और प्रेम को किसी भी तराजू में तोला नहीं जा सकता, वो तो अनमोल होता है, हर चीज़ से बेशकीमती होता है। और ऐसा प्यार अगर मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये अगला गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं मन्ना डे, शैलेंद्र सिंह और साथियों ने। फिल्म है बॉबी, गीत लिखा है विट्ठल भाई पटेल ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हजारों के बीच में भी तुझे पहचान लूँ मैं, तेरी आँखों की चमक से अपना जहाँ जान लूँ मैं, दूरियाँ कितनी भी हो दरमियाँ हमारे, तेरी खुशबू से तेरी मौजूदगी को पहचान लूँ मैं। जी हाँ, जब हमारे अपनों का प्यार हमारे कहीं मन में बस जाता है ना, तो फिर हमें आँखों से देखने की उनको ज़रूरत नहीं होती श्रोताओं, फिर उनके छूने से, उनके पास से गुजरने से या उनके याद करने से भी हमें कहीं ना कहीं महसूस हो जाता है कि हमारे अपने हमें याद कर रहे हैं और हम उनकी खुशबू से ही उन्हें पहचान भी लेते हैं। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म जीत से। इसे आवाज़ें दी हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने, संगीत में पिरोया है नदीम श्रवण ने और गीतकार हैं समीर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म जीत का ये गीत, जिसे आवाज़ दी थी कुमार सानू और अलका याग्निक ने। हर फूल में तेरी तस्वीर नजर आती है, जब भी हवा चलती है तेरी खुशबू साथ ले आती है। जी हाँ श्रोताओं, हमारे अपने जो होते हैं ना, उनकी यादें भी फूलों की खुशबू की तरह ही होती हैं, और जब वो हमसे कहीं बिछड़ने लगते हैं तो ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया वीरानी हो गई है, और लगता है कि वो बस हमारे पास रहे, हमसे कहीं दूर ना जाएं, लेकिन कभी कभी वो हमसे दूर चले ही जाते हैं, है ना? तो चलिए सुनवा देते हैं आपको कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म प्रेम रोग से। इसे आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने। गीतकार है नरेंद्र शर्मा और संगीत में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो छोड़ जाते हैं आपको ये इस प्यारे से गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे गीत संध्या। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है एक ही फिल्म से। नमस्कार श्रोताओं, आप बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम एक ही फिल्म से, मैं जिसे लेकर

श्रोताओं, फिल्म जब वी मेट में एक चुलबुली लड़की का किरदार निभाया है करीना कपूर ने, और वहीं शाहिद कपूर एक गंभीर लड़के के किरदार में नजर आते हैं। श्रोताओं, फिल्म जब वी मेट भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी हिट रही और इस फिल्म ने विदेशों में भी काफी अच्छा व्यापार किया। तो चलिए सुनवा देते हैं ये अगला गीत, जिसे आवाज दी है मीका सिंह ने।

श्रोता एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम एक ही फिल्म से। मैं और आज की हमारी फिल्म है जब वी मेट। श्रोता फिल्म जब वी मेट के गीत लिखे हैं इरशाद कामिल और फैज़ अनवर ने। इसका संगीत तैयार किया है प्रीतम और संदेश सांडियाल ने। फिल्म के गीतों को आवाज़ें दी हैं मोहित चौहान, श्रेया घोषाल, मीका सिंह, सोनू निगम, उस्ताद राशिद खान और शान ने। श्रोताओं फिल्म जब वी मेट को कई पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें दो पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं, दो फिल्म फेयर पुरस्कार और दो आईफा पुरस्कार भी शामिल हैं। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये अंतिम गीत जिसे आवाज़ दी है श्रेया घोषाल ने।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पास

0: कोड बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया, तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रूपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। आईसीसी क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रूपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रूपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपए का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
3: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचाव कर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
4: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

0: प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि COVID-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9।

0: Copyright. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत एक वैश्विक टेक पावर बनकर उभरा है। पहले जहां भारत को केवल इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल सेवाओं के एक विशाल उपभोक्ता के रूप में देखा जाता था, वहीं आज हमारा देश अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वदेशी नवाचारों और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम के दम पर पूरी दुनिया में तकनीक की दिशा तय करने में सक्रिय भागीदार है। इस अहम विषय पर और प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ आईटी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। डॉक्टर राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: डॉक्टर राय, हम आपसे जानना चाहेंगे, भारत में जिस तरह का एक इंटरनेट बूम आया जो डिजिटल इंडिया 2015 से शुरू हुआ, अगर हम कुछ जो बेसिक आंकड़े हैं उनको देखें, ऑप्टिकल फाइबर एक्सपेंशन 2019 में 19.35 लाख रूट किलोमीटर था, जो बढ़कर 42 लाख रूट किलोमीटर से ऊपर है। और अगर हम इंटरनेट कनेक्शंस की बात करें तो 25 करोड़ से थोड़े ज्यादा थे 2014 में, और अब वो 102 करोड़ को पार कर गए हैं। और अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की बात करें तो इस दौरान वो 6 करोड़ से 99.5 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस डिजिटल एक्सपेंशन को, और जो भारत की टेक्नोलॉजिकल मजबूती है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं?
1: भारत ने पिछले 15 साल में इस इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, साइबर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस की है। आज भारत में 100 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शंस हैं, 100 करोड़ से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं, 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन हैं। मैं आपको बताऊं कि आज से 10 साल पहले जो मोबाइल फोन में स्मार्टफोन की जो संख्या होती थी वो करीब करीब 32-33% होती थी, आज वो 57% मोबाइल फोन स्मार्टफोन है। हर हाथ में देखेंगे स्मार्टफोन है, और हर बच्चा, हर इंसान एक स्मार्टफोन लेना चाहता है। ये नहीं कहता मैं कि वो फीचर्स फोन नहीं लिए जाते, वो भी लिए जाते हैं एक पर्टिकुलर क्लास में, या गवर्नमेंट में भी लिए जाते हैं जो कि एक किस्म का क्लासिफाइड काम करते हैं, पर ज्यादातर लोग स्मार्टफोन लेते हैं। अब उस स्मार्टफोन लेने की वजह से देखिए, पिछले 15 साल में इंटरनेट की स्पीड कितनी बढ़ गई है। आज करीब करीब 25 GB पर मंथ की दाब से डेटा एक यूजर लेता है। 25% कॉस्ट गिर गई है, 8 से 10 रुपए की कॉस्ट है पर GB। मैं अगर ये कहूँ कि भारत जो है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसका नतीजा एडवांटेज काफी है भारत को कि भारत के पास कंजम्पशन हर प्रोडक्ट की है, और हर प्रोडक्ट हर सोसाइटी के लिए चाहिए। तो पिछले 15 साल में काफी प्रोग्रेस हुई है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। मैंने कंज्यूमर की बात कही, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कहेंगे तो कहां हम 200 मेगावाट की वो डेटा सेंटर थे, क्लाउड थे, आज 1500 गीगावाट का क्लाउड हमारे पास इंस्टॉल्ड है भारत के अंदर, और वो 3000 गीगावाट टारगेट है अगले 5 साल में उसको करने का। आज विश्व का कोई भी क्लाउड मैन्युफैक्चरर नहीं है जो भारत में नहीं, हर सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी का डिजाइन सेंटर भारत में है। एक TSMC जो वर्ल्ड की एक प्रोडक्शन कंपनी है, सबसे बड़ी फैब कंपनी है, उसका भी डिजाइन सेंटर भारत में है। तो हर चीज में, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो कंजम्पशन है, ये जो एक्सपेंशन है, ये हमको प्रोडक्ट की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बहुत तेजी से ले जा रहा है। एक टाइम में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट काफी थी, बीच में फिर एक थोड़ा सा स्लंप आ गया। आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है, हम सोचते भी नहीं थे, हम सोचते थे कीबोर्ड आपको भेजेंगे या हम छोटे मॉनिटर भेजेंगे, आज हम बहुत सी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट मार्केट में कर रहे हैं।
0: सो जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत ही अपनी कहें कि फोकस्ड जो नीतियां हैं और जो रणनीतिक निवेश है उसके साथ देश की तकनीकी क्षमता को डेवलप किया है, जिसके साथ साथ विश्वसनीयता भी मजबूत हुई है भारत में। अगर हम जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है, जिसे इंडिया स्टैक कहा जाता है, उसकी बात करें तो उसके बारे में आप बताएं कि उसमें जो एग्रीमेंट हुई है 23 देशों के साथ, हमारी तरफ से जो तकनीक वहां तक पहुंचाई जा रही है, ये कितना इम्पोर्टेंट एक उपलब्धि है हमारे देश के लिए।
1: देखिए, एक जमाने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ी और भारत ने उसको निकाला, और इसका बैकग्राउंड देखिए, हमने एक UPI सिस्टम निकाला। भारत जो हो उस अग्रणी देश है जिसमें UPI सिस्टम चालू हुआ। आज दिन भर में बिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं, और जितने भी बड़ी कार्ड कंपनीज हैं ये सब UPI को मानने को, रिकॉग्निशन करने को तैयार नहीं थे। आज जितनी भी संसार की, विश्व की जब कार्ड कंपनीज हैं वो सब UPI इंटरफेस पे आती है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक कॉमन इंटरफेस हमने बनाया है, और हर विश्व की कंपनी उस इंटरफेस से लेके हमारे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जुड़ जाती। इसको एग्जांपल जब हमारा सक्सेसफुल हो गया, फिर हमने इस भारत ने कहा कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो पूरे देश में या विश्व में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज सब कनेक्टेड रहते हैं। आप उस पर ई कॉमर्स की एप्लीकेशन लगा लीजिए, कोई और किसी किस्म की एप्लीकेशन लगा लीजिए। तो पर्पस ये था कि सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक कॉमन इंटरफेस पे रहना है, ताकि किसी को कनेक्टिविटी की जरूरत ना पड़े और कहीं मोनोपोली की जरूरत ना पड़े, और हर देश, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी उस कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर रह के उसका इस्तेमाल वैसा ही हो एक्सपेंशन हो जैसे यूपीआई के एक्सपेंशन।
0: और बिल्कुल इसमें डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज भी एफिशिएंट हुई है और सिक्योर हुई है और लार्ज स्केल पर संभव हो पाई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है।
1: क्योंकि हम डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, हम एक दूसरे को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप यूपीआई देखिए ना, मैं स्टेट बैंक में हूँ, दूसरा आंध्रा बैंक में है, तीसरा किसी और बैंक में है, पांचवा यूनियन बैंक में है, छठा सेंट्रल बैंक में है, किसी में भी है, आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। कहा हमने 2000 में से चालू किया था, आप 1,00,000 रुपए तक यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया। तो ऐसा ही इम्पैक्ट इंडिया स्टेक जो बना रहा है वो ही इम्पैक्ट है उसका। एक कॉमन लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, जिससे एप्लीकेशन का एक्सेस, एप्लीकेशन का रिट्रीवल एक बहुत ही आसान हो जाता है और मोनोपोली टूट जाती है। आज की डेट में अगर प्रोप्राइटरी लेंगे तो एक बारी प्रोप्राइटरी आप टेंडर करके ले लेंगे, दूसरी बारी आपके दाम ज्यादा लेगा, कॉस्ट आपकी ज्यादा लेगा, प्रोप्राइटरी हो जाता है। एक कॉमन इंटरफेस पे आ जाते हैं तो उसमें प्रोप्राइटरीनेस की बात खत्म हो जाती है। एक तो यूसेज में आसान मिलती है, एप्लीकेशन में आसान हो जाता है, उसके अलावा आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है।
0: आपने शुरुआत में ही बात करी थी जो एडवांस टेक क्षमताएं हैं उनके विकास की, जो फ्यूचर रेडीनेस के लिए इम्पोर्टेंट सरकार ने आइडेंटिफाई की हैं, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी जो उभरती हुई तकनीकें हैं उनके लिए जो जो ये फोकस स्कीम लाई गई है उनको मिशन मोड में जिस तरह से अप्लाई किया गया है, और फ्यूचर रेडी स्किलिंग के लिए भी जो बहुत कंसर्टेड, बहुत ही मजबूत एफर्ट्स किए गए हैं कि पूरे देश में AI स्किलिंग हो या जो और टेक्नोलॉजीज है उनमें स्किलिंग हो, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लगता है ये फ्यूचर रेडीनेस के लिए प्रिपेयर्डनेस पर कार्य हो रहा है?
1: आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एक सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम का कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी टेक्नोलॉजी आइटम हो, नॉन टेक्नोलॉजी आइटम हो, इंडस्ट्रियल आइटम हो, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन, ये इनबिल्ट इंग्रेडिएंट्स हैं। आप बैंक में जाइए, बैंक में आज कुछ जाता नहीं है और टेक्नोलॉजी है बैंक में सिर्फ, फाइनेंस दूर की बात है, सिर्फ आज बैंक एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ही चलता है। पावर सेक्टर में टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम है, पर टेक्नोलॉजी जो ड्राइव करती है पूरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस को, पावर सेक्टर को, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी क्वालिटी को, उसकी प्रोडक्टिविटी। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रोल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको देखते हुए ही भारत ने पिछले 5 साल से इस पे प्लानिंग चालू कर दी। सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में बनाया भारत ने, उसका आउटले 76,000 करोड़ रखा, उसके बाद 1,000 करोड़ 2025 में और ऐड कर दिया उसमें। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमने एक सेमीकंडक्टर मिशन में हमारा गुजरात में धुलेरा जो है उसको फोकस किया, ताकि हम उसको सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ से उसको बनाएंगे। और भी एरिया है जैसे असम में सेमीकंडक्टर को आगे करने के लिए उन्होंने एरिया आइडेंटिफाई किया। उन्होंने आज भारत में कोई भी सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी है उसका R&D सेंटर जहाँ R&D डिजाइन यही होते हैं, आप इंटेल ले लीजिए, आप ARM ARM ले लीजिए, आप TSMC ले लीजिएगा, जो भी कंपनी आप देंगी वर्ल्ड की फेमस कंपनी सबका यहाँ डिजाइन सेंटर। तो उसी हिसाब से सेमीकंडक्टर मिशन लगाया गया। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया AI मिशन भारत ने बनाया, जिसमें हमने आउटले 10,000 करोड़ रखा। उसके अंदर हमने एक 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IISc बैंगलोर, और उनको 1400 करोड़ रुपया आवंटन भी किया कि आप इसको आगे काम करिए, उनका डिफाइन करिए। ये जितने भी 6 सेंटर्स हैं, इन 6 सेंटर

0: का अपना अलग रोल है। हमारा एआई की स्पेशलाइजेशन आज के भारत में एक हम एप्लीकेशन की तरह हमारा बहुत स्पेशलाइजेशन है, और उसमें हमारे पास 4.5 लाख ट्रेन मैन पावर है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमें एक सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए हमें और एआई के दूसरे सेक्टर भी चाहिए, तो हमें एआई टूल्स भी बनाने हैं और हमें ऐसी दूसरे और एप्लीकेशन करनी है। देखिए, संसार में 3 देश ऐसे हैं जिनके पास एआई की कुछ कंपोनेंट्स हैं, और एआई कंपोनेंट्स में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। भारत, चीन और अमेरिका, इन तीनों देशों के पास बहुत डेटा है, सारा डेटा इन्हीं कंट्रीज के पास है। पॉपुलेशन अमेरिका के पास सारी आईटी कंपनीज वहां पे बैठी हुई है, चाइना की पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत है। तो इंडिया एआई के क्षेत्र में एक यूनिक पोजीशन रखता है कि हमारे पास बहुत डेटा है। एआई क्वांटम मिशन पे आई है, क्वांटम इतना जरूरी हो गया है, इंटरनेट पे जो ट्रैफिक चलता है वो 99% इंक्रिप्टेड होता है प्राइवेसी और सिक्योरिटी से, ताकि कोई इंफॉर्मेशन बीच में टैप ना कर पाए, उस पर अटैक ना कर पाए, तो इंक्रिप्ट करके चलते हैं। आपका वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे उस पर लिखा हुआ HTTPS, इसका मतलब है सिक्योर, सिक्योर का मतलब है इंक्रिप्टेड डेटा है। अब इसके साथ एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी भारत सरकार ने बनाया, जिसका आउटले भी करीब करीब 350 करोड़ पर रखा। उनका काम था एक अग्रणी के तौर पे एक R&D प्रोडक्ट डेवलप करें। अब इन सबको सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रेंथन किया। आप देखिए कि जो ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट है, हम इस वक्त 38वें पायदान पे हैं, हम 2015 में 81वें थे, अब उस पे हम इम्प्रूव करके 38वें हो गया। अब अगले आप 5 साल में आप देखेंगे कि ये 38 जो है हम फर्स्ट 10 में आ जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी के इंडेक्स में जो UN यूनाइटेड नेशन इंडेक्स लेता है, हम पहले 10 में आते हैं इम्प्रूवमेंट। पिछले 5-6 साल में हम 17वें नंबर से इम्प्रूव करके 10 के अंदर आ गए, जो सेफ कंट्री मानी जाती है हम उसके अंदर आ गए। अगले 5 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि भारत एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के एक मैच्योर नेशन निकल के निकलेगा।
1: डॉक्टर राय, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस समग्र चर्चा के लिए, जिसमें आपने हमें बताया कि भारत कैसे एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर के रूप में उभर रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह से हमारी फ्यूचर रेडी स्किलिंग हुई है, फ्यूचर रेडी हमारी टेक्नोलॉजीज है उनकी डेवलपमेंट हुई है सरकार के एफर्ट्स, प्राइवेट सेक्टर के एफर्ट्स, स्टार्टअप्स के एफर्ट्स के द्वारा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और यूट्यूब चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। कंट्री वाइड।

0: मम्मी मम्मी,
1: क्या है प्रियांशी?
0: लो, आपका हिंदुस्तान बोल रहा है।
1: अरे तो तू इसे हाथों में उठाए क्यों फिर रही है? इस फोन के चक्कर में भी ना कमबख्त जिंदगी कॉल सेंटर बन गई है। अभी तो 15 मिनट तक मिसेस सबरवाल इसी फोन पर इतनी डटी पड़ी थी कि कानों के परखच्चे उड़ने को तैयार थे। ला, दिखा किसका फोन है।
2: प्रियांशी, ले, फोन भी बंद हो गया, डर गया वो।
0: हाँ जी, हम तो मम्मी से डरते ही थे, अब फोन भी डरने लगा है।
1: बड़ी फीकी हो रही है। हाँ, देख रही हूँ आजकल तुम्हारी जुबान बहुत कैची की तरह चल रही है, पिद्दी सी चुहिया सी। जा रख दे, बाद में देख लूंगी, पहले रसोई का काम निपटा लूँ।
3: नई दिशाएं, नई हवाएं।
0: अरे लो मम्मी, आपका हिंदुस्तान तो फिर बोल पड़ा।
1: कहाँ लेके जा रही है? इधर ला, देखती हूँ, पता नहीं किसको बेचैनी हो रही है। अरे ये तो तेरी दादी का कॉल है।
4: हेलो, नमस्ते मम्मी जी।
5: हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो, जीती रहो।
1: अरे मम्मी आप कैसी हैं?
5: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो दोनों कैसी हैं,
1: दिव्यांशी प्रियांशी? अरे वो दोनों भी ठीक है मम्मी, इनकी छुट्टियाँ क्या पड़ी, दिन भर सर दर्द पैदा किए रहती है। अरे आप उन्हें छोड़िए, आप ये बताइए कि पापा जी कैसे हैं?
5: वो मूडी इंसान बिल्कुल ठीक है। अरे कोमल, मैं ये पूछ रही, कहीं बाहर बाहर तो नहीं जाने का प्रोग्राम है तुम लोगों का?
1: अरे नहीं मम्मी जी, आज तो हम कहीं नहीं जा रहे। क्यों?
5: अरे आज नहीं, इस हफ्ते की पूछ रही हूँ। वो क्या है ना, हम दोनों नजीबाबाद आने की सोच रहे हैं, बड़े दिन हो गए बच्चों से मिले हुए।
1: तो आ जाइए ना मम्मी जी, बच्चे भी आपको बहुत याद करते हैं।
5: हाँ, हम रिजर्वेशन कराने की सोच रहे हैं, आलोक के पापा गए हैं रेलवे स्टेशन, रिजर्वेशन हो गया तो आते हैं।
1: अरे मम्मी, अब रेलवे स्टेशन जाने की क्या जरूरत है, आजकल तो ऑनलाइन रिजर्वेशन हो जाता है। प्रियांशी के पापा को बता देती, वो ही करा देते रिजर्वेशन। तो
5: कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आलोक तो बहुत बिजी रहे है, और एक काम और बढ़ जाता उसकी जान को।
1: अच्छा है मम्मी, आप लोग बस आ जाइए, बच्चे भी बहुत खुश होंगे।
5: ठीक है बेटा, ठीक है, जिस दिन का टिकट मिलेगा उस दिन आते हैं।
1: नमस्ते मम्मी जी।
5: नमस्ते बेटा, नमस्ते।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 13009 हावड़ा से योग नगरी ऋषिकेश वाया मुरादाबाद लक्सर हरिद्वार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है।
1: लो भाई, आ गए हम नजीबाबाद। अरे राधा, देखो यहाँ का रेलवे स्टेशन तो कतई बदल गया।
2: जी, अपने समय पे सब चीज बदल जाती है। एक तुम ही हो जो कभी ना बदलने की कसम खा के बैठे हो।
1: तो तुम कौन सा बदल गई? जवानी में 56 छुरी और बुढ़ापे में कटार।
2: तो जी तुम भी क्या बातें करते हो।
1: चलो चलो, अब ई रिक्शा वाले से बात कर लेते हैं।
2: ए भैया, अरे चलोगे क्या?
3: हाँ हाँ, चलने के लिए तो बैटरी फुल कराई है सुबह सुबह।
1: अरे सुनो, वो आदर्श नगर चलोगे क्या?
3: गली नंबर
1: अरे भाई, गली नंबर 5A।
3: 5A। देखो जी, गली नंबर 5A में अंदर नहीं जाऊंगा मैं।
4: आदर्श नगर की गलियां ऐसी हैं जैसे चूड़ीदार पजामा, ना तो पाँव घुसे ना पाँव निकले।
1: अरे भैया, इतना सामान लेके अंदर पैदल जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको पता है। थोड़ा कोशिश करके देख लो भैया।
3: देखो बाबू जी, कोशिश तो कोशिश ही हो गए, कोशिश कभी कामयाब भी हो जा कभी नाकाम भी रहे, है कि नहीं?
1: जी जी।
3: अब देखो जी, गारंटी कुछ नहीं। गली में घुसने की गुंजाइश होगी तो घर की घंटी बजा के भी दरवाजे के अंदर तक भेज के आऊंगा, पर देखो जी, दिक्कत जो है तो वो है।
1: अरे भाई, ऐसे तो कोई भी नहीं जाएगा। अरे अजीब नखरे हैं तुम लोगों के यार।
3: नखरे ना हैंगे बाबू जी, खुद जाके देखोगे तो पता चल जाएगा।
1: चलो भाई चलो तो सही, लेके तो चलो भैया।
3: तो चलो बैठो पीछे।
1: अरे भैया, थोड़ा हाथ तो लगवा दे सामान को, ये बैग मुझसे नहीं रखा जा रहा, बैग भारी है भाई।
3: सवारी के साथ में यही तो दिक्कत है। बस इनके सामान और ढोके रखते रहो रिक्शा में।
1: अरे भाई थोड़ी मदद कर दो बस। चलो ये वाला सूटकेस पकड़ लो भैया।
3: चलो चलो चलो, हाथ लगा। अच्छा, हो गया ना। हाँ बाबूजी, एक बात कहें, बड़े शरीफ आदमी लगते हो, इसीलिए मदद कर दी तुम्हारी। चलें, रुकना फिर।
1: अरे हाँ चलो, अब पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी क्या चलने के लिए?
3: वाह साहब वाह, बड़े गजब के मजाक किया। साथी रहे या संग के साथी,

0: साथी। अरे हट जाओ भाई, बिना हॉर्न दिए तो हटते ही ना यहाँ के आदमी।
1: अच्छा साहब, एक बात बताओ, आप लोग आए कहाँ से?
2: अरे यार, इलाहाबाद से आए हैं भैया, इलाहाबाद से।
1: कुंभ नहा के आ रहे हो दिखे
2: नहीं नहीं नहीं, घर है हमारा वहाँ पर।
1: अच्छा, तभी तो मुझे तो पहले ही लग रहा था कहीं बाहर से आए होंगे, नए आए होंगे इस शहर में।
2: अरे तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है भाई?
1: वो क्या है ना साहब, यहाँ का आदमी जब तक 5-10 मिनट रिक्शा वाले से मोल भाव नहीं कर लेता ना, तब तक रिक्शा में बैठता नहीं।
3: अरे भैया, बेटा रहता है हमारा यहाँ पे।
1: मैं यूँ पूछ रहा था साहब कि कौन से विभाग में काम करता है आपका लड़का?
2: ओहो, अरे तुम बोल क्या रहे हो, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
1: मेरा ये गुटका तुम खराब करवा के छोड़ोगे मुझे लग रहा है। साहब मैं बोल रहा था कि कौन से विभाग में काम करता है तुम्हारा लड़का?
2: ओहो, अरे मेरे बेटे की छोड़ो यार, पहले ये बताओ तुम ये तंबाकू गुटका खाते हो क्या?
1: हाँ साहब, अब इसमें झूठ क्या बोलना, खा लेते हैं कभी कभी। वो क्या है कि
2: छी। अरे तुम्हें मालूम भी है इसको खाने से शरीर को कितना नुकसान होता है, दांत खराब तो होते ही हैं, मुंह का कैंसर भी हो सकता है। अरे अपना न सही, अपने घर परिवार का तो सोचो जरा।
3: अब तुम यहाँ भी वैद मत बनो। चलो भैया, तुम चलो चुपचाप चलो आगे को।
1: लो साहब, आ गया घर आपका। घंटी मैं बजाऊं या खुद बजाओगे?
2: अरे बस भाई बस, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बाकी का मैं खुद देख लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा।
4: ए प्रियांशी, प्रियांशी सुनो।
5: हाँ बोलो।
4: मुझे लगता है दादा दादी जी आ गए।
5: हाँ चलो चलो उनसे मिलते हैं। चलो दीदी।
4: हाँ हाँ चल चल चल चल। नमस्ते दादाजी।
5: नमस्ते दादी जी।
6: चरण स्पर्श।
2: खुश रहो बच्चों, खुश रहो।
4: खुश रहो बच्चों, खुश रहो।
5: लाओ दादी जी आपका बैग, मैं अंदर ले जाऊंगी।
4: और दादाजी आपका मैं
2: ले। बेटा ये ले।
4: प्रियांशी बड़ी कमजोर हो गई।
5: लाओ बैग दे दो, हम ले जाएंगे अंदर।
4: ले ले जा, गिर मत जाइए संभल के।
2: बेटा मेरा च्यवनप्राश और चूरन रखिए इसमें, उसका जरा ख्याल रखियो।
5: जी दादाजी।
7: दादाजी के बैग में चूरन होगा और च्यवनप्राश भी बोल रहे थे अभी।
4: हाँ दीदी, वो बहुत टेस्टी होता है।
7: हाँ सही कह रही है। रुक मैं ना चम्मच लेके आती हूँ, हम दोनों खाएंगे फिर।
4: हाँ लेकिन दीदी चुपचाप लेके आना, मम्मी को पता चल गया ना तो डांटेंगी हमें।
7: हाँ हाँ चल ठीक है, मैं लेके आती हूँ। चम्मच,
4: एक ही चम्मच लाए हो, अकेले अकेले खाओगी क्या?
7: अरे एक चम्मच से ही हम दोनों खा लेंगे ना, तू नखरे मत कर, चुपचाप खा ले, नहीं तो मम्मी सुन लेंगी ना तो दोनों को डांट पड़ेगी।
4: अरे अरे चल क्या रहा है यहाँ पर, क्या कर रहे हो दोनों, क्या चल रहा है यहाँ?
7: मम्मी ये बहुत टेस्टी लगता है।
4: और मम्मी हमारे यहाँ तो ये चूरन और च्यवनप्राश रखा ही नहीं है।
7: अरे दोनों चटोरी लड़कियाँ, छोड़ो दादा दादी का सामान, छोड़ो उन्हें पानी देकर आओ।
5: जा रहे हैं,
7: ठीक है
4: जल्दी जाओ।
8: प्रणाम पापा जी। प्रणाम मम्मी जी, कैसे हैं आप लोग?
2: खुश रहो बेटा, खुश रहो।
4: खुश रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा आप लोग बहुत थक गए होंगे, आप लोग आराम करिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे प्रियांशी पानी नहीं दिया दादाजी को अभी तक, लेके आ जल्दी, मैं अभी आती हूँ।
8: अच्छा मम्मी जी, शक्कर अलग से लाऊं या मिक्स कर दूं चाय में?
5: अरे बेटा सुन, ना मिक्स कर ना कुछ कर, तू ऐसा कर हल्के मीठे की चाय बना दे।
8: जी जी।
4: ये लीजिए चाय। अच्छा आप ये भी बताइए मम्मी कि खाने में क्या खाएंगे आप लोग, क्या बना दूं मैं जल्दी से?
5: अरे बेटा मैं तो सब कुछ ही खा लेती हूँ,
4: अपने पापा जी से पूछ लो। हाँ पापा आप बताइए क्या खाएंगे।
2: अरे बेटा कुछ भी बना लो भाई, हम तो सादा दाल फुल्का खाने वाले आदमी हैं, घर में जो रखा है बना लो।
7: तो पापा फिर ऐसा करते हैं, आलू बैंगन की सब्जी बना लेते हैं।
2: नहीं बेटा नहीं नहीं नहीं, बैंगन बहुत गर्म होते हैं।
7: तो मूली की भुर्जी के साथ रायता बना दूं?
2: देखो मूली वैसे तो बहुत गुणकारी होती है, मगर तासीर जिसकी बहुत ठंडी होती है और कफ प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए।
7: ओ, तो पापा ऐसा करती हूँ, मूली बैंगन आलू तीनों मिक्स करके बना लेती हूँ, गर्म ठंडे का बैलेंस हो जाएगा।
2: नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकता।
7: कहा था ना ये एक नंबर के परहेजी हैं, सारा वैदक इन्होंने तो सीख रखा है, बड़े बड़े वैद्य भी हार जाएं के सामने। तो अच्छा पापा, तो आप अपने मुंह से बता दो ना आपको क्या खाना है।
2: अरे मैं क्या बताऊं?
7: तो पापा मैं गोभी के पराठे और आलू टमाटर की सब्जी बना लूं?
2: देखो बेटा वैसे गोभी बाय वालों को बहुत नुकसान देती है और नजले वालों को टमाटर नहीं खाने चाहिए।
7: अरे तो पापा फिर सूखी अरबी भूनकर पूरी उतार दूं आपके लिए? बताइए
5: किस सब्जी का नाम ले लिया तुमने, अरबी, रतालू, कचालू, सींगरे, ग्वार की फली, भीस, कभी खाते ही नहीं है। तो
2: तुम हमेशा क्यों बदनाम करती रहती हो? अरे पहले मैं सब कुछ खाया करता था ना, अब उम्र का तगाजा है, सबके सामने कुछ ना कुछ बोलती रहती हो।
5: नाराज क्यों होते हो? तो जब से इस घर में आई हूँ यही हाल देखा है इस घर का, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये कोई खाने की चीज है, ये बैली है, इससे पित्त बढ़ता है, ये नुकसान देने वाली है, ऐसे ही बोलते रहते हो हमेशा से, नरक बना दी जिंदगी।
2: अरे तुम्हें तो बस बहाना चाहिए मुझे ताना कसने का।
5: अब इसमें ताना मारने की क्या बात है, सूरज निकले सबको दिखाई दे, कोई कसम खा कर थोड़ी ना बताना पड़ता है कि देखो जी सूरज निकल रहा।
2: एक मौका नहीं चूक सकती छीटा कसी करने का।
5: जब मैं इस घर में आई थी ना, बस आलू टमाटर, मूंग मसूर की दाल, टिंडे, शलजम, परवल, मूंग के छिलके वाली दाल, बस यही सब कुछ बनता था। इससे एक कदम भी आगे बढ़े हो आज तक भी, वही का वही हाल है तुम्हारा।
2: अरे तुम्हें पता है ना मेरा टूर का काम था, बताओ जरा होटल में रेस्टोरेंट में सब चीजें कहाँ मिलती हैं? उड़द की दाल में मक्खन और प्याज टमाटर का तड़का लगाकर खाया करता था।
5: खाते होंगे, घर में तो ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बस एक यही रट सुनी है मैंने तो, घिये, अरबी, भिस्के कोफ्ते, पता है कितने अच्छे बनते हैं? तुम्हें क्या पता कि एक सब्जी को कितनी अच्छी तरह से बना सकते हैं, लेकिन नहीं कभी नहीं बनवाया वो भी।
2: अरे तुमने जो खाना बनाया बताओ मैंने कब नहीं खाया?
5: मैंने पहली बार कढ़ी बनाई थी तो जेठ जी ने थाली फेंक के मारी थी, वो तो बड़ी ननद नंदिनी जी ने चुपचाप कमरे में ले जाके मुझे समझाया, मुझे खुसर पुसर की सारी आवाज आ रही थी बाहर की और किसी के मुंह से बड़ाई के दो शब्द नहीं निकले थे।
2: अरे तुम तो पुरानी बातों पर उतर आई, भाई कढ़ी होती तो बायली है ना, बहुत गैस बनती है कढ़ी से, देती तो नुकसान ही है ना, किसी से भी पूछ लो।
5: कढ़ी में बड़ी इलायची, तेज पत्ता, लौंग, सौंठ ये सब डालो, जरा भी नुकसान नहीं देती, पता तो कुछ है नहीं।
2: अरे तो तुम खा लिया करो ना, तुम्हें कौन मना करता है, मैं नहीं खाता, अपना अपना शरीर है, जबरदस्ती थोड़ी की जा सकती है किसी के साथ।
5: तो फिर क्यों कहते हो कि मैं सब कुछ खा लेता हूँ? सब कुछ खा लेता हूँ, सब कुछ खा लेता हूँ।
2: अरे तुम तो लड़ने पर उतारू हो गई।
5: लड़ू क्यों ना, दुनिया में भगवान ने सब चीजें खाने के लिए बनाई है, हम वेजिटेरियन है, जंक फूड हम नहीं खाते, बाजार की चीजें हम नहीं खाते, अरे सब्जी भी ना खाएं। अरे कोमल बिटिया
9: जी,
5: ये कभी चावल भी नहीं बनने देते। मैं तो गुस्से में यही कहा करूं कि अगर तुम प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाओ तो भारत से चावल की खेती की पैदावार पे भी बैन लगवा दोगे।
7: अच्छा मम्मी शांत हो जाओ, पापा आप अपने मुंह से ही बता दीजिए क्या खाना चाहते हैं आप, प्लीज बताइए ना पापा।
2: अरे ऐसे ही ये घर पर मेरी जान खाती रहती है और ऐसे ही कोमल आज तुम कर रही हो, ठीक है बेटा आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगा।
7: अरे अरे पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं एक काम करती हूँ भिंडी और खीरे का रायता बनाती हूँ आपके लिए।
2: अब देखो ऐसे कॉम्बिनेशन बताओगी तो बोलना ही पड़ेगा ना, भाई पतंजलि में सामने ही दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है दही के साथ कभी भी खीरे का सेवन नहीं करना चाहिए।
7: अरे कुछ नहीं होता पापा, हम तो रोज खीरे का रायता खाते हैं, देखे हमें तो कुछ नहीं हुआ।
5: कोमल ये बात तो मुझे भी पता है, हमारे जमाने में तो रायता बस बूंदी का, घिया का और गाजर का बनता था। अब तो प्याज का, अनार का, केले का और जाने किस किस चीज का बनने लगा।
9: दोपहर के खाने में खीरा सलाद के रूप में हीरा, और शाम को खीरा पीरा यानी पीड़ादायक। मूली दोपहर को मूली, रात को वही मूली शूली। आजकल की पीढ़ी खाने का उचित कॉम्बिनेशन ही नहीं जानती, तभी तो शरीर में 100 बीमारियां पाल रखी हैं।
5: अब पापा बीमारी तो आपको भी हो जाती है ना पापा?
9: हमारी उम्र देखिए आपने कितनी है, आज के तो छोटे छोटे बच्चे भी हाई लेवल बीमारियां पालो रहते हैं।
5: अब पापा बस इतना बता दो खाने में क्या बनाऊं।
10: कोमल बिटिया देखा, अब मैं भी रोज इसी तरह से दिमाग मारती रहती हूँ, अब पता चला इनके साथ रहना कितना मुश्किल है।
5: पापा एक सब्जी बताऊं, आप इसको मना नहीं कर पाएंगे। कटहल की सब्जी कैसी रहेगी, बनाऊं?
9: कटहल की सब्जी भाई लगती तो स्वादिष्ट है, पर मुझे इसलिए पसंद नहीं है, देखने में नॉन वेज सी लगती है। पता है पेड़ पर लगती है, पर मन नहीं करता, मुंह में चलती ही नहीं कटहल की सब्जी।
11: मम्मी कढ़ाई पनीर बना दो ना प्लीज।
12: कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, मटर पनीर या मलाई कोफ्ता बना दो ना मम्मी।
9: कोमल बेटा बच्चों के लिए बना दो, मैं सुबह के समय तो मैं खा लूंगा, लेकिन रात को ये सब चीजें कब्ज करने वाली हैं, भारी है ना, मुझे हजम नहीं होती, उम्र का तगाजा है ना।
5: हाँ बिटिया, इन्हें 2 साल हो गए, मटर भी छोड़ दिए इन्होंने तो।
7: अरे अच्छा, तो फिर पापा पेठा खाएंगे आप? पेठा बना लूं?
9: पेठा? बेटा कोमल वैसे तो पेठा हाजमा करने वाला होता है, लेकिन उसमें खटाई पड़ती है जो साइनस वालों को नुकसान देती है, और मीठा पड़ जाए तो शुगर के पेशेंट को नुकसान करता है।
7: अरे पापा आप इतना परहेज करते हैं, आपको कोई बीमारी कैसे हो सकती है?
9: अरे नहीं नहीं, शरीर ही तो है, और बुढ़ापा तो अपने आप में एक बीमारी है, युवावस्था में तो हम ठीक रहे हैं।
5: क्या पापा इतना परहेज करके भी यदि बीमार हैं, तो इससे अच्छा तो खा पी कर ही बीमार रहे क्यों मम्मी?
9: अरे तुम आजकल के बच्चों की यही समस्या है, संयम नाम की तो भाई चीज ही नहीं है तुम में।
5: बुढ़ापे में तो संयम करना ही है, कम से कम छोटी उम्र में तो खा पी लो सब चीजों को, कल किसने देखा?
7: हाँ पापा, कोई गलत चीज हम खाते नहीं, शराब, गुटखा, सिगरेट या पान तंबाकू कुछ भी नहीं, फिर सब्जियां भी ना खाएं तो क्या खाएं?
5: इनके साथ रहते रहते तो मन उब जाता है, कभी कभी तो मन करता है भाग लो इस घर से, ऐसा लगता है जैसे किसी जेल में बंद हूँ।
9: हाँ हाँ, तुम तो जेल में ही रही हो, अरे तो जेल तोड़कर भाग क्यों नहीं जाती, करो ना इतनी हिम्मत।
7: मम्मी
5: क्या
7: कहानी दलाओ?
5: बोलो।
7: एक काम करो, आप दादाजी के लिए ना पुलाव बना दो।
5: अरे
7: या मम्मी सुनो ना, एक काम करो उड़द की दाल की खिचड़ी बना लो।
5: अरे तुम दोनों चुप रहो।
9: हाँ हाँ सुन लिया बेटे, मैंने सुन लिया। मेरे लिए मूंग की दाल की खिचड़ी ना देना, वैसे रात को चावल नुकसान करते हैं, और वास्तव में चावल की तासीर ठंडी होती है।
5: जब चावल में दाल बराबर की पड़ती है तो इसकी तासीर भी तो बदल जाती है, क्या बात करते हो।
9: अरे जहर जहर होता है, चाहे उसे दूध में मिलाकर लो या पानी से, अपना असर तो करता ही है ना।
5: हे भगवान, ऐसा मन करता है अपना सर फोड़ लूं।
9: तो फोड़ लो ना, शुभ काम में देर कैसी।
5: कोमल, किसी औरत को कितना भी अच्छा खाना बनाना आता हो बिटिया, पर घर में जब ऐसे नमूने हो तो सोच लो बस सब कुछ गुड़ गोबर।
9: अरे अपने लिए मनपसंद डिश बना लिया करो ना, मेरा क्या, मैं तो कुछ भी खा लूंगा।
5: मत दिमाग खराब करो मेरा, कुछ भी खा लेता हूँ, यहाँ 1 घंटे से बकबक हो रही है खाने के ऊपर, और बोलते हैं कुछ भी खा लेता हूँ।
9: अरे तो अपनी पसंद का खाना बना लो ना, मैं अपने लिए जुगाड़ अपने आप कर लूंगा।
5: पता है कोमल बिटिया, अगर अपनी पसंद की कोई सब्जी बना लूँ ना, तो 3 टाइम हो जाएं या 4 टाइम मुझे ही खानी है, छुएंगे भी नहीं।
7: हाँ मम्मी, केवल एक आदमी के लिए सब्जी बनाना काफी मुश्किल हो जाता है।
5: सब्जी नहीं, ये तो फलों में भी ऐसे ही हाल रखते हैं। केला ठंडा है, सेब भारी है, अंगूर संतरे से गला खराब हो जाता है, बस पपीता चीकू मौसमी यही खाओ।
7: पापा डॉक्टर कहते हैं कि सभी सीजनल फल और सब्जी खाओ, कभी बीमार नहीं पड़ोगे।
3: भगवान ने मौसम के अनुसार ही फल और सब्जियां बनाई हैं।
10: वही तो, भगवान ने पानी की पूर्ति के लिए तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा सब कुछ बनाया है। शरीर को सब कुछ चाहिए, किसी से कुछ मिलता है तो किसी से कुछ मिलता है।
7: प्रियांशी, लगता है पापा आ गए। पापा?
13: हाँ बेटा।
7: दादाजी और दादी जी आए हैं। जल्दी चलो पापा, खाने पे युद्ध हो रहा है अंदर।
13: उत्तरी, दादाजी भी आए?
7: हाँ।
13: लगता है माहौल बहुत गर्म होगा अंदर,
7: तभी तो कह रहे चलो चलो।
13: चलो चलो अंदर चल के देखते हैं। चरण स्पर्श मम्मी जी, पापा जी प्रणाम।
14: खुश रहो बेटा, खुश रहो।
10: खुश रहे बेटा, खुश। बड़ी देर हो गई बेटा आने में।
13: बस मम्मी, ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था तो इसलिए देर हो गई। आप कब पहुँचे?
14: बस अभी आए थे थोड़ी देर पहले, बस खाने पर बात हो रही थी।
13: अच्छा, अरे कोमल, आज बातें ही खानी होंगी या खाना भी बनेगा?
10: पापा, लगता है आज हम बातें ही खाएंगे।
7: क्यों ना बाहर से ऑर्डर कर दें कुछ?
13: क्यों भाई बाहर से क्यों, मम्मी ने आज कुछ नहीं बनाया क्या?
10: अरे मम्मी तो पता नहीं कब से बातें कर रही हैं। हमें पिज्जा खाना है, मंगा लो ना पापा।
13: नहीं नहीं, पिज्जा नहीं, पिज्जा से पेट खराब हो जाता है।
7: मुझे पास्ता खाना है प्लीज पापा।
10: अरे मंगा लेना बच्चों के लिए पिज्जा, मैं भी खाऊंगी।
13: अरे नहीं मम्मी, उससे पेट खराब हो जाता है, बाहर की चीजें नहीं खाते।
7: देखो ना पापा, अब दादी भी मान गई।
13: नहीं नहीं नहीं, अरे कोमल तुमने सच में कुछ नहीं बनाया क्या?
3: अरे मैं इतनी देर से खाना बनाने के लिए ही खड़ी हुई हूँ और पूछ रही हूँ कि क्या बनेगा क्या बनेगा। इतनी देर से इसी पर चर्चा हो रही है, पर सब्जी क्या बनी समझ में ही नहीं आ रहा।
13: अरे इसमें पूछना क्या था, पापा जी तो कुछ भी खा लेंगे। एक काम करो, पापा के लिए घी आया तोरी बना दो, और मेरा ना दाल खाने का मन हो रहा है तो मेरे लिए मूंग की छिलके वाली दाल बना दो।
14: देखो हो गया फैसला, एक घंटे से किच किच किच लगा रखी थी आप लोगों ने।
10: हाँ बाबा, घर में रहो या बाहर, इलाहाबाद रहो या नजीबाबाद, हमारी किस्मत में तो बस ये 3-4 सब्जियां लिखी है, बनाते रहो और खाते रहो।
15: नहीं, हम घिया नहीं खाएंगे, हमारे लिए पनीर बनाओ
10: मम्मी, पनीर।
3: अच्छा अच्छा बाबा, सुन लिया सुन लिया, दोनों ही सब्जियां बनाती हूँ, चलो अब सब खुश हो जाओ।
15: ये!

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक परहेज। लेखिका थी श्रीमती सुधा शर्मा। प्रतिभागी कलाकार थे अनुराधा माथुर, वर्षा अग्रवाल, आलोक कुमार, यशोधर डबराल, श्रेया विश्वास, अक्षय त्यागी और मोहम्मद तौहीद। प्रस्तुति सहयोग था यशोधर डबराल का। निर्देशक थे शोभित शर्मा। ये नाटक आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र पर तैयार किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक परहेज। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर।
2: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपको पुनः याद दिला दें, कल दिन में 1:15 पर सुनेंगे आप कृषि निर्यात लाइव चौपाल का एपिसोड 8। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ और इसका संचालन करेंगे सुवेंद्र सिंह और प्रमोद सिंह। कल दिन में 12:15 पर आप सुनेंगे घर संसार, जिसमें कल चर्चा होगी ड्रग नशा और तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। और कल दिन में सुबह 10:30 पर सुनेंगे आप सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता, जिसमें कल का विषय रहेगा आपातकाल और उसका प्रभाव। कानूनी सलाह सुनेंगे आप कल शाम 6:45 पर, जिसमें कल आप सुनेंगे एडवोकेट खुर्शीद मोहन जैदी से एस के नोटियाल की बातचीत, जिसका विषय होगा बाल विवाह निषेध कानून। कल शाम 7:32 पर सुनिएगा सुगम संगीत, जिसमें कल हम आपको सुनवाएंगे विविध कलाकारों के गाए नोहे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का उन्हीं के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं आज आपकी दोस्त अलका सिंह। तो श्रोताओं, देर बिल्कुल मत कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा नंबर और भेज दीजिए हमें लिखकर अपना नाम, पता और फरमाइश का गीत। और नंबर है 9457078288। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 9457078288। तो इस पर जल्दी से हमें मैसेज कर दीजिए और जब तक हमारे नए श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, हम देख लेते हैं कि हमारे पास मैसेज जो आने शुरू हुए हैं वो हमारे किन श्रोताओं ने लिखकर भेजे हैं। तो पहला मैसेज जो हमें मिला है, जिला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से लिखने वाले हैं बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, नाविया सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। ये सब सुनना चाहते हैं फिल्म करण अर्जुन का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण ने। इसके गीतकार हैं इंदिवर और संगीत है राजेश रोशन का। इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी की। इसी गीत के लिए अगला मैसेज हमारे पास आया है, मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से लिखने वाले हैं जगदीश धाकड़।

बाई माँ धाकड़, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश भेजी है कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत उपसे, लिखने वाले हैं आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान, सारिका अली खान ने। इसी गीत के लिए हमारे पास मैसेज भेजा है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन अब्दुल्ला आजाद ने। एक फरमाइश हमारे पास आई है जो हमें मिली है पहाड़गंज मुल्तानी टांडा से, लिखने वाले अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। इसी गीत के लिए हमारे पास मैसेज आया है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो का। तो चलिए आप सबकी फरमाइश पर सुनवा देते हैं फिल्म करण अर्जुन का ये गीत।

एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का उनके अपने कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और ये अगला गीत जो हमें फरमाइश आई है, ये गीत हमने लिया है फिल्म आप आए बाहर आई से। इसे आवाज़ें दी हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। इस गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से। लिखने वाले हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम आदिब। इसी गीत के लिए अगली फरमाइश हमारे पास है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से। लिखने वाले हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकिरत, गुरशबद सिंह राहुल। इसी गीत के लिए अगली फरमाइश हमारे पास है संघ मित्र श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यतमवाल से। लिखने वाले हैं दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता। अगला मैसेज हमारे पास आया है शेरवानी स्कूल गंज डूंडवारा उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का। इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से। लिख रहे हैं असलम सैफी, जुबैनिशा बेगम, अकरम सैफी, जाहिद सैफी, सद्दाम सोनी और आदाब खान। अगली फरमाइश हमारे पास है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी और बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवान परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद की। और हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि अगर आपका मैसेज शामिल हो चुका है तो कृपया आप दोबारा मैसेज ना करें। अगला मैसेज हमारे पास आया है पटियाला रोड गंज डूंडवारा से। लिखने वाले हैं आमिर हुसैन बेगम, तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास लिखकर भेजिए अनारकली बाजार जंगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव विनोदपुरी की। इसी गीत के लिए फरमाइश हमें कर रहे हैं करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। अगला फरमाइश मैसेज हमारे पास है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराजहां आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है गांव राय खाना जिला बठिंडा पंजाब से परमिंदर सिंह सोनी, करण सोनी, रानू, दीपू, वीरपाल, कुलदीप और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से। लिखने वाले हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सुचिन युवान और आर के राजा। ये अगला मैसेज हमारे पास है पटेल नगर मलोट से पंजाब से। लिखने वाले हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप, आरजू और गुड्डू जजोरिया का। अगला मैसेज हमें मिला है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। लिख रहे हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर, मलकपुर महाराष्ट्र से सोपान तायडे, नारायण इंगले, आशीष मोहिरकर और इनके परिवार के सभी सदस्य। अगला मैसेज हमें मिला है गंज डूंडवारा से। लिखने वाले हैं शमसुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी का। अगला मैसेज हमें मिला है करिनवीर हाउस भूचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से। लिख रहे हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दीपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत। तो चलिए इन सबकी फरमाइश पर सुनवा देते हैं फिल्म आप आए बाहर आई का ये गीत।

निजी श्रोता एक बार फिर से हाजिर हैं आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के साथ, और अगले गीत की फरमाइश हमारे पास आई है मेरठ कैंट से। लिखने वाले हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़, और इनके परिवार के सभी सदस्य ये सुनना चाहते हैं फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं लता मंगेशकर। और साथ ही ने इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है विलेज एंड पोस्ट राहु नंगली से। लिखने वाले हैं आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान और राघव चौहान। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़, कविता कर्ण, शक्ति रिया, जया और दर्शन भाई। अगला मैसेज हमारे पास आया है लक्सर रोड गांव सुवाहड़ी कस्बा पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर से। लिख रहे हैं मोहम्मद जाफिर, हुजैफा, मोहम्मद शाहनवाज, शाहरुख, शोएब, कहकशा और उनका पूरा परिवार। इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है सहावर रोड गंज ढूंढवारा से। लिखने वाले हैं मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी, शमसुल कमर राही। इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है सदर बरा बाजार कुरावली से। लिख रहे हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। इस गीत के लिए अगली फरमाइश हमारे पास है फाजिल का पंजाब से। लिख रहे हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशाल, शालिनी, टिवानशी को और इनके परिवार के सभी सदस्य है। इसी गीत के लिए अगली फरमाइश हमारे पास है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल मेहसोली सीतामढ़ी से। लिख रहे हैं अकरम हुसैन प्रिंस डाग बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना आरिज, शमीम, ममता रानी और पूनम कुमारी शर्मा। इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। इसी गीत के लिए फरमाइश हमें कर रहे हैं सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा व डॉक्टर ईशानी। इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा की। अगला मैसेज हमें भेजा है शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकर, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्ण और पीयू स्वर्णकार ने। अगला मैसेज हमारे पास आया है जो हमें लिखकर भेज रहे हैं हमारे श्रोता कस्बा उदयती देवेंद्र कुमार गुप्ता, उदयती से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक गुप्ता और निर्भया गुप्ता। इसी गीत के लिए अगली फरमाइश हमारे पास आई है MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरव खुराना, SK पप्पी। और अगली मैसेज हमें मिला है वो मिला है शाही मार्केट सोहरा जिला बिजनौर से। लिखने वाले आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात, अदीब और कादिर चौधरी। इसी गीत के लिए जो अंतिम फरमाइश हमारे पास है वो है ऑक्सफोर्ड पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हिरामन शेंडे जी और प्रतिभा गोंडा ने की। तो चलिए इन सबकी फरमाइश पर सुनवा देते हैं फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये गीत।

एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का उनके अपने कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और जल्दी से देख लेते हैं ये अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है। गांव फरानसी जिला हिसार से लिखने वाले हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी। अगली फरमाइश हमें मिली है चंडीगढ़ से, लिखने वाले हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। अगला मैसेज हमारे पास आया है मलियान सरधना मेरठ से, लिखने वाले हैं अनिल जैन, जैन साहेब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जी वीएम जैन और आदि जैन। अगला मैसेज हमें कर रहे हैं जो हमारे पास आया है छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश साबले पाटिल, जगदीप राजेश, राजी राजेश और शीतल राजेश का। अगला मैसेज हमारे पास आया है वो है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगी सापुर से लिखने वाले हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी का। अगला मैसेज हमारे पास आया है मोहल्ला अफगानान शेरकोट से, लिखने वाले हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर और मोहम्मद जैन उन्नत। इन सभी की फरमाइश पर ये अगला गीत और अगला मैसेज जो हमारे पास आया है वो है बठिंडा रोड मंडी डडवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग और इनके परिवार के सभी सदस्य। अगला मैसेज हमारे पास आया है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय का। दुबिहा नवोदा जिला गाजीपुर से लिख रहे हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और परांजल राय। अगली फरमाइश हमारे पास है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा से, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना और इनके परिवार के सभी सदस्य। अगला मैसेज हमें लिखकर भेज रहे हैं राही नगर गंज डूंडवारा से, लिखने वाले हैं शमसुल कमर राहिद, शाहिन फातमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान, ताबिश खान। अगला मैसेज हमें मिला है गंज डूंडवारा से ही, लिखने वाले हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन और शमसुल कमर राही। अगला मैसेज हमें मिला है जो है मोहम्मद शराफत रंगरेज का, रंगरेज आसिफ रंगे, सादिक रंगरेज, वैसाई ईस्ट मुंबई से, मोहम्मद रफी का और इनके परिवार के सभी सदस्य का। अगला मैसेज जो हमारे पास आया है वो है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, लिख रहे हैं तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता। और ये मैसेज हमारे पास पुनः आ चुका है जो हमने श्रोता उसे हमेशा आग्रह करते हैं कि अगर एक बार मैसेज पढ़ा जा चुका है तो कृपया दोबारा ना करें। अगला मैसेज है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का। ये अगला मैसेज जो हमारे पास आया है भटिंडा खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का। अगला मैसेज हमें कर रहे हैं ग्राम जुझाला थाला शिवाला कलाज बिजनौर से राशिद अंसारी, बनवीर जहान, निषाद, आयशा, सायना, महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर। अगला मैसेज जो हमें मिला है वो है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनव गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और नमित अहूजा का। अगला मैसेज जो हमें भेज रहे हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राज से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जी एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। अगला मैसेज हमारे पास आया है नई बस्ती गंज डूंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, मोहम्मद बेगम हाशमी, मोहम्मद तोही, तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी का। अगला मैसेज हमारे पास लिखकर भेज रहे हैं गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोट और तमन्ना कांगड़ा का। अगला मैसेज हमारे पास आया है जो है गाँव नथाना पंजाब से, लिख रहे हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। और ये अंतिम मैसेज जो हमें मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, लिखने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजवल, पंकज सीमा। ये मैसेज हमारे पास पहले भी आ चुका है और ये अंतिम मैसेज हम पढ़ लेते हैं। ग्राम जिलापुर जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अदीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो इन सब की फरमाइश पर सुनवा देते हैं आपको ये कार्यक्रम का अंतिम गीत जिसे हमने लिया है फिल्म तेरे इश्क में से और इसे आवाज़ दी है फहीम अब्दुल्ला ने।

0: अभी आप सुन रहे थे आपके पत्र और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: एंड टूगेदर बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर।
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू

0: औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकयाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum, IGF, UK-India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement, FTA, with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a three-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
1: Venezuela's acting president Delcy Rodriguez has said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes hit the country. Last night, 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hit the country. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the president of Venezuela has acknowledged the solidarity expressed by India in the aftermath of the earthquakes, saying it is in keeping with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. She welcomed the remarks by Prime Minister Narendra Modi, who expressed his condolences and India's willingness to support relief efforts in the wake of the severe consequences of the earthquakes. The government has hiked the fee for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passport Amendment Rule 2026 will come into force with effect from 1st of next month. In a notification, the Ministry of External Affairs said that under the new fee structure, a fresh passport or reissue of passport under Tatkal will cost 5,000 rupees. The fee for 60-page ordinary passport or reissue will be 3,500 rupees and under Tatkal, this will attract 6,000 rupees. The existing fee for a 36-page passport is 1,500 rupees and for a 60-page passport is 2,000 rupees. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi today. In a social media post, Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. National Testing Agency NTA has opened a window today for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2026 re-exam, which was held on the 21st of this month. In a social media post, the NTA announced that the answer keys are now available at www.neet.nta.in. Students can challenge questions for a fee of 2,000 rupees per question until the 28th of this month. This fee is fully refundable if the challenge is accepted. India's newly appointed High Commissioner to Bangladesh, Dinesh Trivedi, formally assumed office today after presenting his credentials to Bangladeshi President Mohammad Shahabuddin at Bangabhavan in Dhaka. Following the credential presentation ceremony at the Presidential Palace, Trivedi visited the Indian Visa Application Centre in Dhaka to inspect its operations and interact with officials. In the FIFA World Cup, Curaçao will take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia in US at 1:30 Indian time. In another Group E fixture, Ecuador will face Germany at East Rutherford in at 1:30 a.m. IST. And that's the end of this news bulletin.
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं. मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर. रात्रि के 11:10 हुए हैं. अब हमारे इस सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं. कल सवेरे 5:55 पर अपनी पहली सभा में आपसे पुनः भेंट होगी. तब तक के लिए अनुमति दीजिए. जय हिंद.